FMK 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयभाषा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, आश्विन माह की तिथि 3, तदनुसार 25 सितंबर ईस्वी सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः 6 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांव से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को समीप से समझने का अवसर देती है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी बल देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4था संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदक की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भरत का दल बल समेत और विशेषकर चतुरंगिनी सेना के साथ पर्णकुटी आने का समाचार सुन लक्ष्मण का क्रोध जाग उठा था और उन्होंने भरत का वध करने की सौगंध ले ली। तभी आकाशवाणी हुई कि कोई भी काम उचित अनुचित जानकर तथा खूब सोच समझ कर करना चाहिए। देववाणी सुनकर लक्ष्मण सकुचा गए। श्री राम ने तब उन्हें समझाया कि भरत सरीखा श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया न ही देखा गया। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश भले ही बादलों में सिमट जाए, गोखुर जितने जल में अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता छोड़ दे, किंतु भरत को राजमद हो ही नहीं सकता। श्री राम के वचन सुनकर देवलोक में उनकी जय जयकार होने लगी। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर। FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। समर्पण के इस कार्यक्रम में पहला भक्ति गीत सुनते हैं ओम व्यास के स्वर में।

इस भक्ति गीत के साथ ही समर्पण का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब के कुछ देर बाद यानी 6:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। कलाकार होंगे श्यामानंद झा। सुबह 7 समय होगा कार्यक्रम जोहार चैबासा का। प्रातः 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा 8:15 पर।

8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। माटी की महक, लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:40 पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे कुरमाली लोकगीत, कलाकार होंगे शंकर महतो एवं साथी। 9:00 विविधा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन श्रोता सुनेंगे 9:30 पर। 10:00 प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम श्रोता सुन सकेंगे 10:30 पर। 1:10 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। 1:20 पर पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 2:55 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 3:00 से पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे।

4 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 4:02 पर पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। शाम 5 बजे आकाशवाणी के रांची केंद्र से मुख्य समाचार का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे शाम 5:02 पर। संध्या 5:05 पर गुलदस्ता कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक ही गीतकार के लिखे चंद फिल्मी नगमे। शाम 5:30 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

हो अखड़ा कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 6:02 पर। 6:30 पर नन्ही दुनिया कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 7 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इसके तुरंत बाद जिले में आजकल का प्रसारण किया जाएगा। 7:15 पर श्रोताओं की पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। रात के 8 हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

रात 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा रात के 9 बजे। रात के 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। रात के 10 बजे आप सुनेंगे

जापान में चल रहे 20वें एशियन गेम्स के डेली कैप्सूल हाइलाइट्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात के 10:20 पर गजलों का कार्यक्रम महफिल का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग श्रोता सुनेंगे रात के 10:30 पर। रात के 11 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा और रात के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं श्यामानंद झा।

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जोहार चयबासा।

जोहर चाईबासा के इस कार्यक्रम में श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, येसुदास के स्वर में, और फिल्म का नाम है हैसियत।

जब प्यार किसी से होता है। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

जो हर चाईबासा कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में राजा और रंग फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के युगल स्वर में मजबूर फिल्म का ये गीत।

0: से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जोहर जय बसा के इस कार्यक्रम में श्रोता हूँ, आइए अब सुनते हैं राम बलराम फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वरों में।

राधा का संगम। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक धुन प्यार की फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास के युगल स्वर में।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं राम लखन फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज, अनुराधा पोडवाल और नितिन मुकेश की।

इस गीत के साथ ही जोहार चेबासा का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चेबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, वाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
3: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
4: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
3: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
5: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
2: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
7: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
8: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, IT, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
9: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीकी ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
10: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
11: जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
12: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री, जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा, लोक सत्य में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, यूसीआई पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमरीका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है, युद्ध अभ्यास में दिखी भारत यूएस की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनपिंग से मिलकर काम करने का वादा।
0: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra for second day today. Make in India initiative aimed at transforming the country into manufacturing nation completes 12 years today. FSSAI proposes nationwide ban on manufacture and sale of analog paneer. Fourth UP International Trade Show to begin today at India Expo Center and Mart in Greater Noida. Indian duo of Kamaljeet and Suruchi Singh storms into final of mixed team 10-meter air pistol event at Asian Games in Nagoya, Japan. And defending champions India hold Azerbaijan to draw in 8th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will interact today with video conferencing with participants of Seva Yatra travelling from Varanasi in UP to Vadnagar in Gujarat under Seva Sankalp Abhiyan. More from our correspondent.
14: The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experience from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages, with the program focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is not limited to a motorcycle expedition, but is designed to bring together service, communication, youth participation, social welfare, cultural connect and community mobilization at different locations along the route. Yashasvi Kiryal, Akashvani News, Delhi.
13: The Prime Minister yesterday interacted with participants of the Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi and praised their ongoing journey as a significant step toward grassroots nation building. During the interaction, Mr. Modi asked the participants about their experiences on the road, their interactions with people and the new learnings they had gathered during their journey. Today marks 12 years of Make in India. It was on this day in 2014 when the initiative was launched with the ambition of becoming a global hub for manufacturing, design and innovation. The initiative has transformed India's manufacturing landscape by expanding production, investment and capabilities across industries. We have a report.
15: Over the years, Make in India has opened new opportunities for businesses and investors to participate in India's manufacturing journey. The initiative has subsequently been expanded under Make in India 2.0. The initiative now focuses on 27 sectors, which include 15 in manufacturing and 12 in services. Guided by minimum government, maximum governance, it has also sought to modernize processes and policies. Under the initiative, India's electronics production increased nearly sevenfold from 1.9 lakh crore rupees in 2014-15 to over 13 lakh crore in 2025-26. During this period, Indian Railways manufactured nearly 55,000 coaches over 2014-2024. Further, under the Make in India initiative, country's indigenous defense production increased from 46,429 crore rupees in 2014-15 to a record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26. The initiative now goes beyond producing more goods and focuses on building the skills, technology and capacity needed to make them in India. With Priya Mondal, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
13: The Food Safety and Standards Authority of India, or FSSAI, has proposed nationwide ban on manufacture and sale of analog product as paneer. In a notification, the FSSAI stated that the products already licensed or registered under Analog in Dairy Context category shall discontinue the use of the term paneer in the nomenclature, labeling or marketing. The FSSAI has proposed the amendment in the Food Safety and Standards Prohibition and Restrictions on Sales Regulations 2011 for analog paneer. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through Sri Ann or millets.
3: Millets such as pearl millet, sorghum, finger millet, kudo, little millet and barnyard millet have been part of India's traditional diet for centuries. The government of India is now promoting these grains as Sri Anna. The observance of 2023 as the International Year of Millets also helped raise their global profile. Millets provide dietary fiber, protein, iron, calcium, magnesium and other micronutrients. They can form part of a balanced diet and are particularly relevant for managing lifestyle diseases such as diabetes and obesity. Senior faculty at Jaipur Sawai Mansingh Medical College, Dr. Punit Saxena says millets are naturally gluten-free and nutritionally rich.
4: Millets are nutrient-dense whole grains and can be used as an alternative source as a staple food to refined cereals like wheat and rice when eaten in appropriate portions. Millets are rich in complex carbohydrates which provide sustained energy and slow release of the nutrients and gives a feeling of fullness to stomach. Also, they are gluten-free, so they can be consumed by people suffering from gluten allergy, that is celiac disease.
3: Millets also needs less water, making them suitable for water conservation and climate-resilient farming. Rajasthan has traditionally been a major millet-growing state, particularly for pearl millet. The focus is now shifting from production to processing, value addition and better market access. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jaipur.
13: This is Akashwani giving you the news.
16: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
13: The fourth edition of the UP International Trade Show will begin today at the India Expo Center and Mart in Greater Noida, Uttar Pradesh. Union Home Minister Amit Shah and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath will inaugurate the five-day event. More from our correspondent.
8: The event is expected to witness participation of over 2,400 exhibitors, 1.5 lakh B2B buyers and more than 4.5 lakh general visitors. Over 550 international buyers from 85 countries are also expected to attend the event. Partner countries for this edition are Austria, Japan, Russia, Singapore, Belarus and Vietnam. Additionally, reflecting the prominent role of women in trade and industry, around 300 women representatives will actively participate in the event. The exhibition will showcase various industries and sectors including agriculture, automobiles, defense, IT, health, tourism and renewable energy. A major highlight this year is the introduction of the One District, One Cuisine initiative, which will be featured alongside the One District, One Product scheme to present the state's traditional culinary heritage to the world. With Ankit Kumar, Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
13: Anant Chaturdashi is being celebrated across Mumbai today, marking the culmination of the 10-day Ganesh Utsav that began on Ganesh Chaturthi. More from our correspondent.
17: Mumbaikars will bid a tearful adieu to their beloved Ganpati Bappa amid beats of Dhol Tasha, Pushpavrishti and chants of Ganpati Bappa Moria. Thousands of devotees are expected to participate in the grand farewell to Lord Ganesh. The visurgent processions of Lal Bagh Chaaraja and Mumbai Chaaraja are among the most iconic sites of the city. The Maharashtra Tourism Department has set up a special viewing pavilion at Girgaon Chapati for foreign tourists to witness Ganesh immersion ceremony and experience Mumbai's vibrant cultural traditions. Major immersion sites including Girgaon Chowpatty, Dadar, Juhu and other locations have been equipped with special arrangements for devotees. The Brihanmumbai Municipal Corporation has deployed civic personnel, lifeguards, ambulances, motorboats to facilitate safe and smooth immersions. Prarthana, Akashwani News, Mumbai.
13: Prime Minister Narendra Modi has paid tribute to Pandit Deendayal Upadhyay on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi highlighted that Pandit Upadhyay regarded the upliftment of the person standing at the last row of society as the foundation of nation building. The deep depression over north coastal Andhra Pradesh and adjoining South Odisha has weakened into a depression, but its impact continues to trigger heavy rain in several parts of Odisha. Southern and western districts have been particularly affected after 3 days of incessant rainfall, with flooding, landslides and disruption of road communication reported from several areas. Schools and Anganwadi centres remain closed today in 6 districts as authorities continue to monitor the situation. More from our correspondent.
10: Heavy rain continues in several parts of southern and western Odisha under the influence of the weekend depression. Koraput, Raigada, Malkangiri, Ganjam, Navarangpur, Gajapati and Kalahandi remain among the most affected districts. According to the state government, rain-related impacts have been reported across dozens of blocks and villages, while more than 8,000 people have been shifted to safer locations. Road communication has been disrupted in many parts of southern and western Odisha. Flood conditions are also being monitored in northern Odisha. The Jalaka River at Mathani in Baleswar district is in a severe flood condition, with several low-lying areas of Basta facing inundation. The India Meteorological Department has forecast continued rainfall in Odisha, although the weather system is gradually weakening. Authorities have kept disaster response teams on alert in vulnerable areas. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
13: Heavy rain is likely in several districts of West Bengal today. The Alipur Meteorological Office has warned of heavy rain in East and West Midnapur, Bankura, Purulia, West Burdwan and Birbhum. The deep depression is moving north-northwestwards and is expected to weaken further over the next 24 hours. It brought intermittent rain to several districts overnight. Strong winds of 40 to 50 kilometers per hour may affect South 24 Parganas and East and West Midnapur. On to sports. In Asian Games, Indian duo of Kamaljeet and Suruchi Singh stormed into the final of mixed team 10-meter air pistol event after topping the qualification with a strong performance today in Nagoya, Japan. After registering a 196 in the opening series, the Indian pair raced to 391 at the end of second series after scoring 195, placing them within sight of making the finals with just 20 shots remaining. In table tennis mixed doubles, India's Manu Shah and Dia Chitale stunned world number 4 Du Hui Kem and Wong Chun Ting of Hong Kong 3-1 to reach the semi-finals at the Asian Games. The Indian duo won 11-6, 13-15, 11-9, 11-5 in the quarterfinals to secure India's first table tennis medal at the ongoing games. Defending champions India held Azerbaijan to a 2-2 draw in the 8th round of the 5th Chess Olympiad in Samarkand yesterday. R. Pragyanand, Arjun Erigesi, D. Gukesh and Vidit Santosh Gujarati were all held to draws by the Azerbaijani opponents. Gukesh drew with Murad Ali Muhammad after 56 moves, while Pragyanand drew with Shakhriyar Momuradiorev, Arjun with Aydin Suleimanli and Vidit with Rauf Memedev. India remained in joint second place in the open section with 13 match points. Uzbekistan and Germany share the lead with 14 match points after Germany defeated the host 2.5 to 1.5. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
18: Thank you, Shagun. The Asian Age headlines, service, not power, goal is nation building, says PM Modi. The Pioneer reports from 1% to 10% by 2035, India's seed industry sets its sights on global market. The goal was to set out at FSII Knowledge Day 2026, held as part of the Federation's 10th annual general meeting in New Delhi. Hindustan Times informs Italy cabinet gives nod to burqa ban in school, adding the burqa ban was a matter of security. And finally, the Indian Express informs former Uber driver farmer son teen up to win India's medals in double sculls. They were an unlikely pair even before they were thrown together. Satnam Singh, the Navy man, Salman Khan, the former Uber driver. 2 6-footers from very different backgrounds who had barely 5 days to figure each other out in a double skulls boat. And with that, it's back to you, Shagun.
13: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra for second day today. Make in India initiative aimed at transforming the country into manufacturing nation completes 12 years today. FSSAI proposes nationwide ban on manufacture and sale of analog paneer. 4th UP International Trade Show to begin today at India Expo Center and Mart in Greater Noida. Indian duo of Kamaljeet and Suruchi Singh storms into final of mixed team 10-meter air pistol event at Asian Games in Nagoya, Japan. And defending champions India hold Azerbaijan to draw in 8th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
7: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
19: दीदी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बच्चे के जन्म को लेकर।
20: चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना, सब बहुत अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई।
21: पर खर्चा?
20: बच्चे का जन्म और दो रात अस्पताल में, माँ और बच्चे दोनों की देखभाल।
21: वो तो ठीक है, पर खर्चा?
20: अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना?
22: चांस क्यों लेना है? चांस क्यों लेना?
23: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
24: डॉक्टर दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहू का प्रसव अच्छे से हो गया, क्या आप जच्चा बच्चा को घर ले जाएं?
25: अभी माँ बहुत कमजोर है, उसे दो दिन यहीं रहने दें। प्रसव के तुरंत बाद जच्चा बच्चा को संक्रमण और रोग का खतरा ज्यादा रहता है। सही देखभाल और संक्रमण से बचने के लिए माँ और बच्चे को प्रसव के बाद दो दिन अस्पताल में ही रहने दें। यह सुविधा सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
23: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
26: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष हुए पूरे। विनिर्माण और निवेश ने देश ने गढ़े नए कीर्तिमान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में सिलाई प्रशिक्षण ले रही बहनों की सराहना की, कहा कौशल विकास से महिलाएं हो रही हैं आत्मनिर्भर। कोडरमा स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में लगी आग की जांच तेज। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम ने टेक्निकल टीम के साथ किया प्रभावित कोच का निरीक्षण। जमशेदपुर बैंक डकैती के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर। कोल्हान डीआईजी ने सीमावर्ती इलाकों में सघन चेकिंग और बैंकों की सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। और राज्य में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण रांची में उड़ान और रेल सेवा प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। मेक इन इंडिया ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को नई दिशा दी है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन, निवेश और औद्योगिक क्षमताओं का विस्तार हुआ है। इस पहल ने भारत को वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में महिलाओं के कौशल विकास और सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की है। उन्होंने इसे आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बताया। कार्यक्रम का लाभ उठा रही एक लाभार्थी महिला ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इस सिलाई सेंटर से सिलाई सीखकर हमें बहुत मदद मिली है।
27: अन्नपूर्णा देवी जी के माध्यम से सिलाई सिखा जा रहा है। हम सब महिलाएं मिलकर के यहाँ पे आए सिलाई सीखने के लिए और उनके माध्यम से हम लोग यहाँ पे सिलाई अच्छे तरह से सीख पा रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा हम लोगों को यहाँ पे सिलाई सीखने का अवसर मिला और हम लोग यहाँ पे अच्छे तरह से सीख करके जाए और आत्मनिर्भर बन करके खुद का कुछ कर सके और सब महिलाओं का हौसला बढ़ा सके।
26: राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की पुत्री त्रिशा सिंह का कल रांची में अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और राज्यसभा सांसद महुआ माझी सहित कई गणमान्य लोगों ने पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महुआ माझी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इस घटना को अत्यंत हृदय विदारक बताया।
28: बहुत ही दुखद घटना है, 17 साल की बच्ची, तो ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। और इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा दुख, माँ बाप पर क्या बीतती है आप समझ सकते हैं। माननीय दीपिका जी उन बातों को याद कर रही हैं और बहुत ज्यादा उनको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि मानसिक रूप से बिल्कुल टूट सी गई है वो। और पूरे परिवार को ईश्वर इस दुख को सहने की क्षमता दे।
26: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे मिलावटी या एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। नए नियमों के तहत अब ऐसे उत्पादों के लेबल और प्रचार में पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण का उद्देश्य उपभोक्ताओं को भ्रम और मिलावट से बचाना है। चाईबासा सदर अस्पताल में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। JSSC CGL परीक्षा अनियमितता मामले में अपराध अनुसंधान विभाग CID ने बिहार के सारण से एक और आरोपी मनु कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। उस पर अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। वहीं मामले में पहले से गिरफ्तार दो अन्य आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर

0: www.radiomaria.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा स्टेशन पर खड़ी कोडरमा बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन में कल लगी आग की जांच तेज हो गई है। धनबाद रेल मंडल के DRM अखिलेश मिश्र टेक्निकल टीम के साथ कल रात खुद कोडरमा पहुंचे और प्रभावित कोच का बारीकी से निरीक्षण किया। DRM ने बताया कि आग लगने के सटीक कारणों का पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा।
1: सिस्टम है, उसमें काम करा है, फायर कंटेन हो गई है, तो फायर से कुछ रहते हैं कोच के ऊपर, उसने काम करा कि कोई कोच में जाबे देगा, कोई जान की हानि नहीं हुई। आग का काबू जो है पूरा रेलवे की काबू पा लिया गया, उसमें प्रिपेरेडनेस थी और जो रेडीनेस थी और जो अवेलेबल मीन्स थे पूरे इस तरह से प्लान करा गया है, इस तरह की आपदा को डील करने के लिए वो आपदा प्रॉपरली हैंडल हुई।
0: कल दोपहर बरकाकाना रवाना होने से पहले ट्रेन की आखिरी महिला और दिव्यांग आरक्षित बोगी से अचानक धुआं निकलने लगा। RPF और स्टेशन प्रबंधन ने तत्परता दिखाते हुए बोगी को तुरंत ट्रेन से अलग किया, जिससे हादसा टल गया। जमशेदपुर बैंक डकैती के बाद सीमावर्ती सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। कोल्हान रेंज के DIG अनुरंजन किस्पुट्टा ने गम्हरिया में उच्च स्तरीय बैठक कर बैंकों की सुरक्षा बढ़ाने और अंतर जिला सीमाओं पर 24 घंटे सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गयी। मौसम। राज्य में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में जल जमाव और कम दृश्यता के कारण विमानों और गाड़ियों का परिचालन बाधित हुआ है। भारी बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए तेनुघाट डैम के फाटक खोल दिए गए हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज भी रांची, पलामू, गढ़वा और गिरिडीह समेत 8 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: पहले भी जो पूर्वानुमान में हम लोगों ने बताया था कि इस सिस्टम का जो असर है वो 26 तक तो देखने को मिलेगा, जिसमें 25 में पलामू संभाग सटे हुए जिलों में भारी बारिश का हम लोगों ने अंदेशा जताया है। यथावत स्थिति में अभी भी बरकरार है। 26 में भारी बारिश की वार्निंग नहीं है, तो अभी मान के चलिए कि 26 में बारिश में कमी आएगी, 27 में और कमी आएगी, 28 में स्थिति पूरी तरीके से सुधार की ओर अग्रसर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा।
0: रांची में खराब मौसम और भारी बारिश के कारण बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है। कम दृश्यता की वजह से इंडिगो की दिल्ली जाने वाली उड़ान रद्द कर दी गई, जबकि पुणे और कोलकाता जाने वाली उड़ानें घंटों देरी से चली। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड CUJ के स्थायी परिसर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पेफी झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी फुटबॉल, वॉलीबॉल, योग और कराटे में हिस्सा ले रहे हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने सड़क हादसे में मंत्री दीपिका पांडे सिंह की बेटी समेत 4 की मौत की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जमशेदपुर में केनरा बैंक में डाका, 33 करोड़ का सोना और 42 लाख कैश लूटे। प्रभात खबर हाईकोर्ट के हवाले से लिखता है, जेलों में स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग से हुई नियुक्ति असंवैधानिक। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची हिंसा में 5 दोषियों को 2 साल की सजा। और दैनिक जागरण के अनुसार आज 11 बजे स्कूल से लेकर मैदान तक गूंजेगा वंदे मातरम। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष हुए पूरे। विनिर्माण और निवेश में देश ने गढ़े नए कीर्तिमान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में सिलाई प्रशिक्षण ले रही बहनों की सराहना की, कहा कौशल विकास से महिलाएं हो रही हैं आत्मनिर्भर। कोडरमा स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में लगी आग की जांच तेज। धनबाद रेल मंडल के DRM ने टेक्निकल टीम के साथ किया प्रभावित कोच का निरीक्षण। जमशेदपुर बैंक डकैती के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर। कोल्हान DIG ने सीमावर्ती इलाकों में सघन चेकिंग और बैंकों की सुरक्षा बढ़ा

0: सभी सरकारी अस्पताल,
1: डिस्पेंसरी या हेल्थ सेंटर में मुफ्त मिलती है।
0: दो बूंद जिंदगी के।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: भूल गए आज कौन सा दिन है?
4: गुरुवार है, क्या हुआ तो?
3: अरे गुरुवार और शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर एक साल तक के बच्चों को मुफ्त टीके लगाए जाते हैं।
4: अच्छा, चलो जल्दी फिर।
3: आप भी याद रखें, टीकाकरण कराएं और बच्चों की जिंदगी को सुरक्षित बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें।
5: हर गुरुवार और शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर एक साल तक के बच्चों को मुफ्त टीके लगवाएं।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

FMK 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक।

अभी आप सुन रहे थे कुरमाली लोकगीत। कलाकार थे बसंत महतो एवं साथी। इसके साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

श्रोताओं, आज के विविध कार्यक्रम में हम चर्चा के माध्यम से जानेंगे विश्व फार्मासिस्ट दिवस के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, आज 25 सितंबर है। आज ही के दिन पूरे विश्व में विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। यह दिवस स्वास्थ्य सेवाओं में

0: फार्मासिस्टों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और लोगों को दवाओं के सुरक्षित एवं उचित उपयोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। फार्मासिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो दवाओं से संबंधित जानकारी और सेवाएं हमें प्रदान करते हैं। श्रोताओं, विश्व फार्मासिस्ट दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में फार्मासिस्ट की भूमिका केवल दवा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे दवाओं की गुणवत्ता, उचित उपयोग, भंडारण और मरीजों को आवश्यक जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दिवस फार्मेसी के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के योगदान को सम्मानित करने का अवसर भी प्रदान करता है। श्रोताओं, फार्मासिस्ट डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं को सही तरीके से उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। वे मरीजों को दवा लेने का सही समय, मात्रा और आवश्यक सावधानियों के बारे में भी जानकारी देते हैं। अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में फार्मासिस्ट दवाओं के प्रबंधन और सुरक्षित उपयोग में भी योगदान देते हैं। श्रोताओं, आज के समय में अनेक प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं, इसलिए दवाओं का सही उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना उचित सलाह के दवाओं का गलत या अनावश्यक उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। फार्मासिस्ट लोगों को दवाओं के जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रोताओं, स्वास्थ्य व्यवस्था में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य स्वास्थ्यकर्मी मिलकर मरीजों की देखभाल करते हैं। फार्मासिस्ट दवाओं से संबंधित विशेषज्ञ जानकारी उपलब्ध कराते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में योगदान प्रदान करते हैं। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी फार्मासिस्ट लोगों तक आवश्यक दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुंचाने में सहायता करते हैं। श्रोताओं, विश्व फार्मासिस्ट दिवस लोगों को यह संदेश देता है कि दवाओं का सेवन जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। किसी भी दवा का उपयोग डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्यकर्मी के सलाह के अनुसार करना चाहिए। दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखना और उनकी उचित तरीके से देखभाल करना भी आवश्यक है। श्रोताओं, विश्व फार्मासिस्ट दिवस स्वास्थ्य सेवाओं में फार्मासिस्टों के योगदान को समझने और सम्मान देने का महत्वपूर्ण अवसर है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में फार्मासिस्टों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें दवाओं का सही और सुरक्षित उपयोग करना चाहिए तथा स्वास्थ्य संबंधी मामलों में योग्य चिकित्सक और फार्मासिस्ट की सलाह को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। स्वस्थ समाज के निर्माण में फार्मासिस्टों का योगदान हमेशा सदैव रहेगा। श्रोताओं, अभी हम चर्चा के माध्यम से जान रहे थे विश्व फार्मासिस्ट दिवस के बारे में।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सेना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में आइए अब आयोडीन से होने वाली बीमारी, कारण, लक्षण एवं उपचार विषय पर आधारित यह भेंटवार्ता सुनते हैं। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिवाकर सिंह और उनसे बातें कर रहे हैं अवनीश कुमार सिन्हा।
2: आयोडीन या अवकारक लवण, जो कि एक रासायनिक तत्व है, आयोडीन हमारे आहार में एक प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है और इसकी कमी से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां होती हैं। दुनिया भर में प्रतिवर्ष लाखों बच्चे सीखने की कमजोर क्षमता के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि उनकी माताओं ने गर्भावस्था के दौरान भोजन में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं ली।

0: आयोडीन की मदद से गर्दन के पास पाए जाने वाले थायराइड ग्रंथि विकास के लिए जरूरी हार्मोन पैदा करती है। इसी विषय को लेकर आज हम मिल रहे हैं सदर अस्पताल चाईबासा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिवाकर सिंह से, जिनसे हम बातें करेंगे आयोडीन से होने वाली बीमारियां, लक्षण एवं उपचार के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आयोडीन क्या है और हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है?
1: आयोडीन एक रसायन तत्व है जो शरीर के जितनी भी रासायनिक प्रक्रिया है उसके लिए आवश्यक है। ये शरीर के समग्र विकास को नियंत्रित करता है, श्वास लेने और हृदय गति से लेकर शरीर के वजन और मांसपेशियों की शक्ति तक
0: जी।
1: सब कुछ बेहतर कार्य करे
0: जी।
1: यह आयोडीन पर निर्भर करता है
0: जी। जी।
1: जब आयोडीन का स्तर बहुत कम होता है
0: जी।
1: तो नींद आने लगती है
0: जी।
1: मरीज ध्यान लगाकर काम नहीं कर सकता है, जोरों और मांसपेशियों में दर्द के साथ डिप्रेशन होने लगता है। कुल मिलाकर भले ही आयोडीन बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरी हो लेकिन इसकी कमी शरीर को बड़ा नुकसान पहुंचाती है।
0: जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये आयोडीन की कमी से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?
1: आयोडीन की कमी से अगर समय रहते आयोडीन की कमी का इलाज ना किया जाए तो इससे हार्ट संबंधी बीमारियां हो सकती है, जैसे हार्ट का बढ़ा हुआ आकार, हार्ट फेल हो जाना। वह इसकी कमी से महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो सकती है
0: जी, जी।
1: जैसे अवसाद और बांझपन
0: जी।
1: आयोडीन की कमी वाली महिलाओं के प्रेग्नेंट होने की संभावना 46% कम रहती है
0: जी, जी।
1: गर्भवती महिलाओं में थायराइड हार्मोन की कमी का असर बच्चे पर पड़ता है
0: जी।
1: नवजात जन्म से कमजोर होगा
0: जी।
1: वहीं गर्भपात होगा, मृत बच्चों का जन्म और जन्म से ही होने वाली असमानताओं का जोखिम बढ़ जाता है।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम में या किसी में आयोडीन की कमी है तो इसका हम पता कैसे लगाएंगे?
1: और इसके लिए आयोडीन की कमी का पता लगाया जाता है जिसके लिए कुछ टेस्ट है, जैसे कि यूरिन और ब्लड टेस्ट
0: जी।
1: से आयोडीन की कमी का पता लगाया जा सकता
0: जी।
1: है और एक और टेस्ट है, आयोडीन पैच टेस्ट भी होता है, जिसमें डॉक्टर त्वचा पर आयोडीन के एक पैच पेंट करते हैं और जांचते हैं कि 24 घंटे के बाद यह कैसा दिखता है
0: जी, जी। तो इससे पता लग जाता है कि शरीर में आयोडीन की कमी
1: है
0: जी, जी। अगर किसी को कमी है तो उसके तो लक्षण भी दिखाई देंगे। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है?
1: इसके लक्षण है गर्दन में सूजन
0: जी।
1: अचानक वजन बढ़ना, कमजोरी या थकान महसूस होना, बालों का झड़ना या कम हो जाना
0: जी,
1: याददाश्त कमजोर होना
0: जी,
1: गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं, मासिक धर्म की अनियमितता या मासिक धर्म में अधिक खून आना
0: जी, ये सभी आयोडीन की कमी से होते हैं।
1: कमी के लक्षण
0: जी। और भी कोई लक्षण सर?
1: इसके अलावा सूखी और परतदार त्वचा, सामान्य से अधिक ठंड लगना और असमान धड़कन भी इसकी कमी के संकेत होते हैं
0: जी। और कुछ बच्चों वगैरह में?
1: और बच्चों में आयोडीन की कमी मानसिक विकलांगता का कारण होती है।
0: तो बहुत बड़ी बात है सर।
1: दांतों का विकास नहीं होता है और मानसिक विकास रुक जाता है, बच्चा मन बुद्धि की तरफ बर्ताव करेगा।
0: ये अगर लक्षण है डॉक्टर साहब, तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को इस लक्षण को विस्तार पूर्वक बताइए।
1: शरीर में आयोडीन की कमी से जो होता है उसमें गर्दन में सूजन
0: जी,
1: गर्दन में सूजन, गर्दन के आगे वाले हिस्से में सूजन होना
0: जी, जी
1: जी, ये आम और सबसे खास लक्षण है
0: जी जी। इसमें क्या क्या किस तरह से दिखाई पड़ेगा?
1: यह लक्षण घेंघा रोग
0: जी
1: या फिर थायराइड की ग्रंथि बड़ी होने की वजह से ही दिखता है
0: जी।
1: दरअसल हमारे गर्दन के आगे वाले हिस्से में तितली के आकार का एक ग्रंथि होती है
0: जी।
1: यह थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH से संकेत प्राप्त करके शरीर में थायराइड हार्मोन बनाता है
0: जी।
1: जब हमारे शरीर में TSH का स्तर बढ़ता है तो थायराइड ग्रंथि जो है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का उपयोग करती है
0: जी।
1: ऐसे में जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है
0: जी।
1: तो यह थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती है
0: जी।
1: शरीर में आयोडीन की कमी को पूरा करके इस परेशानी को दूर किया जा सकता है।
0: यानी कि जो घेघा रोग हो जाता है गर्दन में, मतलब कि जो फूल जाता है, वो आयोडीन की कमी से,
1: आयोडीन की कमी से
0: जी है। और दूसरा क्या है सर? और
1: दूसरा है वजन बढ़ना
0: जी।
1: शरीर में यह लक्षण तब दिखते हैं जब शरीर में थायराइड हार्मोन बनाने के लिए पर्याप्त आयोडीन ना हो
0: जी।
1: दरअसल थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म की गति को नियंत्रित करते हैं
0: जी।
1: यह वह प्रक्रिया है जिसके जरिए हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा और गर्मी में परिवर्तित कर देता है
0: जी।
1: जब शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर कम होता है तो हमारा शरीर कैलोरी बर्न करने में सक्षम नहीं हो पाता
0: जी,
1: जिसके कारण शरीर में मोटापा बढ़ जाता है
0: जी। जी जी, यानी कि मोटापा भी एक कारण है आयोडीन की कमी।
1: हाँ जी। उसके बाद थकान और कमजोरी होना
0: जी।
1: शरीर में आयोडीन की कमी से समान लक्षणों में थकान और कमजोरी को भी शामिल किया जा सकता है
0: जी।
1: जिन लोगों के शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर होने के साथ साथ आयोडीन की कमी रहती है
0: जी,
1: उन्हें थकान और कमजोरी अधिक महसूस होती है
0: जी।
1: व्यक्ति में यह लक्षण तब नजर आते हैं जब हमारे शरीर का हार्मोन स्तर कम होने की वजह से शरीर पर्याप्त रूप से ऊर्जा नहीं बना पाता
0: और हम लोग थकान महसूस करने लगे
1: और हम लोग थकान महसूस करते
0: जी, जी।
1: चौथा लक्षण है बालों का झड़ना
0: जी। जी जी,
1: हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन बालों के रोम छिद्रों के विकास को नियंत्रित करते हैं
0: जी।
1: जब हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बालों के रोम छिद्रों का विकास काफी तेजी से होता है
0: जी।
1: इस स्थिति में आपको बाल झड़ने की शिकायत हो सकती है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि शरीर में आयोडीन की कमी से आपके बाल झड़ रहे हैं
0: जी।
1: ड्राई और परतदार स्किन
0: जी, इसमें मतलब कि शरीर में ये जो स्किन है वो ड्राई हो जाता है,
1: ड्राई हो जाता है, सूख जाता है
0: जी।
1: शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर जब कम होता है तो व्यक्ति का स्किन सूख जाता है, ड्राई हो जाता है और परतदार नजर आता है और सामान्य से अधिक ठंड लगना, ये भी एक लक्षण है।
0: अच्छा, मतलब कि अगर ठंड हमें ज्यादा लग रहा है, मतलब कि
1: ठंड के दिन,
0: ठंड के दिन
1: जितना नॉर्मल आदमी को ठंड लगता है उससे ज्यादा ठंड लगेगा
0: जी जी, तो जी
1: मरीज आएगा बोलेगा कि हमको बहुत ठंडा लग रहा है
0: जी।
1: तो जब हमारे शरीर में पर्याप्त रूप से थायराइड हार्मोन नहीं होता है
0: जी,
1: तो आपका स्किन ज्यादा संवेदनशील हो जाता है
0: जी।
1: इस स्थिति में आपको ज्यादा ठंड और ज़्यादा गर्म लगने की परेशानी हो सकती है
0: जी।
1: साथ ही यह आपके पाचन क्रिया को भी धीमा कर देता है
0: जी।
1: जिसके कारण आपके शरीर में कम गर्मी उत्पन्न होती है
0: जी।
1: इसकी वजह से आपको सामान्य से अधिक ठंड लगती है। थायराइड हार्मोन को सुधारने के लिए आप आयोडीन के साथ साथ भूरे रंग के फैट को भी शामिल कर सकते हैं,
0: मतलब कि भोजन। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि ये लक्षण तो हैं, अगर दिखाई पड़े तो वो तो डॉक्टर से संपर्क करें ही, साथ ही हम ये जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि इसका आखिर उपचार क्या है, कैसे इसको दूर किया जाए।
1: इसके उपचार के लिए खाने में
0: जी जी
1: मछली, अंडे, मेवे, मीट, ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट
0: जी जी
1: और समुद्री शैवाल
0: जी,
1: ये सब कुछ ऐसे खास पदार्थ हैं जिसे में प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है
0: जी।
1: यदि आहार से पर्याप्त आयोडीन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है
0: जी,
1: तो डॉक्टर इसके लिए सप्लीमेंट की सलाह देते हैं। जैसे आयोडीन नमक इसका एक तरीका है
0: जी,
1: आयोडाइज्ड नमक
0: जी जी जी, जी। यानी कि खान पान से हम तो अपने आयोडीन के स्तर को बढ़ा सकते हैं और आयोडीन युक्त नमक जो है वो बहुत जरूरी है, तो इसे अपने खाने में शामिल करना चाहिए।
1: हाँ,
0: जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
1: अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आयोडीन की समस्या जो है
0: जी,
1: अगर समय रहते उसका इलाज नहीं किया गया
0: जी,
1: तो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं, जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है
0: जी।
1: इसीलिए और खासकर गर्भवती महिलाओं को
0: जी जी जी
1: इसका सेवन बहुत ही आवश्यक है
0: जी।
1: इससे ना केवल इसकी कमी से ना केवल माँ बल्कि बच्चे को भी समस्याओं का सामना करना होता है
0: जी। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को आयोडीन से होने वाली बीमारी, लक्षण एवं उपचार के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आयोडीन से होने वाली बीमारी, कारण, लक्षण एवं उपचार विषय पर आधारित यह भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर दिवाकर सिंह और उनसे बातें कर रहे थे अवनीश कुमार सिन्हा। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं यह गीत। फिल्म का नाम है स्वदेश, आवाजें हैं उदित नारायण और कैलाश खेर की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं 9:30 हो रहे हैं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। ऋण पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: कृष्णा कॉटेज, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत श्रेया घोषाल के स्वर में।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं राजा फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। दिन के 10 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
0: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
0: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
0: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
0: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
0: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
0: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
0: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं। वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
2: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
0: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में
2: जी।
0: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
2: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
0: श्रोताओं, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया
2: जी।
0: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
2: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
0: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
2: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया। उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
0: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था
2: जी।
0: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
2: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
0: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया
2: जी।
0: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
2: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियां, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे, तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
2: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
0: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओं, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
2: ये कार्यक्रम

कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की चीं चीं की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।

हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की, लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम। हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
2: अरे अरे बिच्छू, अरे।
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
2: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
2: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।
2: आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था, आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता।

0: बालक सोचने लगा,
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई।

लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। FM के 101.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चयपासा केंद्र है। 10:30 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आपसे हम वादा करते हैं कि अगली बार फिर से आएंगे और बहुत सारी जानकारी आप सभी के लिए होगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और मुझे यानी राजदा
1: और शगुफ्ता को दें
0: इजाजत। आदाब
1: आदाब।
2: इसी के साथ उर्दू कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे पीरियोडिक एफएम अपडेट्स बेस्ड ऑन 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026। आईटी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और दोस्तों हम लेकर आ गए आपके लिए आज सुबह की घड़ी के 10:30 बजे एशियन गेम्स के लाइव अपडेट्स। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मौजूद है मेरे मित्र मोहम्मद शाहिद आसमी। सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत हुई द बिग न्यूज के साथ कि भारत को उसका ऑन गोइंग एशियन गेम्स में दूसरा स्वर्ण पदक मिल गया। जी हाँ, दिस वॉज बॉट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग वेयर आर शूटर्स गॉट अस द कोवेटेड गोल्ड मेडल इन द 10 meter air pistol mixed team event. Kamaljeet and Suruchi Singh putting up brilliant performances from the side to reach a tally of 484.6, thereby helping India get that coveted gold. And uske saath hi shooters ne men's 50 meter rifle 3 position mein bhi aaj Bharat ko silver medal dilwa diya hai, with excellent performances coming in from Aishwarya Pratap Singh Tomar, Neeraj Kumar and Rudrangsh Balasaheb Patil, putting in a total of 762, thereby helping India get the silver. Moving on to the other big news of the day, this would be from the world of squash, jahan dosto aapko bata de ki Abhay Singh made quick work of Japan's Runosuke Sukhoi, beating him 3-0 in straight matches, 11-4, 11-3, 11-6. In just 30 minutes to reach the men's singles semi-final. A small correction over there, in straight games to win the match 3-0 in just 30 minutes and thereby reach the semi-final. Abhay could be facing compatriot Veer Chatrani in the last four if Veer gets past Pakistan's Mohammad Irfan in his quarter-final later. An all-Indian semi-final would assure India at least of a silver medal. शाहिद
3: जी, शूटिंग की बात की, शूटिंग से आपने शुरुआत की थी, अच्छी खबर आज सुबह ही आ गई थी। शूटिंग से एक और बड़ी खबर आने वाली है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और नीरज कुमार ने 50 मीटर राइफल स्पर्धा के पुरुष व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 589 जबकि नीरज कुमार ने 588 अंकों के साथ चौथा और पांचवां स्थान हासिल किया। अब ये दोनों

0: खिलाड़ी हैं, दोनों शूटर हैं, पदक के लिए प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे यहाँ भी मेडल देखने को मिलेगा।
1: जी, और शायद कनू की दुनिया से अगर बताएं अपने मित्रों को तो कोई भी खास खबर नहीं है कनू स्प्रिंट में आज भारतीय एंगल से, क्योंकि इंडिया फिनिश्ड आउटसाइड द मेडल रेसेस इन टू इवेंट्स इन कनू स्प्रिंट। जी हाँ, भारत का सफर दो इवेंट्स के अंदर मेडल कंटेंशन से बाहर हो गया है। भारत के प्रोहित बरोई और प्रसन्न कुमार चेंपादेल सत्य प्रकाश फिनिश फिफ्थ इन द मेन्स कयाक डबल्स 500 मीटर सेमीफाइनल क्लॉकिंग 1:40.308 सेकेंड्स। देन दे कम्पीटेड इन फाइनल बी, जहां पर उन्होंने तीसरे स्थान पर समाप्त किया फ्रॉम चार पेयर्स के बीच में से, क्लॉकिंग अ टाइम ऑफ 1:40.411 सेकेंड्स। वही विमेंस कैनू डबल में 500 मीटर के सेमीफाइनल्स में मेघा प्रदीप और नेहा देवी ने भी चौथे स्थान पर समाप्त किया फ्रॉम 5 पेयर्स विद अ टाइमिंग ऑफ 2:08.306 सेकेंड्स। वेल, इसके साथ ही दी इंडियन विमेंस कयाक 4/500 मीटर क्वार्टरेट ऑफ देवी क्वारिकप्पम, पूजा सोनिया देवी भैरवम एंड पार्वती गीता फिनिश्ड 8th इन द फाइनल ए विद द टाइमिंग ऑफ 1:45.670 सेकेंड्स। शाहिद,
0: साक्षी टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं। महिला एकल यशस्विनी घोरपड़े ने सीरिया की हैंड जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। यशस्विनी ने मुकाबला 11-5, 11-5, 11-8, 11-8, 11-4 से जीता। अब राउंड ऑफ 16 में उनका सामना जापान के वर्ल्ड नंबर 3 मिवा हरिमोटो से होगा। पुरुष युगल में मानव और मानुष की भारतीय जोड़ी को राउंड ऑफ 32 में जापान के हरिमोटो और शोनोजुका के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पूर्व टेबल टेनिस में ही जी साथियान और हरमीत देसाई की जो भारतीय जोड़ी, उन्होंने पुरुष युगल में राउंड ऑफ 2 के मुकाबले में जो दूसरा मुकाबला था उसमें इंडोनेशिया के अफान प्रतमा और मोहम्मद नेगारा को हराकर अगले दौर में जगह बना ली है।
1: जी, एंड क्विक अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी, जहां भारतीय महिलाओं का सामना हो रहा है नेपाल से इस वक्त, और भारत ने पहले हाफ में बहुत ही स्ट्रांग बढ़त बना ली थी ओवर नेपाल 31-17 की एट द एंड ऑफ हाफ टाइम। और अगर हम बात करें उसमें संजू देवी और सोनाली के सबसे अहम कॉन्ट्रीब्यूशन रहे इन हेल्पिंग इंडिया ग्रैब दोस कोविटेड पॉइंट्स ऑफ 31 पॉइंट्स, विच देयर बाय हेल्प देम ऑल्सो गेट अ लीड इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर इन द फर्स्ट हाफ ओवर नेपाल। सेकेंड हाफ की भी शुरुआत हो चुकी है शायद, जहां पर इस वक्त अगर बात करें तो भारत लीड में बना हुआ है 17 अंकों के साथ और नेपाल है पीछे 7 अंकों के साथ। भारत का टोटल अभी तक का 48 पॉइंट्स का, जबकि एक्सैक्टली नेपाल उसके आधे पे है 24 पे। मैच ऑन गोइंग है, बट लुक्स लाइक इंडिया शुड बी विनिंग द सेमीफाइनल इन दिस।
0: आज इंडिया के लिए खबर अच्छी आ रही है। बैडमिंटन में उन्नति हुड्डा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए एशियन गेम्स की महिला एकल स्पर्धा के राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की कर ली है। उन्नति ने उत्तर कोरिया की यूमी सांग को सीधे गेम में 21-9, 21-10 से शिकस्त दी। अब राउंड ऑफ 32 में उन्नति का सामना मलेशिया की वोंग लिंग चिंग से खेला जाएगा।
1: राइट, और आपको बता दें टेबल टेनिस की दुनिया में से कि टेबल टेनिस के अंदर हम जो अभी देने वाले हैं वो अपडेट आपके लिए यह आ रहा है कि यशस्विनी घोरपड़े डिफीटेड हेंडजादा 4-1 टू रीच द राउंड 16 ऑफ एशियन गेम्स। और वहीं पर मिक्स डबल्स के जो हमारा पैर है मानव और मानुष का, दे लॉस्ट टू हरिमोटो एंड शिनोजुका ऑफ जापान 1-3 इन द राउंड ऑफ 32। एंड ऑल्सो गुड न्यूज कमिंग इन फ्रॉम कबड्डी, जहां भारत की महिलाओं ने नेपाल की महिलाओं को दोस्तों हरा दिया है और सेमीफाइनल जीत लिया है, विच मीन्स मोहम्मद शाहिद दैट इंडिया इज अश्योर्ड ऑफ अनदर मेडल एंड दिस टाइम इट वुड ईदर बी अ सिल्वर और अ गोल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी। And our women will be making us proud once again.
0: बिल्कुल, अब मेडल टेबल पर भारत को उछाल मिलने वाला है। आज जब शाम ढलेगी तब देखेंगे हम भारत का जो मेडल टेबल पर उछाल वो कितनी ऊपर जाएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतनी, एशियन गेम्स की इस घंटे की अपडेट है फिलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी ठीक 11:30 पर। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को और साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप सुन रहे थे एफएम अपडेट्स, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार रांची। सुनने वाले सभी दोस्तों को रेणु
4: और अमृता की ओर से
3: नमस्कार। जोहार अमिता, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से।
4: बिल्कुल,
3: विवेकानंद कहते थे आपके शब्द आपके व्यक्तित्व के प्रतिनिधि है। वैसे तो लोग आजकल ये कला सीख गए हैं कि बनाकर बात कैसे करना है, भीतर कुछ और चल रहा है और बाहर बहुत मीठे शब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन लंबे समय

0: चलता नहीं है।
1: हाँ, अध्यात्म कहता है जो बोलो दिल से बोलो, हृदय स्वच्छ रहता है तो वाणी भी पवित्र होगी। शब्दों में गजब की ताकत है। आप भीतर से जैसे हैं वैसे ही शब्द बोल रहे हैं तो आपका आत्मबल और बढ़ जाएगा, आप शांत महसूस करेंगे
0: और धीरे धीरे नई पीढ़ी की शब्दावली और भ्रमित होने वाली विकृति की ओर तो चल ही रही है। सोशल मीडिया पर जो संदेश जो हैं आदान प्रदान होते हैं, उन्हें केवल आंखों से नहीं पढ़ा जा रहा, वे कानों से भी उतर रहे हैं, क्योंकि उनमें सत्य नहीं दुष्प्रचार होता है, लोगों को भ्रम में डालने के लिए आकर्षण होता है।
1: इसीलिए कर्म से आप अपने भीतर के शब्दों पर काम करिए और संतुलित मीठे अर्थपूर्ण शब्द बोल सकते हैं। ये भी अपने में एक पूजा और मेडिटेशन है।

0: और जानती हो अमृता, आज है ना अनंत चतुर्दशी का पर्व जो है सब हमारे भक्त लोग मना रहे हैं, और ये भगवान विष्णु का ही अनंत स्वरूप की इसमें पूजा होती है और सब तरफ उनकी पूजा हो रही है। ये 14 गांठों वाले अनंत सूत्र का महत्व है, हाथ में लोग बांधते हैं। अनंत चतुर्दशी पर 14 गांठों वाले अनंत सूत्र का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये गांठे ब्रह्मांड के 14 लोकों का प्रतीक है। पूजा के बाद पुरुष इसे दाहिने और महिलाएं इसे बाएं हाथ में बांधती हैं। इसे सुख शांति रक्षा और समृद्धि की कामना का प्रतीक माना जाता है।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। श्रद्धा और संयम का पर्व है ये। अनंत का अर्थ है जिसका न आदि है न अंत, इसलिए यह पर्व केवल सुख समृद्धि की कामना तक सीमित नहीं है। इसे श्रद्धा संयम सदाचार और धर्म के मार्ग पर चलने के संकल्प का पर्व भी माना जाता है। अनंत चतुर्दशी पर 10 दिन की गणेश पूजा के बाद गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है। व्रत रखने वाले सात्विक और मीठा भोजन करते हैं, खीर पूरी।
0: घर में तरह तरह के लोग पकवान बनाते हैं, खीर पूरी मिठाई, कितने लोग नमक भी छोड़ते हैं
1: जी, और बच्चे बुजुर्ग और बीमार लोगों को स्वास्थ्य के अनुसार भोजन करने की सलाह दी जाती है।
0: हाँ, तो ये अनंत सूत्र के विशेष महत्व है सुख समृद्धि और संकटों से मुक्ति की कामना। तो चलो मुरली मनोहर की हम लोग भी आराधना करते हैं
1: जी।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: अमृता, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मौसम का हाल।
4: बिल्कुल, क्योंकि
5: मौसम का हाल
4: सब जगह
5: सब तरह तो देख रही हो क्या,
4: सब जगह इसी के बारे में चर्चा हो रही है। हाँ। ऐसा मौसम कर रखा है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे,
3: मुश्किल हो रहा है निकलना। और ये जो है ना, ये झारखंड के विभिन्न हिस्सों में लगातार जो हो रही बारिश से राज्य का अधिकतम तापमान जो है सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। ये बंगाल की खाड़ी में बने अति गहरे अदाब के प्रभाव से शुक्रवार को श्री पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और देवघर समेत कहीं कई जिलों में हवाओं के साथ भारी बारिश का असर ये जताए गए हैं।
4: बिल्कुल, राजधानी रांची में भी औसत से मात्र 12% कम बारिश दर्ज की गई है। पाकुड़ में 51% और चतरा, देवघर, गुमला, साहिबगंज में 30-37% कम बारिश हुई है। और जबकि शेष जिले में मानसून सामान्य के बराबर है। लगातार बारिश से राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है।
3: हाँ, ये मौसम जो है ना काफी उतार चढ़ाव बंगाल के खाड़ी में निम्न दबाव के कारण ही पड़ रहा है।
4: हाँ, उसी का असर है ये।
3: हाँ, तो घर में जो सीलन ज्यादा हो जा रहे हैं, कपड़े सूख नहीं रहे हैं, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पर ही पड़ रहा है। तो इससे है कि अपने को कैसे बचना है, खुद को कैसे बचाना है, उस पर भी ध्यान रखना होगा। खासकर खान पान में फफूंद लग जा रहे हैं, अगर छोड़ दो दिन
4: जी
3: तो उसका असर खाने पीने पर भी पड़ रहा है। तो मौसम जो भी है उससे बचकर रहना है और हम लोग को तो गीत संगीत का आनंद
4: लेते रहना है।

0: अमृता पलटते हैं इतिहास के पन्ने, जानते हैं आज के दिन किस महाहस्तियों का जन्म हुआ।
1: जी बिल्कुल, तो आपको बताते चले कि आज के दिन सन 1969 ईस्वी में ब्रह्म बासु का जन्म हुआ था, जो भारतीय अभिनेता, मंच निर्देशक, प्रोफेसर, नाटककार और फिल्म निर्देशक हैं।
0: 1914 ईस्वी में चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं भारतीय राजनीति के पुरोधा, किसानों के मसीहा, महान स्वतंत्रता सेनानी थे।
1: और 1916 में दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ, जो कि महान चिंतक और संगठक थे।
0: 1920 ईस्वी में सतीश धवन का जन्म हुआ, आज ही के दिन भारत

0: प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक थे।
1: और 1939 में फिरोज खान का जन्म हुआ, जो कि एक मशहूर फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और संपादक थे, जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।
0: उन्होंने अपने कैरियर में 60 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। फिल्म आरजू, आग, सफर, मेरा अपराध, गीता मेरा नाम, खोटे सिक्के, काला सोना जैसी सफल हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। धर्मात्मा, नागिन, शंकर, शंभू और कुर्बानी फिल्मों में अभिनय किया। 2007 की सुपरहिट फिल्म वेलकम उनकी आखिरी फिल्म थी। तो और ये भी बता दें कि आज जन्म जो है दिव्या दत्ता का।
1: जी, दिव्या दत्ता का भी आज के दिन सन 1977 ईस्वी में भी हुआ था। दिव्या दत्ता जी के जन्मदिन की उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। वीर जारा में उन्होंने काम किया था और उनके काम को काफी सराहना मिली थी और उनके दमदार अभिनय ने हम सबके दिल को जीत लिया था। आने वाला साल दिन आपके लिए खुशी, सेहत और यादगार के किरदारों से भरा हो।
0: और दिव्या दत्ता एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री हैं, जिन्होंने हिंदी, पंजाबी और अन्य भाषाओं की कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया है। और जैसे बात की ना कि ये 25 सितंबर को जन्म हुआ था इनका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, तो ये दिन महान विचारक, राजनीतिज्ञ और भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस। भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को उनकी जयंती पर इस दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया था।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद और आंदोलन पर विचार दिया, जो समाज के गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों की कल्पना पर जोर देता है, कल्याण पर जोर देता है। समाज के कमजोर वर्गों के को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने सामाजिक सरकारी प्रयास किए, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना।
0: हाँ, तो ये देश के लिए, गरीबों के लिए काफी कुछ काम किया, तो उन करते हैं उन्हें नमन।
2: बनने के थे

0: अब नमन करते हैं उन्हें जो आज हम सबसे विदा हो गए, दूर हो गए। 2010 में कन्हैयालाल नंदन का निधन हुआ, जो वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार थे। 1989 में आज के दिन सुदर्शन सिंह चक्र का निधन हुआ, जो साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। 1990 में स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद सिंह का निधन हुआ। 1990 में ही एस मुखर्जी का निधन हुआ, जो भारत के भूतपूर्व 20वें मुख्य न्यायाधीश थे।
1: और आपको बताते चले श्रोताओं कि सन 1955 ईस्वी में ही रुक्म बरकर का निधन हुआ था, जो कि भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थी। और 2020 में एमजी बाला सुब्रमण्यन का निधन हुआ था, जो कि पार्श्व गायक, अभिनेता, संगीत निर्देशक और फिल्म निर्माता थे। उन्होंने तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और मलयालम सहित 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए थे।
0: हाँ,
1: उन्हें 6 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। हिंदी सिनेमा में वे सलमान खान की आवाज के रूप में मशहूर हुए। मैंने प्यार किया का गाना, दिल दीवाना, हम आपके हैं कौन का गाना याद है ना, दीदी तेरा देवर दीवाना और पहला पहला प्यार है, साजन, एक दूजे के लिए जैसे हिट गाने उन्होंने दिए। आइए सुनते हैं उनका ये मशहूर गाना।
0: नहीं है ये तो हुई जन्म और मृत्यु की बातें, इतिहास का पन्ना यही समाप्त करते हैं। अफसोस है अमृता कि ये गाना हम अपने दोस्तों को नहीं सुना पा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारी बातें हैं जो हमको दोस्तों से करनी है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो अब बातें करते हैं शहर की।
1: जी,
0: तो चलते हैं देश दुनिया की सैर कर लें। तो कहाँ चलते हैं आज सैर करवाने चलते हैं? गुमला जिले के अंतर्गत पालकोट की किला। ये गुमला से 25 किलोमीटर दूर और पारकोट के पास गोबर सिली पहाड़ी अपनी रहस्यमय चट्टानों से पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसके मुख्य आकर्षण 5 विशाल चट्टाने हैं, जो एक दूसरे के ऊपर अजीब स्थिति में खड़ी है। इसमें बहुत सारी पौराणिक कथाएं शामिल हैं। पालकोट प्रखंड का प्राचीन नाम पंपापुर है। ये धार्मिक के अलावा पर्यटक स्थल भी हैं। पालकोट पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों का जीता जागता उदाहरण है।
1: हाँ, और यहाँ जो है प्राचीन ऋष्यमुख पर्वत है, जो आज भी साक्षात उमरा गांव में एक पहाड़ है, जिसका संबंध प्राचीन किष्किंधा से है। यहाँ मलमली गुफा है, जहाँ राजा बलि के डर से सुग्रीव छिपकर रहते थे। वे गुफा आज भी रामायण युग की कहानी बयां करती है। वर्तमान में गुफा संकरी हो गई है, परंतु आज भी ये सुग्रीव गुफा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ दिन भर में घूम कर आ सकते हैं। परिवार बच्चों के साथ घूमने का प्लान बनाइए। तब तक सुनते चले ये प्यारा सा गीत।

0: अमिता अब बातें करते हैं खेल जगत की।
1: जी बिल्कुल, और बताते अपने श्रोताओं के कि खेल में आज क्या क्या हुआ।
0: हाँ, जो जापान के नागोया में चल रहे एशियन गेम्स में भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिलाने वाली चानू ने नागोया में भी अपनी सफलता को दोहराते हुए भारत के लिए एशियन गेम्स में वेटलिफ्टिंग मेडल का लंबा सूखा खत किया। और भी बाकी और भी खेले हुई हैं, जैसे हॉकी जो है ना, विजयी हैट्रिक, सर्वाधिक गोल भी लिए।
1: बिल्कुल, और आपको बता दें श्रोताओं कि डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में साउथ कोरिया को 8-2 से हराया। यह पूल ए में भारत की लगातार तीसरी जीत है और टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है।
0: और भारत ने इससे पहले इंडोनेशिया की 13-1 और श्रीलंका को 16-1 से हंसवा था। दिलप्रीत ने 10वें और 26वें और 32वें मिनट में 3 गोल किए। उनके अलावा अभिषेक ने 2 गोल दागे। इस तरह से सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की हो गई है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो ये टीम्स को देते हैं शुभकामनाएं।

0: भाई हम लोग खेल की दुनिया से थोड़ा निकल के आते हैं,
1: जी।
0: और ये जो मानसून है ना, ऐसे में जानती हूँ नम्रिता कि जो दर्द नहीं उभरते हैं ना, वो भी दर्द ठंडा में और मानसून में उभर के आ जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही
0: बारिश के
1: कहा
0: मौसम के कारण।
1: जी, आपने बिल्कुल सही कहा।
0: हाँ
1: खासकर जोरों का दर्द ना, ये बिल्कुल जैसे भी मौसम ठंडा हुआ कि ये जोरों का दर्द
0: हाँ
1: सबको।
0: हवा के दबाव में ना कमी और कम धूप से बढ़ सकती है, जैसे जोड़ों की अकड़न जो है वो
1: जी।
0: बढ़ जाती है। खासकर मानसून में कई लोग जोड़ों के दर्द से जूझते हैं। मौसम अर्थराइटिस नहीं करता, लेकिन इसके लक्षण बढ़ा सकता है।
1: जी
0: ठंड मौसम में जोड़ों का चिकनाई वाला साइनोवियल फ्लूइड जो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जिसमें जोड़ों की
1: हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, इसका असर जो है घुटनों और कूल्हों पर ज्यादा पड़ता है, और इन बीमारियों का लक्षण जो है बढ़ सकता है अगर पहले से।

0: डाइजेस्ट के आप शिकार हैं, है ना, तो आपको जो है वो दर्द ज्यादा होगा। तो मानसून में दर्द बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा होती है, कभी फ्रैक्चर, लिगामेंट की चोट, घुटने का रिप्लेसमेंट, और उन्हें भी दर्द या टीस महसूस हो सकता है। जैसे किन्हीं को अगर फ्रैक्चर भी हुआ है, उनको भी वो दर्द महसूस हो सकता है।
1: और धूप में न निकलना भी दर्द का बहुत बड़ा कारण है। मानसून में धूप कम निकलने और रोगों के घर के अंदर ज्यादा रहने से शरीर में विटामिन डी का स्तर भी घट सकता है। इससे मांसपेशियों में कमजोर पड़ जाती है। हड्डियां और जोड़ों में दर्द बढ़ सकता है। लंबे समय तक एक्टिव न रहने से भी जोड़ों में अकड़न बढ़ने लगती है। ऐसे लक्षण दिखे ना तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए।
0: और जोड़ों के आसपास सूजन, लालिमा, कई हफ्तों तक रहने वाला दर्द, जोड़ हिलाने या वजन उठाने में दिक्कत, दर्द के साथ बुखार और लगातार अगर सुन्नपन, झुनझुनी या मांसपेशिया में कमजोरी हो, ये लक्षण सूजन, इन्फेक्शन, नर्व में शामिल होने या स्ट्रक्चर डैमेज की ओर इशारा करते हैं।
1: और जोड़ों के दर्द के बचने के आसान उपाय है, हल्की अकड़न होने पर, गर्म और सूजन या नई चोट होने पर बर्फ से सिकाई करें, रोज एक्सरसाइज या योग करें, जोड़ों को कम रखें और गीले कपड़े तुरंत बदलें, संतुलित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिए, वजन नियंत्रित रखें और अच्छी ग्रिप वाले जूते पहने और 7-8 घंटा की नींद लें।
0: जी,
1: ऐसा होता है ना अमृता कि ऐसे मौसम बारिश हो रही है ना तो प्यास तो नहीं लगती है और पानी शरीर में कम जाता है, लगता है प्यास ही नहीं है तो पानी क्या पिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी बीच बीच में अपने नॉर्मल जो है 10 से 12 गिलास पानी
0: जो पीते हैं आमतौर पर वो
1: पीते रहना चाहिए। और कपड़े लता जो है सूखा पहनना चाहिए, बाहर से भींग कर आए हैं तो तुरंत उसे खोल दे और साफ पानी से एक बार उसे अपने शरीर को धो लें। ऐसे अपने छोटे छोटे उपायों से आप बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।
0: जी,
1: तो जीने के तो बहाने कई हैं, बस हमको
0: वो तरीका आना चाहिए।
1: आना चाहिए।
0: जी।

0: चलते चलते जानकारी दे दे, एआई आपका साथी है, शुरुआती उपयोग के चार आसान तरीके भी हैं। जानती हो ना अमृता, कई बुजुर्ग मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिर्फ नई पीढ़ी के लिए है, जबकि सच्चाई इसके उलट है। अब एआई बुजुर्गों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है यदि मोबाइल पर टाइपिंग नहीं कर पाते, आंखें कमजोर है, या रोजमर्रा के छोटे कामों में मदद चाहिए तो सिर्फ बोलकर बताएं, एआई मदद करेगा।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी जो है वो एआई का जमाना है, और आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप एआई से आप उसे पूछ सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको करना क्या है कि आप गूगल असिस्टेंस या जेमिनी, स्मार्टफोन का होम या पावर बटन कुछ सेकंड दबा कर रखें और गूगल बोलकर जेमिनी या गूगल असिस्टेंस ऐप सक्रिय करें। फिर बोले, आज का मौसम बताओ, रात 8 बजे दवा का अलार्म लगा दो, और इसमें जो है टाइपिंग की जरूरत ही नहीं है।
0: और हर जरूरी सवाल जो का जवाब देता है। यहाँ व्हाट्सएप या मेटा एआई जो है, व्हाट्सएप पर ऊपर या नीचे लिख रहे नीले बैगनी गोल चक्र मेटा एआई पर टच करके इसे सक्रिय करें। इसके बाद चैट बॉक्स से के माइक बटन की को दबाकर बिना टाइप किए सीधे अपनी भाषा में बोलकर कोई भी सवाल पूछे।
1: जी बिल्कुल, और साथ ही चैट जीपीटी जो कि आज के युवाओं में काफी मशहूर हो चुका है, और पहले क्या है, इसको आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, फिर चैट बॉक्स में बने माइक बटन दबाकर सीधे बोलकर पुराने किस्से, कहानियां, घरेलू नुस्खे या इतिहास की कोई भी जानकारी अपनी सरल भाषा में सुनी या पढ़ी जा
0: और हर दस्तावेज आसानी से समझने में मदद करेगा। और फिर और ये चलते चलते फिर बातें करते हैं, ये हवा जो है दिखाई क्यों नहीं देती। हवा कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें होती है। हवा में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% होती है, 1% अन्य गैसें और कणे होते हैं।
1: जी, और इन गैसों के अणु इतने छोटे और दूर दूर होते हैं कि अधिकांश प्रकाश उनके बीच से गुजर जाता है और हवा हमें दिखाई नहीं देती। हवा इंसानों और जानवरों के लिए बहुत जरूरी होती है, इसकी मदद से हम सांस ले पाते हैं।
0: प्राणी हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, वही प्रक्रिया उन्हें भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करती है।
1: हवा हमें भले ही हल्की लगती हो लेकिन ये पृथ्वी पर प्रेशर बनाती है, इसे वायुमंडलीय दबाव या एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं।
0: साल 1996 में ऑस्ट्रेलिया में 408 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो विज्ञान के कई कई जानकारी हम लोग बीच-बीच में देते रहते हैं। और तो भाई हमारे पांव यहाँ नहीं है,
1: बिल्कुल पांव जमीन पे तो है नहीं हमारे,
0: काफी कुछ तरक्की कर रहे हैं, हो रहे हैं।
1: जी।

0: अमृता सबके पांव ऊपर ही रहे
1: जी,
0: बहुत ऊंचाई तक लोग छुए।
1: बिल्कुल,
0: इसी कामना के साथ कार्यक्रम जोहार रांची से रेणु
1: और अमृता को दे इजाजत।
0: नमस्कार, जोहार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। शुरुआत करते हैं फौजी शुरुआत करते हैं भारतीय सेना के समर्पित इस गीत से।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।

0: ಸ್ವಯಂ ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है फरमाइशें गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद. सभी दोस्तों को नमस्कार. हाजीपुर से नीतू सिंह, राकेश सिंह, डॉली सिंह और परिवार के सभी सदस्य, सासाराम से ममता पांडे, रेणु मल्लिक, माघवेंद्र कुमार, नूतन राय, निभा सिंह, मंजू बाला, शंकर, सुप्रिया पाठक, जमशेदपुर से सविता, प्रतीक्षा, चंदन और अलका और राकेश सिंह, इन सब की फरमाइश से सुनते हैं फिल्म कहो ना प्यार है से ये गाना. आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की है.

कार्यक्रम का अगला नगमा आप श्रोताओं के नाम रातू रोड से अहिल्या देवी, रति कुमारी, कृति कुमारी, गंगा प्रसाद मिश्र, मालती देवी और परिवार के सभी सदस्य। देवी मंडप रोड से दिलीप कुमार पाठक, अश्वनी पाठक और आदर्श पाठक। कमड़े से आप हैं सुचित्रा देवी, पूजा देवी, सिद्धि और हैप्पी। कांके से मान दुबे, मनोरमा देवी, संतोष कुमार। डेल्हा से सुरेंद्र, अशोक, हर्ष, अंजलि, अमीषा, आलोक और मनोरमा। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म जोश से ये गाना। अभिजीत की आवाज है। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत पर किया अनु मलिक ने।

अगला गाना फिल्म सूर्यवंशम से सोनू निगम की आवाज है। सुनने वाले हैं गांव सकरा से सुबोध, विनय, अनिल, अजय, पिंटू, केदार और रामावतार। न्यू एरिया मोरावादी से गौरी शंकर, राजकुमार, चितरंजन, नंदू, संजीव, संजय, दीपक, प्रदीप, विशाल और विक्की। गांव चोरिया से अरविंद शर्मा, विनोद शर्मा, नेहा और पिंकी और उनके एक साथी हैं सरिता। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मणिकपुरी, दतरंदी से भागवत वर्मा, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश वर्मा, सरिता वर्मा और गरिमा शर्मा। ओल्ड लिस्नर्स ग्रुप मुंबई जोन से महेंद्र, कुलदीप, कमल, भारत भूषण, राजा बाबू और युवराज। कुकर से दीपक कुमार ठाकुर, रूबी कुमारी, शिवू ठाकुर और ममता ठाकुर। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म सूर्यवंशम से ये गाना।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा आप श्रोताओं के नाम जसपुर नगर छत्तीसगढ़ से परमानंद नागदेव, मालती नागदेव, कुमारी सोनाली, मयंक अनिमेश और मास्टर अंसल नागदेव। दंतरेती छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, गुलाबदास, दिनेश वर्मा। गांधी चौक से सत्येंद्र, रामकृष्ण, क्षितिज और पूनम।

प्रोग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तरणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर, हीनू रांची से धर्मेंद्र कुमार, गोला बाजार से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और नेहा केसरी। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म न तुम जानो न हम से ये गीत।

इसी गीत के साथ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है। हर छोटी सी कोशिश हमें मंजिल के थोड़ा और करीब ले जाती है। जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस अपनों का साथ, चेहरे पर मुस्कान और दिल में विश्वास होना चाहिए। इन्हीं सकारात्मक बातों के साथ मैं आपकी रेडियो सखी खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में।
1: सखियों, आप सभी को राखी की ओर से भी प्यार भरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने कार्यक्रम में। रेडियो के इस सफर में आपकी आवाज़ भले ही हम तक ना पहुंच पाए, लेकिन आपका जो ये अपनापन है, आपका प्रेम है, आपका स्नेह है, वो सहज ही हमें महसूस होता है।
0: तो सखियों, क्यों ना आज हम कुछ ऐसी बातें करें जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हो और जिसकी जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: आज की बातचीत खास तौर पर हमें थोड़ा और जागरूक करने वाली है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में सुविधा के साथ लाभ और हानि का भी ख्याल रखना है, थोड़ी सावधानी भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सखियो, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा के जीवन में बहुत गहराई से जुड़ा है। आज मोबाइल फोन, इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों ने हमारे जीवन को काफी आसान बना दिया है। जैसे हम घर बैठे बिल जमा कर सकते हैं, या ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, या किसी से को पैसे भी भेज सकते हैं, या किसी से दूर बैठकर अपने दिल की बातें कर सकते हैं। सब कुछ बस कुछ ही मिनटों में हो जाता है।
1: बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही जादुई सा लगता है ये सब। लेकिन जहाँ सुविधा होती है वहीं सावधानी की जरूरत भी होती है।
0: बिल्कुल।
1: और डिजिटल दुनिया में थोड़ी सी लापरवाही कभी कभी बड़ी परेशानी का कारण भी बन सकती है। सखियों, आज हम बातें करेंगे साइबर अपराध और धोखाधड़ी की। साइबर अपराध का मतलब है कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट या किसी डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, उसकी जानकारी चुराना या उसके साथ आर्थिक धोखाधड़ी करना।
0: बिल्कुल सही कहा राखी तुमने। और साइबर अपराध का शिकार कोई भी हो सकता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति तकनीक का बहुत अधिक जानकार हो। कई बार अपराधी इतने विश्वास पैदा करने वाले तरीके से बातें करते हैं ना राखी, कि सामने वाला उनकी बातों में आ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का फोन आए और वे अपने आप को बैंक का अधिकारी बता देते हैं और ये कहते हैं कि आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, या फिर आपका KYC अपडेट नहीं हुआ है,
1: या फिर कोई ये भी कहता है कि आपने इनाम जीता है, या फिर आपके घर के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो गया है। इस तरह से वे सामने वाले को डराते हैं या फिर जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करते हैं ताकि उसे सोचने का मौका ही नहीं मिले।
0: बिल्कुल।
1: कई बार तो जज बन के, पुलिस अधिकारी बन के ये भी कहते हैं कि आपके बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया है, जल्दी पैसा भेजिए। इस तरह की कई चीजें होती हैं जो हमने खुद भी महसूस किए हैं।
0: बिल्कुल।
1: और मतलब ये ऐसा क्यों कि कई बार अपराधी बैंक अधिकारी वगैरह जो बनते हैं, या कुरियर कंपनी या किसी दूसरी संस्था का कर्मचारी बनकर भी बातें करते हैं, तो इससे सावधान रहना है।
0: बिल्कुल। और यही कारण है कि हमें किसी अनजान फोन, संदेश या लिंक पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात OTP, पिन, ATM का पासवर्ड, CVV, बैंक पासवर्ड या किसी प्रकार की गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। सखियो, बैंक या कोई जिम्मेदार संस्था सामान्यतः फोन करके ऐसी गोपनीय जानकारी नहीं मांगती, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: कभी कभी हमें मोबाइल पर कोई लिंक भेजा जाता है, जैसा तुमने अभी कहा, अनजान लिंक, और कहा जाता है इसे अभी खोलिए, या पुरस्कार लेने के लिए जरूरी है, या आपका खाता चालू करने के लिए, या कई बार उत्सुकतावश भी हम कई सारे लिंक जो है आते हैं तो उसे क्लिक कर देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन सखियों, ऐसे लिंक पर क्लिक करने से पहले हमें रुक कर सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल राखी, और डिजिटल दुनिया में एक छोटी सी सावधानी बहुत बड़े नुकसान से हमें बचा सकती है। इसलिए सखियों, हमें ये याद रखना चाहिए कि जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि हमें पहले जांच करनी है, उसके बाद कार्रवाई करनी है।
1: सखियों, आजकल ऑनलाइन खरीदारी तो सभी करते हैं, लेकिन हमें इससे भी सावधानी रखने की जरूरत है। हमें विश्वसनीय वेबसाइट या ऐप से ही खरीदारी करनी है। बहुत कम कीमत का लालच देने वाली अनजान वेबसाइटों से सावधान रहना है।
0: और सखियों, सोशल मीडिया पर हमें अपनी निजी जानकारी जरूरत से ज्यादा भी साझा नहीं करनी चाहिए, जैसे कि घर का पता हो, फोन नंबर हो, बैंक से जुड़ी जानकारी हो, पासवर्ड हो, जैसे संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक करना बहुत खतरनाक हो सकता है राखी। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हम अपने घूमने फिरने की भी जानकारी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए।
1: हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने घूमने की फोटो डाली और पल पल का अपडेट डाल रहे हैं कहीं सोशल मीडिया पर, और चोरों को पता चल गया कि घर हमारा खाली है, और जब लौट कर आए तो हमारा घर
0: सचमुच खाली हो जाता है।
1: हाँ। तो सावधानी बरतिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड मजबूत रखिए, साथ ही अपना पासवर्ड ऐसा बनाइए कि वो कभी किसी तक पहुंच ना पाए, और उसे कहीं भी लिखकर ऐसे सार्वजनिक जगह पे ना छोड़िए। साथ में हमें ये भी कोशिश करना चाहिए कि अलग अलग खातों के लिए अलग अलग पासवर्ड हो।
0: और सखियो, ये याद रखिए कि डर और लालच दोनों ही साइबर ठगी के बड़े हथियार हो सकते हैं, और अगर गलती से हम साइबर ठगी के शिकार हो जाए या हमारे साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हो भी जाए तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। जितने जल्दी हो सके हमें अपने बैंक या वित्तीय संस्था को सूचित करना चाहिए। और भारत में साइबर अपराध की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 में तथा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर किया जा सकता है इसकी शिकायत।
1: बिल्कुल, शिकायत करने में देर नहीं करनी चाहिए। समय पर सूचना देने से नुकसान को रोकने या आगे की कार्यवाही में मदद मिल सकती है बहनों। साथ ही धोखाधड़ी से संबंधित संदेश, फोन नंबर, स्क्रीनशॉट, लेन देन की जानकारी और अन्य उपलब्ध प्रमाण को सुरक्षित रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, और कई बार लोग शर्म या डर के कारण भी परिवार वालों को ये नहीं बताते हैं कि हमारे साथ साइबर ठगी हो चुकी है। इसलिए यदि किसी के साथ साइबर अपराध हो जाए तो हमें भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें उसका साथ देना चाहिए, है ना?
1: क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। साथ ही बच्चों को और बुजुर्गों को खास तौर पर डिजिटल सुरक्षा के बारे में बताना चाहिए। उन्हें भी ये बताना है कि किसी अनजान लिंक में आपको क्लिक नहीं करना है, और कैसे सावधानी बरतनी है, कैसे किसी को ओटीपी नहीं बताना है।
0: बिल्कुल, और किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर ऑनलाइन भुगतान भी नहीं करना है, क्योंकि डिजिटल सुरक्षा केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है।
1: क्योंकि तकनीक ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, इसलिए हमें तकनीक से डरना तो नहीं है बल्कि उसका इस्तेमाल समझदारी और सावधानी के साथ करना है।
0: बिल्कुल, और तकनीक हमारे जिंदगी में चोरी चोरी घुस चुकी है राखी। तो अब बातें तो बहुत सारी हो गई, तो क्यों ना आप अपनी सखियों को एक प्यारा सा गीत सुनाया जाए।
1: हाँ।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सखियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सखियों, आज है शुक्रवार, यानी गृह लक्ष्मी में अपराजिता की बारी है, जिसमें हम आपको एक महिला की सफलता की कहानी सुनाने वाले हैं, जिन्होंने काफी संघर्ष के बाद इस सफलता को हासिल की है।
4: सखियों, ईश्वर ने हर स्त्री को अपराजिता बनाया है। जरूरत है तो बस अपनी उस क्षमता को पहचानने की, ये ठान लेने की कि राहें चाहे कितने भी कठिन हो, घुटने नहीं टेकने, गिरकर उठना और उठकर संभलना है। जीवन की राह हमेशा फूलों से सजी नहीं होती, कभी कभी कांटों की चुभन तो कभी गहरा अंधकार, जहां आगे भी कुछ ना दिखाई दे। परिस्थितियां आकस्मिक होती हैं तो इंसान को तोड़ देने की कोशिश हर वक्त करती हैं। कुछ लोग झुककर हार मान लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों से अपना घर बना लेते हैं। हाँ, यानी चुनौतियों में भी अक्सर अवसर तलाश लेते हैं।
3: बिल्कुल सखियों, अपराजिता वह नहीं है जिसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आए, अपराजिता वह है जो गिर गिर कर संभल जाए और स्वयं को खड़ा कर ले।
4: हाँ,
3: ये कहानी है डॉक्टर सुजाता की। सुजाता रूप गुण से संपन्न एक मेधावी लड़की, जिसे जीवन में कुछ कर दिखाने की जिद थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते करते कई रिश्ते आने लगे। जब राजीव का रिश्ता आया तो पापा नहीं रुके, क्योंकि राजीव सुदर्शन युवक थे, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी करते थे और उनका व्यवहार भी काफी अच्छा था। सुजाता ने शादी के लिए पिता से मना कर दिया, क्योंकि वो भी नौकरी करना चाहती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वो घर बसाना नहीं चाहती थी।
4: लेकिन राजीव से मिलने के बाद उसे अच्छा लगा। उन्होंने कहा था, आप मेरी तरफ से आश्वस्त हो जाइए, आपका हर सपना अब मेरा सपना होगा, आप जो चाहें करें। लेकिन कभी कभी जीवन का एक हादसा पूरी दुनिया बदल देता है बहनों। पति को लीवर कैंसर है, ये एक साल बाद ही डॉक्टर ने बता दिया था। सारी जमा पूंजी इलाज में खर्च हो गई, नौकरी प्राइवेट थी सो चली गई। बहुत सेवा की सुजाता ने, जी जान लगा दिया पति को बचाने के लिए, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसी का वश नहीं चलता। सारे सपने अधूरे छोड़कर एक दिन राजीव चले गए। उनका कातर स्वर आज भी सुजाता के कानों में गूंजता है, सुजाता मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, प्लीज मुझे माफ करना, किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना और जिस दिन तुम प्रोफेसर बन जाओगी मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी।
3: राजीव चले गए, जिंदगी का ये सफर तन्हा ही काटना पड़ा था उसे। हर पल पहाड़ सा लगता था सुजाता को। कुछ दिनों तक परिवार का साथ मिला, पर धीरे धीरे सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। सुजाता के लिए खुद को समेटना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की और धीरे धीरे अपने आप को समेटना शुरू किया। धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ने लगा और वो पढ़ाई की भी तैयारी करने लगी। और हाँ, राजीव का वो सपना जो अधूरा रह गया था, सुजाता को पूरा करना था।
4: उस दिन सुजाता ने अपने गहने नहीं बेचे थे, बल्कि अपनी कोमल भावनाएं भी बेच दी थी। कुछ यादें थी जो उसने बेच डाली थी, लेकिन एक सकारात्मक उद्देश्य था उसके पीछे। अपना भविष्य संवारने के लिए उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। और कहते हैं ना, शिद्दत से कुछ चाहो तो पूरी कायनात आपके सपने को पूरा करने में आपका साथ देती है। और
3: बिल्कुल ऐसे ही जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। एक दिन अचानक उसे अपने पुराने शिक्षक मिल गए। सुजाता की पूरी आप बीती सुनने के बाद उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा था, बेटा अब तुम अपने संघर्ष में अकेली नहीं हो, तुम्हारा ये गुरु तुम्हारा अभिभावक बनकर तुम्हारे साथ है। फिर तो सुजाता की राहें आसान हो गई, मेधावी तो वो थी ही, आगे बढ़ने के लिए यथोचित मार्गदर्शन करने वाला भी शिक्षक मिल गया। गणित विषय के साथ साथ स्नातोत्तर करने के बाद उसने कड़ी मेहनत करके यूजीसी नेट की परीक्षा भी पास कर ली।
4: हाँ, और फिर पीएचडी भी कर ली। कई साल बीत गए हैं, अब विश्वविद्यालय में नौकरी करते हुए सुजाता को राजीव की तस्वीर आज भी मानो उससे कहती है, मेरी सुजाता अपराजिता है, उसे कोई भी कठिनाई भला कैसे रोक सकती है, और वो हर कांटे से अपना आंचल खींचकर आगे बढ़ गई।

0: हाँ तो सखियों, कल के अंधेरों से निकलकर अब आंखें मलकर हमने उजालों को देखना शुरू कर दिया है और अब ये समझ लिए हैं हम कि प्राचीन काल की जो रूढ़ियां थीं उससे निकलकर हमें आत्मनिर्भर बनना है और हम नारियां बन भी चुकी हैं और समानता की एक मिसाल अब समाज को दिखाई दे रही है। अगर पहले की बात करें तो प्राचीन समय में समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान और पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे।
1: बिल्कुल, वहीं मध्यकाल के दौरान सामाजिक कुरीतियों और बाहरी शासन के कारण नारी का जीवन है ना, वो अपने घरों तक सीमित हो गया था और उनकी स्वतंत्रता थोड़ी सी प्रभावित हो गई थी। लेकिन आधुनिक युग में शिक्षा के प्रसार के कारण और कानूनी सुधार के बाद आज की नारी घर की सीमाओं को लांघकर देश और समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है।
0: और आज की महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं। विज्ञान हो या राजनीति, व्यापार हो या प्रशासन, या फिर कला का क्षेत्र, लेखन का क्षेत्र, या यहाँ तक कि सेना या पुलिस के क्षेत्र में भी अपनी सशक्त उपस्थिति महिलाएं आज की जो हैं वो दर्ज करवा रही हैं।
1: बिल्कुल, और इसमें महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं जिससे उनमें आर्थिक स्वतंत्रता आ रही है। यानी आधुनिक नारी केवल परिवार को संभालने तक सीमित नहीं है बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर भी परिवार और समाज का आर्थिक संबल मजबूत कर रही है। और साथ ही साथ इससे जहां नारियां आत्मनिर्भर बन रही हैं उससे उनमें निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित हो रही है। वे परिवार और समाज के स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही हैं जिससे काफी हद तक लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल रहा है, है ना।
0: और प्रगति के बावजूद थोड़ी चुनौतियां भी हैं। कई हिस्सों में महिलाओं के साथ भेदभाव भी करने पड़ते हैं, हो रहे हैं समाज में, और अपराध और हिंसा जैसी चुनौतियां तो हम देख ही रहे हैं कि बढ़ रही हैं, पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। और जिनके विरुद्ध कड़े सामाजिक नियम हैं, कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं क्योंकि कड़ा कानून भी है, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं को खुद आगे आना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा।
1: बिल्कुल, समाज में अपनी पहचान बनाने है तो महिलाओं को खुद के लिए लड़ना होगा और आत्मनिर्भर भी बनना होगा।
0: और आज की महिलाएं कम नहीं है बहनों, अगर हम अपनी बेटियों को पंख दें तो अपने सपनों की उड़ान भर सकती हैं। और आज बेटा बेटी में हम कोई फर्क नहीं करते हैं, हमारे बेटे अगर खानदान के चिराग हैं तो हमारी बेटियां भी कुछ कम नहीं है।
1: बिल्कुल, वो भी घर की लक्ष्मी है। और हम ये नहीं जानते हैं कि महिलाएं कब अपनी सफलता का परचम लहराए, है ना, कोई नहीं जानता है। तो महिलाओं को पंख दीजिए और उन्हें आजादी से उड़ने की स्वतंत्रता दीजिए, है ना।

0: तो बहनों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। और चलते चलते बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, और इसी के साथ अपनी सखी राखी,
1: और खुशबू को दे इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे पीरियोडिक एफएम अपडेट्स बेस्ड ऑन 28 एडिशन ऑन एशियन गेम्स 2026 टू बी हेल्ड इन जापान।
3: और मेरे साथ है साक्षी मांडवाल। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां मानुष शाह ने टेबल टेनिस में शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान के बेंजामिन फराजी को सीधे चार गेमों में 4-0 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली है। मानुष ने मुकाबले की शुरुआत दमदार अंदाज में की और पहला गेम 11-9 से अपने नाम कर लिया। उसके बाद लय बरकरार रखते हुए दूसरे गेम में 11-6, तीसरे गेम में 11-6 और चौथे गेम में 11-5 से जीत दर्ज की। लगातार चार गेम जीतकर मानुष शाह ने मुकाबले पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा और अगले दौर में जगह बना ली है।
1: जी, थैंक यू सो मच शाहिद। और अगला अपडेट हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कबड्डी की दुनिया से, जहां वुमेन एंड मेन बोथ ऑफ देम हैव गिवन रीजन फॉर द इंडियंस टू नाउ स्टैंड प्राउड, बिकॉज महिला के कबड्डी मुकाबले में हमने देखा भारत ने नेपाल को सेमीफाइनल मुकाबले में बड़ी आसानी और कन्विंसिंग तरीके से 48-24 से हरा कर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। वहीं पर अगर मेंस सेमीफाइनल की बात करें तो भारतीय मेंस कबड्डी टीम ने भी अपना मुकाबला आसानी से जीत लिया थाईलैंड से विद स्कोर लाइन दैट रेड 66-28। फर्स्ट हाफ में भारत ने 37-18 से लीड बनाई और दूसरे हाफ में उन्होंने 29-10 से लीड बनाई, एंड एज अ रिजल्ट द टोटल स्टूड टू 66-28 इन द मेन सेमीफाइनल, एंड देयर बाय बोथ द इंडियन टीम्स हैव नाउ पुट देयर प्लेस इन द फाइनल्स ऑफ द ऑन गोइंग कबड्डी इन द एशियन गेम्स 2026।
3: साक्षी, फेंसिंग की बात कर लेते हैं। भारतीय महिला ईपी टीम को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा है। उज्बेकिस्तान ने कड़े मुकाबले में भारत को शिकस्त देकर अगले दौर में जगह बना ली है। वहीं सर्फिंग की एक खबर दे देता हूं। सर्फिंग में महिला शॉर्टबोर्ड राउंड एक में भारत की सुगर शांति गोयन ने कमाली प्रकाश अपने अपने हीट में सबसे निचले स्थान पर है। यानी यह दो खबरें हैं, लेकिन दोनों में कुछ खास भारत के लिए नहीं है।
1: वेल, कुछ ऐसा ही समा फिलहाल मैं भी आगे लेके जाने वाली हूँ, बिकॉज ई स्पोर्ट्स और इक्वेस्ट्रियन की दुनिया से भी मेरे पास कुछ खास वेलकमिंग या फिर स्माइलिंग न्यूज नहीं आ रही है। दोस्तों, ई स्पोर्ट्स में भारत ने अपना मुकाबला साउथ कोरिया से 0-2 से वो पोकेमॉन यूनाइट में हार गए। साउथ कोरिया कंप्लीटली डोमिनेटेड एंड अबॉलिश्ड द इंडियन टीम इन स्ट्रेट सेट्स, विनिंग द फर्स्ट वन 1-0 एंड द सेकेंड वन ऑल्सो 1-0 again to make it a straight win of 2-0. Equestrian ke andar India, who had won gold in team dressage last edition, mein aapko yaad dila de, is baar Bharat ne chauthe sthan par samapt kiya hai behind China, Japan aur Korea. Bharat ke kul milakar jo ank bane the wo the 201.971 points, jisme Shruti ne 68.059, Hriday ne 67.353 aur Jay ne 66.559 ke scores ke saath contribution diya. Ye tino Bharat ke liye top 3 scorers बने। गौरव जिन्होंने 65.794 का कंट्रीब्यूशन दिया था, वो क्योंकि चौथे स्थान पर थे इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन इस टोटल के अंदर काउंट नहीं किया गया।
3: फेंसिंग की बात कर लेते हैं साक्षी। फेंसिंग में पुरुषों की टीम फाइनल स्पर्धा में राउंड ऑफ 16 में भारत को हांगकांग के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही जो फाइनल जो स्पर्धा है उसमें भारत की चुनौती समाप्त हो गई है।
1: राइट, एंड अ क्विक अपडेट नाउ कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्क्वॉश, वेयर वी कैन गिव यू सम गुड न्यूज, बिकॉज सबसे पहले आपको बताते हैं कि जोशना चिनप्पा हैज अनदर एशियन गेम्स मेडल 16 इयर्स आफ्टर विनिंग हर फर्स्ट, बिकॉज शी विल नाउ बी कमिंग अप विद द 40-year-old पार्टनरिंग बी सेंथिल कुमार, स्टॉर्मिंग इनटू द मिक्स्ड डबल स्क्वॉश सेमीफाइनल्स विद अ स्ट्रेट गेम विन ओवर द फिलिपिनो ओपोनेंट्स 11-3, 11-5. दिस विक्ट्री अशोर्स इंडिया ऑफ एटलीस्ट अ ब्रॉन्ज मेडल इन द इवेंट। जोशना

0: And V. Senthil Kumar will now face Hong Kong's Lee Kai Yee and Tang Ming Hong in the semi-finals tomorrow. तो यहाँ से भारत को एक पदक तो अब जरूर मिलेगा. वहीं अभय सिंह made quick work of Japan's Runsuke Sukhoi, beating him 3-0 in just 30 minutes to reach the men's singles semi-finals. और आपको बता दे कि पहले ये बात हो रही थी कि अभय सिंह का शायद आमना सामना सेमीफाइनल में भारतीय अपोनेंट के साथ ही हो सकता है, लेकिन ऐसा प्लान नहीं था क्योंकि वीर चतरानी अपना मुकाबला मैन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स में मोहम्मद इरफान, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनसे हार गए 1-3. और इसीलिए अब अभय का आमना सामना सेमीफाइनल्स में होगा पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान के साथ. और अनाहत सिंह, उनके बारे में भी आपके लिए कुछ खबर लेके आ रहे हैं स्क्वाश की दुनिया से, जहां अनाहत सिंह मेड शॉर्ट वर्क ऑफ कंपैट्रियट तन्वी खन्ना, डिफीटिंग अ 3-0 विद द स्कोर लाइन दैट रेड 11-2, 11-5, 11-3 इन जस्ट 15 मिनट्स टू रीच द वुमेन्स सिंगल सेमीफाइनल. द 18-year-old ऑल्सो डॉमिनेटेड द कॉन्टेस्ट फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश. शी विल नाउ बी फेसिंग जापान सतोमी वतानबे इन द सेमीफाइनल.
1: चलते चलते साक्षी हॉकी की खबर बता दे, जहां भारत ने जापान को 3-1 से हराकर एशियाई खेलों में अपनी जीत का जो सिलसिला था जारी रखा है. महिलाओं की बात हो रही महिला हॉकी की, जहां लाल रिम श्यामी ने पहला गोल किया, जिसके बाद इश्का ने भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया. वहीं नवनीत कौर ने तीसरा गोल दागा. कोई बाकावा शिको ने अंतिम क्वार्टर में जापान के लिए एक गोल जरूर दागा, लेकिन ये गोल कोई खास उनके लिए काम नहीं आया. भारत की जो बढ़त थी वो बनी नहीं और भारत ने आसानी से शिकस्त देते हुए यहां पर जीत दर्ज कर ली है.
0: राइट, एंड ऑन दैट नोट दोस्तों, अभी के लिए हमारा सफर यहीं पर आकर समाप्त होता है इस अपडेट के अंदर. लेकिन आपके साथ एक बार फिर से दोपहर के 1:30 बजे जुड़ेंगे सारे लाइव अपडेट्स लेकर फ्रॉम दी ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. अभी के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत. दोपहर 1:30 बजे एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे. गुड बाय.
2: अभी आप सुन रहे थे FM अपडेट्स, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है. प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम. शुरुआत करते हैं फिल्म लिबास के इस गीत से. लता मंगेशकर की आवाज है, राहुल देव बर्मन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया.

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: फिल्म संगीत में अगला गाना सुनते हैं फिल्म बंदनी से, लता मंगेशकर की आवाज है, धुन बनाई है एस टी परमन ने।

आइए सुनते हैं फिल्म गोलमाल से ये गाना, संगीतकार क्या राहुल देव बर्मन ने, आवाज लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम का अगला नगमा सुनते हैं फिल्म अभिमान से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है एसडी परमन ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म चुपके चुपके से। लता मंगेशकर की आवाज है, गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है एसडी बर्मन ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है, गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4th संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस समय गृह मंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: शामिल हो रहा ये 4th संस्करण आते आते पहले संस्करण में यूपी में जो परिवर्तन हुआ है उसका दुनिया ने परिचय किया, दूसरे में यूपी में आना है ऐसा इरादा जताया, तीसरे में यूपी में आए और 4th में यूपी के विकास में सहयोगी बनकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत के विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि मेक इन इंडिया का अगला लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाना है, जिससे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मिक्स 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय एथलीट मनु टीएस पुवम्मा, एमआर विशाल टीके और मिथ्या रामराज को बधाई दी है। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम में

0: में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारत का सामना ईरान और चीनी ताइपे के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम से होगा। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ियों ने 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिक्स्ड युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan.
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: मिस्टर मोदी हाईलाइटेड दैट वडनगर गेव हिम द वैल्यूज दैट शेप्ड हिज लाइफ व्हाइल काशी एडेड काउंटलेस कलर्स ऑफ सर्विस टू दोज वैल्यूज। ही नोटेड दैट ओवर द पास्ट 12 इयर्स द गैप बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस इन इंडिया हैज नैरोड सिग्निफिकेंटली। The Prime Minister said the infrastructure in villages has improved considerably, while self-reliance among the women of the country has also increased. Vice President C.P. Radhakrishnan has said, in an increasingly interconnected world, emerging challenges cannot be effectively addressed by nations working in isolation. Interacting with participants of the 4th edition of the International Strategic Engagement Programme, or INSTEP, at the Uparashtrapati Bhavan today, Mr. Radhakrishnan said the Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family and one future, reflects collective well-being of people around the globe. INSTEP is an initiative aimed at promoting regional security and closer cooperation among like-minded nations. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post today, Mr. Modi said the initiative has led to more being made in India, more investment in India, and more exports from India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, South African Foreign Minister Ronald Lamola, and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira have strongly condemned the Pahalgam terror attack and reaffirmed their commitment to zero tolerance for terrorism. The three ministers met under the IPSA Dialogue Forum in New York on the sidelines of the United Nations General Assembly yesterday and stressed their commitment to the UN Charter, international law, and a stronger multilateral system. In a joint statement, the ministers called for a comprehensive reform of the UN Security Council. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav launched the workshop on capacity enhancement for effective forest management project in New Delhi today. On the occasion, the minister said the project holds significant potential for enhancing technical and field level capabilities in forest fire management, biodiversity conservation and climate action. The project has an outlay of over 537 crore rupees, including a contribution of over 440 crore rupees by Japan International Cooperation Agency. The project is being implemented over 7 years and involves all states in India. The government has said 70,000 rural youth across states and union territories will be provided skill training from next month under the Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0. It is a centrally sponsored scheme providing placement-linked skill training to poor rural youth. The Rural Development Ministry said all the 31 participating states and UTs have been allocated more than 9 lakh targets under the scheme for a period of 2 years. The Intermeteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Vidarbh today. According to the Weather Agency, heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, Kerala, Mahe and Telangana during the day. Indian men's and women's kabaddi teams have entered the finals at the Asian Games after registering comprehensive victories in their respective semi-final matches. The women defeated Nepal 48-24, while the men outplayed Thailand 66-28, keeping their unbeaten run intact. And with that, we end this news bulletin.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट जेरो में आउटसोर्सिंग से बहाली पर सख्त, दैनिक और संविदा कर्मियों को 8 हफ्ते में नियमित करने का आदेश। रांची के रिन पास में शुरू होगी 20 बेड के विशेष बाल एवं किशोर मानसिक चिकित्सा इकाई। स्वास्थ्य विभाग ने बुनियादी ढांचा सुधारने के दिए निर्देश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड में प्रदेश भाजपा ने अंत्योदय के संकल्प को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर नमामि भारतम अभियान, हजारीबाग, चतरा और लोहरदगा समेत राज्य भर में हजारों लोगों ने किया सामूहिक गायन। और राज्य में मूसलाधार बारिश और आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त। रांची में स्कूल बस पर गिरा पेड़, लोहरदगा में कई कच्चे मकान ध्वस्त, गिरिडीह में बिजली आपूर्ति ठप। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों में स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मियों को रखने के फैसले को रद्द कर दिया है। एमिकस क्यूरी मनोज टंडन ने बताया कि अदालत ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि जेलों में 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत दैनिक और संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने की प्रक्रिया आगामी 8 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए।
4: और पहले कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये लोग काम कर रहे थे या डेली वेजर बेसिस पे। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ऐसा निर्णय लिया कि इस सब को हम आउटसोर्सिंग पर रखेंगे। कोर्ट ने ये कहा कि सैंक्शन पोस्ट पर आउटसोर्सिंग एजेंसी से काम लेना ये बिल्कुल ही इलीगल है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ये सब जैसे काम कर रहे थे वैसे काम करेंगे। आउटसोर्सिंग एजेंसी से करने का निर्णय था उसको निरस्त कर दिया।
3: रांची के रिन पास में 20 बेड की बाल एवं किशोर चिकित्सा इकाई शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एमडी साइकियाट्री की पढ़ाई दोबारा शुरू करने और 100 बेड के रेजिडेंशियल शेल्टर होम के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर झारखंड भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अगुवाई में रांची समेत विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने अंत्योदय के संकल्प को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
5: सादगी के प्रतिमूर्ति पंडित दीनदयाल जी और जो उनका विचारधारा था कि देश में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण पहुंचे और इसी मूल मंत्र के साथ राष्ट्रभक्ति के भाव से पूरे देश में सेवा करने का काम वो करते थे निरंतर। और देश के सबसे प्रधानमंत्री जी उसी मूल मंत्र के साथ इस देश के 140 करोड़ लोगों का विगत 12 वर्षों से निरंतर सेवा करते आ रहे हैं।
3: राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने और हाथियों की सुरक्षा के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित इनो बॉक्स डिवाइस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ रवि रंजन ने बताया कि इस सौर ऊर्जा संचालित मशीन का पलामू टाइगर रिजर्व में सफल ट्रायल चल रहा है।
6: अभी का जो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी सामने आया है वो है एआई बेस्ड कैमरा। ये पहचान कर लेता है कि हाथी है या चीता है और उसको ट्रेन किया जाता है कि आपको इन्हीं जानवर के आने पे अलर्ट देना है या उसका वीडियो लेकर कंट्रोल रूम में भेजना है। और कैमरा होता है वो 360 डिग्री घूमता रहता है। जब उसके रेंज में कोई हाथी आता है तो तुरंत वो लाइव फीड हमारा एक कंट्रोल रूम होता है वहां देता है, वहां से फिर हमारी टीम हाथी तक पहुंचती है।
3: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज देशव्यापी सामूहिक गायन कार्यक्रम नमामि भारतम का भव्य आयोजन किया गया। राज्य के हजारीबाग, चतरा और लोहरदगा सहित विभिन्न जगहों पर हुए आयोजनों में समाज के विभिन्न वर्गों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने सहभागिता दर्ज कराई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए यह प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। इसी कड़ी में हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, जो झारखंड के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।
7: भारत सरकार देश के अन्नदाताओं की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह गंभीर है। इसी संकल्प को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता जताई है।
2: पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं।
7: प्रधानमंत्री के इसी संकल्प का असर राज्य के गिरिडीह जिले में साफ देखा जा सकता है, जहां केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। जिले के किसान अब आधुनिक और स्मार्ट खेती की ओर बढ़ रहे हैं।
8: पहले किसानों को जो ब्याज लेना पड़ता था और उसका पैसा भरपाई नहीं कर पाते थे, उस योजना से अब किसानों को राहत मिल जाती है और बहुत सारे किसानों को जो सूद से पैसा लेना पड़ता था वो नहीं लेना पड़ता है।
7: इस योजना से मिलने वाली राशि ने किसानों को साहूकारों के कर्ज जाल से मुक्त करा दिया है। समय पर मिलने वाली इस आर्थिक मदद से किसान बेहद खुश हैं और आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हैं।
9: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें किसान गणों को 4-4 माह के अंतराल पर 2,000 रुपया करके दी जाती है। उन पैसों से किसान गण खेती के जरूरी के लिए खाद, बीज व अन्य उपकरण की खरीदारी करते हैं।
7: गिरिडीह जिले में केवल पीएम किसान ही नहीं बल्कि किसानों के समग्र विकास के लिए कई योजनाएं समानांतर रूप से चल रही हैं। जिला कृषि अधिकारी रंजीत मंडल के अनुसार अकेले गिरिडीह जिले में 1,42,000 से अधिक किसानों को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ, रांची से मैं महविश रहमान।
3: गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंदरकूपी में कल रात आपसी विवाद में ऋतिक नामक एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ऋतिक के पिता बोकारो जिले के एएसआई पद पर पदस्थापित हैं। एसडीपीओ जीत वाहन उराव ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इस सिलसिले में 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
10: मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंदरकुपी के पास में रात्रि में लगभग 11 बजे के आसपास मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। उसने कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं जो भी संदिग्ध है, और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी और कार्रवाई की जाएगी। कई चीजों पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं।
3: राज्य में बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के कारण हो रही मूसलाधार बारिश और तेज आंधी से पूरे राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज रांची, बोकारो और पलामू सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची के डोरंडा में आज सुबह एक स्कूल बस पर पेड़ गिर गया, हालांकि चालक की सूझबूझ से सभी बच्चे सुरक्षित बच गए। उधर लोहरदगा में लगातार बारिश से कच्चे मकान गिरने की खबरें हैं और व्यापार पूरी तरह ठप है। गिरिडीह जिले में तेज आंधी से पेड़ और पोल गिरने के कारण डुमरी, पीरटांड और बगोदर समेत कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 28 सितंबर से मौसम में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड हाई कोर्ट जेलों में आउटसोर्सिंग से बहाली पर सख्त। दैनिक और संविदा कर्मियों को 8 हफ्ते में नियमित करने का आदेश।

के ऋण पास में शुरू होगी 20 बेड की विशेष बाल एवं किशोर मानसिक चिकित्सा इकाई। स्वास्थ्य विभाग ने बुनियादी ढांचा सुधारने के दिए निर्देश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड में प्रदेश भाजपा ने अंत्योदय के संकल्प को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर नमामि भारतम अभियान। हजारीबाग, चतरा और लोहरदगा समेत राज्य भर में हजारों लोगों ने किया सामूहिक गायन। और राज्य में मूसलाधार बारिश और आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त। रांची में स्कूल बस पर गिरा पेड़। लोहरदगा में कई कच्चे मकान ध्वस्त। गिरिडीह में बिजली आपूर्ति ठप। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं गिरजा देवी। इनसे सुनते हैं ख्याल अबोगी में कानड़ा।

अनुरंजनी का पुनः प्रसारण हम करेंगे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से पीरियोडिक FM अपडेट्स बेस्ड ऑन

0: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और दोस्तों मेरे साथ इस समय यहाँ मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी. घड़ी में बज रहे हैं दोपहर के 1:30. हम लेकर आ गए आपके लिए द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स. जी हाँ, सबसे पहला अपडेट आपको देने वाले हैं टेबल टेनिस की दुनिया में, जहां वुमेन्स डबल्स के हमने आज मुकाबले देखे, लेकिन उसमें कुछ खास अच्छी खबरें नहीं है मेरे पास आप सबको देने के लिए, क्योंकि वुमेन्स डबल्स का जो पहला मुकाबला हुआ उसमें श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास डिड ट्राई टू पुट अप अ फाइट against Man Kauai and Wang Manu, but ultimately their opponents were just too good for them, and as a result Shreeja Akula aur unke sath sath Cinderella Das lost the game 3-0. matlab bahut hi dominating a confident jeet सामने से उनके ओपोनेंट्स ने आज श्रीजा कुला और सिंड्रेला दास के ऊपर हासिल करी. दूसरी तरफ यशस्विनी घोरपड़े एंड दिया चितले लॉस्ट 0-3 टू चाइनाज वाई चेन एंड शुहान फैन. द इंडियन पेयर वेंट डाउन 7-11, 5-11, 8-11 विद द चाइनीज डुओ टेकिंग कंट्रोल अर्ली इन द थर्ड गेम एंड ओपनिंग अप एन 8-11 लीड बिफोर इंडिया ट्राइड टू फाइट बैक, बट इट वॉज जस्ट टू लेट. और दिन की शुरुआत में हमने देखा था कि कैसे मानु शाह ऑल्सो गॉट द जॉब डन अगेंस्ट ईरान्स बेंजामिन फराजी, सीलिंग अ कन्विंसिंग 4-0 विक्ट्री. दैट वॉज अ गुड न्यूज दैट केम अराउंड इन टेबल टेनिस. और उसके साथ साथ लेकिन उसके बाद और कोई गुड न्यूज हमें मिली नहीं थी. We had the mixed doubles pair of Manav and Manush who lost to Harimoto and Shinozuka of Japan. Then Yashaswini Ghorpade defeated Hen Zaza to reach the round of 16 in Asian Games. And the other thing was that Harmeet and Yashaswini were knocked out in the mixed doubles quarterfinals. Big news that came in was that Jia Chitale and Manush Shah who have stormed into the mixed doubles semi-finals, jiska mukabla ab kal hoga hopefully. And yaha par umeed kar sakte hain ki Bharat ko shayad एक पदक अपने नाम मिले, लेकिन इट्स गोइंग टू बी स्टिल टू अर्ली शायद टू इवन से दैट.
1: इधर बैडमिंटन की बात कर लेते हैं साक्षी. बैडमिंटन में जबरदस्त रोमांचक मुकाबला चल रहा है. भारत का जो सबसे मजबूत जोड़ी भारत की है वो उतर चुकी है. हालांकि मुकाबला अभी बराबर चल रहा है. एशियन गेम्स का जो पुरुष युगल का मुकाबला, भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना थाईलैंड के पकापोन टिरास्कुल और पिराचाई सुपकुंत के बीच हो रहा है. भारतीय जोड़ी ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और पहला गेम 21-12 से अपने नाम किया. हालांकि दूसरे गेम में थाई जोड़ी ने जोरदार वापसी की और 21-19 से गेम जीतकर मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है. अब निर्णायक तीसरा गेम जारी है जहां दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. हालांकि अभी थाईलैंड की जोड़ी ने 11-9 से बढ़त बना रखी है.
0: राइट, हॉकी की दुनिया से आपको थोड़ी खुशखबरी दे सकते हैं, बिकॉज भारतीय महिलाओं का मुकाबला हुआ जापान की महिलाओं के साथ, जहां भारत ने उनको 3-1 से, यानी जापान को 3-1 से हरा दिया इन द एशियन गेम्स. लालरिम सियामी और ओपन द स्कोरिंग बिफोर इशिका डबल्ड इंडियाज लीड विद नवनीत कौर एडिंग द थर्ड गोल. कोबाई खावा शी हू पुल्ड वन बैक फॉर जापान इन द फाइनल क्वार्टर, बट इंडिया हेल्ड ऑन कंफर्टेबली टू सील द विन. ये जरूर कह सकते हैं कि इससे पहले के मुकाबले जो हमने भारतीय महिलाओं के देखे हॉकी के अंदर, उसमें काफी ज्यादा गोल्स करके भी भारतीय महिलाएं जीती, और शायद इस मैच में आपने उसकी कमी जरूर महसूस करी हो, लेकिन जीत तो भारत के नाम ही दर्ज हो गई. और अब भारत का एक और पूल मैच है सिंगापुर के खिलाफ, और उसके बाद भारत को आप खेलते हुए देखेंगे सेमीफाइनल्स में इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स इन द विमेन्स हॉकी मैच.
1: महिलाओं की बात आपने की तो यहाँ डबल्स की, मैं मिक्स डबल्स की बात करना चाहूंगा. बैडमिंटन की खबर है. भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा करस्टो का मुकाबला मलेशिया के शेवन जेमई लाई और सून हुआट गो के बीच जारी है. भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 22-20 से जीतकर मुकाबले में बढ़त बनाई, लेकिन दूसरा गेम बेहद कड़ा चल रहा है. दोनों के बीच में जो मुकाबला है, दूसरा गेम जो है 21-21 की बराबरी पर अभी मुकाबला जारी है. यहां पर देखना होगा क्या भारतीय जोड़ी इस गेम को जीतकर मुकाबले को अपने नाम कर पाती है. आने वाला कुछ समय ही बता देगा आपको.
0: जी, और इक्वेस्ट्रियन की दुनिया से भी आपको अपडेट दे देते हैं कि जहां हमने पिछली बार देखा था कि भारत की टीम ने गोल्ड हासिल किया था टीम रिसर्च के ये लास्ट एडिशन में, वहीं अब इस बार भारत ने चौथे स्थान पर फिनिश किया है बिहाइंड चाइना जापान कोरिया. प्रीटी डिसअपॉइंटिंग न्यूज. भारत का टोटल रहा था 201.97 पॉइंट्स एंड एज अ रिजल्ट इट वॉज जस्ट नॉट इनफ फॉर द इंडियन इक्वेस्ट्रियन प्लेयर्स टू इवन स्टैंड इन कॉम्पिटिशन विद द अदर कंट्रीज. शायद
1: जिस खबर की मैं बात कर रहा था उसमें कुछ थोड़ा सा डेवलपमेंट हुई है. भारतीय जोड़ी 23-22 से यहाँ पर जो दूसरा गेम है वहाँ आगे है, लेकिन अभी भी मुकाबला जारी है. बात सर्फिंग की कर लेते हैं यहाँ से भी कुछ, हालांकि बहुत अच्छी खबर नहीं, फिर भी जो आपको अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा.

0: जो सर्फिंग से खबर है, किशोर कुमार ने हीट जीतकर दूसरे दौर में जरूर जगह बना ली है। भारत के किशोर कुमार ने 9.33 के स्कोर के साथ अपनी हीट में पहला स्थान हासिल किया और दूसरे दौर में जगह बनाई। उनका जो अगला मुकाबला कल होने वाला है, यानी कल उनकी असली परीक्षा होनी है।
1: जी, और चलने से पहले आपको एक खुशखबरी के नोट पे ही छोड़ेंगे, बिकॉज आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी खबरों के साथ हुई थी। शूटिंग की दुनिया से हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मेडल्स के बारे में पता चला, बिकॉज इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट कमलजीत एंड सुरजीत सिंह ब्रॉट अस द लॉरेल्स बाय गेटिंग इंडिया द कवेटेड गोल्ड। और इंडियन मेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन में हमारे भारतीय शूटर्स ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया था। वहीं अगर हम बात करते हैं स्क्वॉश में भी, तो स्क्वॉश में मिक्स डबल्स के इवेंट के जो सेमीफाइनल्स कल घटित होने वाले हैं, उसमें हम ये उम्मीदें रख सकते हैं कि हमें एक मेडल तो डेफिनेटली, अब यानी भारत को मेडल डेफिनेटली अश्योर हो चुका है। इसके साथ ही मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को अभी के लिए दीजिए इजाजत। हम आपसे एक बार दोपहर 3:30 बजे दोबारा जोड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। फॉर नाउ इट्स गुड बाय एंड टेक केयर।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: अभी आप एफएम अपडेट्स सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अनरंजनी कार्यक्रम का शेष भाग सुनते हैं। कलाकार थी गिरजा देवी, इनसे सुन रहे थे ख्याल अबोगे कांडड़ा।

डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने। संगत कलाकार है मुकुल राय, सतीश मिश्रा, कृष्ण कुमार गुप्ता और कामाख्या लाल डे।

अब आइए सुनते हैं रमानाथ अवस्थी का लिखा हुआ ये गीत डॉक्टर कुमार आनंद की आवाज में।

अभी आप सुगम संगीत में सुन रहे थे कुमार आनंद को। संगत कर रहे थे मुकुल राय, सतीश मिश्रा, कृष्ण कुमार गुप्ता और कामाख्या लालडे। इसी के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुनेंगे।

0: से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियाँ आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और RSS के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के 4th संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
1: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
4: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
5: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
6: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
1: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में भी आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
6: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
7: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
6: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर आईबीएसए संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्ते।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
0: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
0: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: आपने आगे लिखा है हमें उमंग कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 पर प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। फौजी भाइयों नमस्कार। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: लग पड़े भारतीय सेना।
1: फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं फिल्म सुलहवां साल से ये गाना। हेमंत कुमार की आवाज है। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है HT परमन ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म बॉम्बे का बाबू से। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज है। गीत को लिखा मजरूर सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया एसटी परमन ने।

इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के भीतर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि अब तक आयुष्मान भारत के अंतर्गत करीब 13 करोड़ मरीजों का इलाज किया जा चुका है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिससे बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत पाकुड़ में भाजपा

0: महिला मोर्चा ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगन का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। आज से 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बच्चों और उनकी माताओं को आमंत्रित कर पोषण, स्वास्थ्य और महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सम्मानित किया गया और बच्चों के बीच फल और मिठाई वितरित की गई। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि दूसरे राज्यों से जारी दस्तावेजों के सत्यापन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
1: कितना भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है उसमें झारखंड स्टेट का बाहर है वो सीईओ ऑफिसर द्वारा उसके वेरिफिकेशन के लिए। अभी तक केवल एक ही संस्था है प्रयाग महिला विद्यापीठ करके अलाहाबाद का है, उसी का डॉक्यूमेंट का मान्य नहीं करके घोषित की गई ताकि वो इंस्टीट्यूशन रेगनाइज नहीं है, इसलिए वो रेगनाइज नहीं तो सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर सकते। केवल एक ही इंस्टीट्यूशन का उसका है, बाकी कितना भी वेरिफिकेशन है अपना वेरिफिकेशन करके आ रही है।
0: साहिबगंज जिले के सदर अस्पताल परिसर स्थित रक्त अधिकोष में रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में पुलिसकर्मियों, सरकारी कर्मचारियों और रेड क्रॉस के सदस्यों ने रक्तदान किया। रेड क्रॉस के संयुक्त सचिव चंद्रेश्वर प्रसाद सिन्हा ने बताया कि थैलेसीमिया मरीजों, किडनी रोगियों, गर्भवती महिलाओं और दुर्घटना में घायलों के लिए रक्त की नियमित जरूरत होती है। समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह पुलिस ने आपके मोबाइल आपके पास कार्यक्रम के तहत 105 लोगों को उनके बरामद मोबाइल फोन सौंपे। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि अब तक 1000 से अधिक लोगों को उनके खोए मोबाइल लौटाए जा चुके हैं।
2: आज हम लोग बोले 105 लोगों तक उनका मोबाइल उनके पास तक पहुंचाया है, जिसमें कई सारे ऐसे मोबाइल है जिनका की 2024 का है, 2025 का है। तो इसके अंदर हम टेक्निकल सेल और संबंधित टीम इससे काम करती है, वो हमने का ये प्रयास रहता है। वैसे किसी भी तरह का मोबाइल जिनका गुम हो जाता है थाने जरूर सूचना ने।
0: इधर रामगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन भरोसा के तहत विभिन्न क्षेत्रों से गुम हुए 61 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपे हैं। एसपी मुकेश लोनायत ने बताया कि इस अभियान के 3 चरणों में अब तक कुल 245 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंदरकूपी में कल देर रात अपराधियों ने 24 वर्षीय युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान राजेंद्र नगर निवासी ऋतिक यादव उर्फ बंटी यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मृतक के पिता झारखंड पुलिस में अवर निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। और झारखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। रांची में आज सुबह डोरंडा के एजी कॉलोनी के पास बच्चों को लेकर जा रही स्कूल बस पर पेड़ गिर गया। चालक की सूझबूझ से बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित बच निकले। वहीं सरायकेला खरसावां में खरकाई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 86 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है, जिससे आदित्यपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 सितंबर को मौसम में धीरे धीरे स्थिरता आने की उम्मीद है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
3: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
3: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
3: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं। वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
2: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
3: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में
2: जी।
3: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
2: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
3: श्रोताओं, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया
2: जी।
3: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
2: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
3: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
2: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया। उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
3: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था
2: जी।
3: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
2: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
3: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया
2: जी।
3: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
2: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियाँ, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओ, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे, तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
2: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
3: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा

0: प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया, वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काय काय करने लगा।

चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: और आइए अब सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम। शीर्षक है द रेस।
1: इस कार्यक्रम में जंगल के सारे पशुओं की एक मजेदार दौड़ के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें प्रतियोगिता को खेल भाव से स्वीकार करना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
2: You must have heard of the race between the rabbit and the tortoise. Have you heard of the race between a rat and a rabbit? Let me tell the story of the race. Every evening, the animals of Machlipatti used to sit under the banyan tree. One day, Coco, the rabbit, was feeling bored. He said, "Let's run a

0: एक संत नदी में नहा रहे थे। उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
1: अरे अरे बिच्छू, अरे।
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
1: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
1: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।
1: उफ, उफ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था, आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच बच बच बच, एक प्राणी की जान बच बच बच। बिच्छू का सुबह

स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का भलाई। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता।

0: बालक सोचने लगा,
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई।

भले लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। ये आकाशवाणी है विशेष
1: 2026 की अपडेट जानने का।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ दोस्तों इस वक्त मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं दोपहर 3:30 बजे के लाइव अपडेट्स ऑन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। सबसे बड़ा अपडेट
4: पिछला 12 साल देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काफी अनुभव भरा रहा है। इस दौरान गवर्नेंस में काफी परिवर्तन हुए, आम जनता तक काफी लाभ की योजनाएं लाई गई हैं। इसी के तहत जन सेवा से देश सेवा सीरीज के तहत आज हम आपके सामने उपस्थित हैं और हम बात करेंगे कि पिछले लगभग 12 वर्षों में देश के गांवों में क्या कुछ बदलाव आया है और वो बदलाव से जो ग्रामीण है

0: रहे हैं वो कितने लाभान्वित हुए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डीएस मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत मिश्रा साहब आपका।
1: धन्यवाद।
0: और साथ में हमारे साथ एसपी सिंह भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा साहब आपके पास ही आता हूँ, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है सेक्रेटरी के तौर पर, केंद्र में काम करते हुए, राज्य में काम करते हुए, आप बारीकी से समाज के अंतिम वर्ग के लोगों के साथ न जुड़े रहे बल्कि आपने काम किया। पिछले 12 वर्षों में अगर हम गांव की बात करें, क्योंकि गांव जो है भारत की विकास यात्रा में हमेशा से केंद्र में रहे हैं, तो पिछले 10-12 वर्षों में क्या कुछ गांव में आपको परिवर्तन देखने को मिला है?
1: देखिए, पूरा का पूरा राजन साहब, गांव के विकास के बारे में सोच में तब्दील हो गई है। पहले जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, पहले जैसे गांव को हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते थे तो गांव में एक खंभा लग गया, सरहद में एक खंभा लग गया तो मान लेते थे कि गांव इलेक्ट्रिफाई हो गया। सड़क गांव में कहीं एक जगह पहुंच गई तो गांव आपकी सड़क से जुड़ गई। कुछ लोगों को आपने मकान दे दिया इंदिरा आवास योजना में तो आप मान लिया कि उनको गांव में लोगों को मकान मिल गया। पानी के लिए हैंडपंप लगा दिया आपने तो हैंडपंप लगाने के बाद आपने मान लिया कि वहां पे हैंडपंप से सब आसपास के लोगों को पानी मिल जाएगा। अब उस सोच में बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। अब क्या है कि अब सैचुरेशन के तरफ, जैसे गांव में अगर सड़क जानी है तो गांव की जो भी वहां पे आवश्यक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, न केवल हर टोले को सड़क जोड़े बल्कि वहां पे जो बाजार है, वहां का जो स्कूल है, वहां का जो मंडी है, हर एक को गांव की सड़क ले जाकर के जोड़ दे। हर व्यक्ति को जो कि एक गरीब आदमी है उसके पास मकान नहीं है, हर एक के लिए आवास हो। जो जल है वो जल हैंडपंप से नहीं बल्कि हर घर में जल पहुंचे, यानी हर घर में नल हो और हर नल में जल हो। गांव में एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को होती थी कि अब उनकी जो खेत बाड़ी है तो वो तो खसरा खतौनी था उनके पास
0: जी,
1: लेकिन जहां वो रहते थे उसका उनकी आबादी के इलाके का कोई भी स्वामित्व नहीं था। अब घरौनी जो स्वामित्व योजना है उसके तहत उनके घर का भी एक रिकॉर्ड हो और उसके माध्यम से अगर वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उनको लोन भी मिल सकता हो। तो एक पूरी पूरी सोच में परिवर्तन आ गया। मैं कहूंगा आप स्वच्छ भारत मिशन में जैसे पहले
0: जी,
1: अब मैं तो बहुत नीचे लेवल से एसडीएम से लेकर के मैं उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी तक रहा, पहले हम थोड़े से शौचालय बना देते थे, ये कहते थे गरीबों को शौचालय मिल जाएगा, और शौचालय जहां बनता था वहां कोई भूसा रख रहा है, कहीं कोई बकरी बांध रहा है, कुछ और काम कर रहा है। अब लोगों के सोच में सुधार हो गया, मैंने एक प्रकार से जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो कार्यक्रम चला
0: जी,
1: उसमें 100% शत प्रतिशत सारे के सारे गांव हमारे ODF ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। उसके बाद ODF प्लस हो गए। अब वहां पे वेस्ट के मैनेजमेंट की भी बात हो गई, वो भी काफी काम हो गया। अब वहां पे जो ग्रे वाटर होता है, जो उपयुक्त पानी होता है, उस पानी को भी उपयोग करके उसका लाभ लेने के लिए इसके बारे में, तो ये मुझे लगता है कि एक आमूल चूल परिवर्तन
0: जी।
1: और अभी मुझे लगता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पिछला 10-12 साल का जो ये परिवर्तन आया है, अब आने वाले समय में इसको लेकर के, जैसे अब डिजिटल व्यवस्था भी गांव में हो गई है, अब इसको लेकर के पूरी आर्थिक व्यवस्था जो गांव की, हमारे एक आदर्श गांव बन सके, उसके बारे में बड़ा काम होने वाला है।
0: मिश्रा साहब आपने बड़े अच्छे तरीके से क्या परिदृश्य में बदलाव आया है उसको चित्रित किया है। सिंह साहब आपके पास आते हैं, सोच में बदलाव आया है, और जब सोच बदलती है तो समाज बदलता है, और हम जानते हैं कि जब समाज बदलता है तो पूरा का पूरा देश बदलता है। जैसा मिश्रा साहब ने बताया कि दरअसल अब फोकस जो है केवल ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ही नहीं है कि एक दो सामान लग गया और हमने कह दिया कि जी वहां पर नल पहुंच गया या वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गई या बिजली विद्युतीकरण हो गया। दरअसल जीवन की गुणवत्ता और बेसिक सर्विसेज का सबको एक्सेस मिले, सबकी वहां तक पहुंच हो और वो उनके उपयोग में आए, यहां तक मामला पहुंचा है। आपने कई गांवों का दौरा किया है, रिपोर्टिंग के दौरान किया है और संपर्क में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो गुणवत्ता में परिवर्तन आया है गांवों में लोगों की लाइफस्टाइल में, उससे देश को आगे बढ़ने में कितनी मदद मिली है?
2: देखिए, देश में ग्रामीण विकास हर सरकार की प्राथमिकता में रहा होगा, लेकिन सोच का जैसे भी मिश्रा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो सोच में परिवर्तन आता है कि आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, सरकार कैसे पहुंचे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में गांव गरीब ही रहा है। गरीबी क्यों है और गांव की स्थिति क्या है? गांव उसे कहते थे जो कनेक्टिविटी का अभाव हो, जहां पे पक्की छत वाले किसी के पास घर न हो, मतलब बुनियादी सुविधाओं का एक तरह से अभाव होता था। उन सारे अभाव किया उस जो अंतर है उसे से कैसे पाटा जाए, ये काम बखूबी उन्होंने किया है। चाहे वो कनेक्टिविटी के अभाव में आप कह सकते हैं कि सूचना का प्रसार हुआ हो इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, सड़कों के थ्रू, ग्रामीण सड़कें, हमें लगता है कि कोई गांव अब नहीं बचा है। 2028 तक ये प्लान बना है कि हर छोटे बड़े जहां कहीं भी हो, एक तो पुरानी सड़कों का उन्नयन हुआ, नई सड़कें बनी, हर गांव और हर कस्बा और हर बस्ती को जोड़ने का काम किया। दूसरा काम कि जो बुनियादी सुविधाएं गांव को चाहिए होगी वो होती है हर सिर को पक्की छत, यानी हर एक को मकान देना, मकान किसे देना, जो मकान पक्का मकान न बना सके ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उन्हें चिन्हित करके वहां तक ये लाभ पहुंचाना। दूसरा मकान भी कैसा हो, मकान पहले भी इंदिरा आवास योजना के नाम पर मकान बना करते थे, अब मकान कैसे बनता है, मकान की वो बुनियादी सुविधाएं, उनको पानी की सुविधाएं, हैंडपंप से नहीं नल के जल, जल जीवन मिशन इसका एक सबसे नायाब उदाहरण है जो हर घर तक नल से और जिसमें शुद्ध पानी पहुंचाया जाए। तो एक तो हैंडपंप से मुक्ति मिलेगी और हर घर तक नल जाएगा, दूसरा हर घर में लट्टू जले, लट्टू का मतलब बल्ब जले यानी बिजली जाए, और हर घर तक बिजली जाएगी तो गांव में बिजली हो यानी वो पूरा गांव विद्युतीकरण हो जाएगा। इसी तरह से स्वच्छता सबसे बड़ी समस्या गांव की थी स्वास्थ्य को लेके, और स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा जो कारण था खराब होने का, बीमारी होने का, गरीब होने का, कुपोषण सबसे बड़ी वजह थी, स्वच्छता का अभाव, शौचालय का अभाव। तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक शौचालय बनाने का काम और उस शौचालय का प्रयोग करना, ये जो प्रवृत्ति में बदलाव, हमारे मिश्रा जी ने बहुत सही कहा कि प्रवृत्ति और सोच में जो बदलाव आया, हैबिट लोगों की चेंज हो गई कि नहीं हमें बाथरूम में जाना है, हम शौचालय जो हमारे लिए बनाया गया, जो हमने बनाया अपने लिए, उसका उपयोग किया जाए, लोगों को यह बताना कि इससे कितना फायदा है, इसके न होने से कितना नुकसान हो रहा था। दूसरा पानी, जल जनित बीमारियों का प्रकोप होता था, खास तौर से इस मौसम में देखिए तो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार का एक जो टाइफाइड, मतलब जल जनित बीमारियों का एक तरह से प्रकोप होता था, अब उसमें कमी आई है। इवन देन कि लोगों के रोग नहीं होगा, कुपोषण नहीं होगा तो गरीबी नहीं आएगी, गरीबी की बड़ी वजह यही सब थी। तो गरीबी को कम कैसे किया जाए और गांव को कैसे उन्नत बनाया जाए, और हर घर में जो माँ बहनें खाना बनाया करती थी वो उपले से, लकड़ी से, यानी धुआं, तो धुआं रहित चूल्हा यानी कुकिंग गैस LPG, हर घर तक सिलेंडर पहुंचाना, उज्ज्वला योजना, ये ऐसी योजना है जिससे माँ बहने आज अगर कहें तो दिल से धन्यवाद देती हैं इस सरकार को, महिलाओं के लिए शौचालय और खाना पकाने के लिए उनको स्वच्छ गैस, जो LPG कनेक्शन और सिलेंडर मिला है, ये दो चीजें अगर कहें तो महिलाओं का उत्थान हुआ, सशक्तिकरण हुआ, उन्हें काम मिला। दूसरी चीज की आप कहेंगे कि मनरेगा जैसा काम गांव में, हर गांव में गरीब से गरीब, जो सबसे निचले तबके पे जिसे कोई काम नहीं मिल सकता है या कोई काम करना चाहता है लेकिन उसके हाथ में काम नहीं था, गांव के लोगों के साथ है कि खेती के बाद कोई काम नहीं है, भूमिहीन मजदूरों के लिए तो और भी मुश्किल है, कोई उसके लिए काम नहीं है, ऐसे में उन्होंने क्रिएट किया, इस सरकार ने उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को काम दिया जाए, ये मनरेगा के तौर पर एक योजना है।
0: बिल्कुल, इन सब विषयों पे सिंह साहब हम अलग से बात करेंगे। आप दोनों ने एक 360 डिग्री पिक्चर, जो गांवों की सोच में बदलाव आया है, लोगों की जो प्रवृत्ति में बदलाव आया है, इस पर हमने चर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, इस पर थोड़ी डिटेल में अब हम चर्चा करेंगे। दरअसल ग्रामीण भारत में खुले में शौच की समस्या जो थी, केवल एक स्वच्छता का विषय नहीं थी बल्कि स्वास्थ्य, महिलाओं की गरिमा और बच्चों के भविष्य से भी जुड़ी हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने ग्रामीण जीवन में कहें तो एक तरीके से बिहेवियरल और सोशल चेंज पैदा किया है, इसे आप कैसे बताएंगे?
1: बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 का वो दृश्य याद करी, जब उन्होंने कहा था कि पूरे देश को हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 साल जब मनाएंगे जन्म दिवस का, तो सबसे बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी कि हम देश को स्वच्छ कर दें, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए। और तब लोगों को लगा था कि ये संभव ही नहीं है। आज आप देखिए, लगभग 12.2 करोड़ से ज्यादा जो है शौचालय गांव-गांव में बने हैं, करीब 3 लाख से ज्यादा कम्युनिटी शौचालय, जहाँ पे कम्युनिटी का होता है उसके बने हैं। आज न केवल शौचालय ही नहीं बने बल्कि शौचालय का उपयोग हो रहा है, मैंने लोगों के व्यवहार में, विचार में उनके परिवर्तन आए कि हम शौचालय बनेगा तो उससे क्या लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज आपने कहा गरिमा, जो हमारी माताओं बहनों को सड़क पे जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था, उनको सांप से डर है, कोई उनकी सुरक्षा, उनकी व्यक्तित्व सुरक्षा से उसको कॉम्प्रोमाइज एक रात या शाम के वक्त या सुबह के वक्त हो जाती थी। दिन भर अपने पेट में उस मल को रखती थी जिससे बीमारियां फैलती,
0: पीड़ा में रहती थी,
1: पीड़ा में रहती थी। तो आप सोचे कि उसको लेकर के ऐसी तमाम सारी स्टडीज हैं जो स्टडी कराएंगे, उसके बाद अब लगता है कि इससे जो है हमारे जो मृत्यु दर है बच्चों का चाइल्ड डेथ के बारे में, 5 साल के डेथ के बारे में, लोगों के पोषण के बारे में, हर चीज में सुधार हुआ है। जो हमारी डायरियल डिजीजेस थी, इतने सारे बच्चों का डेथ होता था उसमें, जो मैंने वाटर बॉर्न डिजीजेस हुआ करती थी क्योंकि उनका जो फीकल स्लज था वो उससे मिल जाता था, तो उन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। अब जो इसके बाद सरकार ने न केवल ODF किया, 100% गांव तो ODF हो गए, ODF प्लस यानी उसको शौचालय न केवल बने बल्कि शौचालय का उपयोग भी हो, और उसके ऊपर जाकर के जो वेस्ट का मैनेजमेंट, आज हर गांव में वेस्ट मैनेजमेंट, जो वहां पे ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर जिसमें तमाम सारे मच्छर पैदा होते हैं, इसको लेकर के मलेरिया से लेकर के तमाम किस्म की बीमारियां होती हैं, डेंगू की बीमारी होती है, उससे लोगों को निजात मिले। तो ये पूरा का पूरा एक स्वच्छता का अभियान जो चला, लोगों के लिए अकल्पनीय है कि ऐसा सक्सेसफुल कार्यक्रम हमारे देश में चलाया गया और उसका रिजल्ट सबके सामने है।
0: बिल्कुल, स्वच्छता मिशन के साथ साथ सिंह साहब अभी आप जल जीवन मिशन की भी बात कर रहे थे कि सिर्फ एक हैंडपंप गाड़ देना किसी गांव में ही जल पहुंचाना नहीं था, लंबे समय तक ग्रामीण महिलाओं और परिवारों के लिए रोज पानी लाना जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा था। इसमें चुनौतियां थी और बहुत वक्त भी उनका बर्बाद होता था। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक जल नल से पहुंचाने के प्रयास ने ग्रामीण परिवारों खास करके महिलाओं के जीवन को बहुत आसान बनाया है, और गांव में हर घर में नल कैसे पहुंचा है और हर नल में जल कैसे आया है, आइए सुनते हैं जल जीवन मिशन पर एक रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, बेहतर जीवन की शुरुआत कई छोटी छोटी जरूरतों से होती है। इनमें सबसे जरूरी है पीने का साफ पानी। गांव में लंबे समय तक बहुत से परिवारों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था, खासकर महिलाओं को घर के लिए पानी लाने में काफी समय और मेहनत लगती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य है हर ग्रामीण परिवार के घर तक नल से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना। आसान भाषा में कहें तो पहले जिस पानी के लिए परिवार को घर से बाहर जाना पड़ता था, उसे नल के जरिए घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जल जीवन मिशन केवल पाइप बिछाने की योजना नहीं है, इसका उद्देश्य गांवों में पानी की नियमित और सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए गांवों में पानी के स्रोत, पाइपलाइन, पानी की टंकियों और दूसरी जरूरी सुविधाओं को विकसित किया जाता है। श्रोताओं, घर में नल से पानी आने का मतलब केवल सुविधा बढ़ना नहीं है, इससे परिवार का समय भी बचता है। बच्चों को पानी लाने के बजाय पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों के लिए समय मिल सकता है, महिलाओं की रोजमर्रा की मेहनत कम हो सकती है और परिवार को घर के पास पानी उपलब्ध हो सकता है। इस काम में गांव के लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदाय पानी की व्यवस्था को बनाए रखने और उसकी निगरानी में भूमिका निभाते हैं। यानी पानी की सुविधा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि गांव के लोगों की भी साझा जिम्मेदारी है। हर घर बेहतर जीवन की बात करें तो इसके साथ कई दूसरी योजनाएं भी जुड़ी हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गांवों में स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ने का काम करती है। ग्रामीण विद्युतीकरण और ज्योतिग्राम जैसी पहलें बिजली की पहुंच और आपूर्ति को बेहतर बनाने से जुड़ी हैं। वहीं स्वामित्व गांवों में लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति से जुड़े अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की दिशा में काम करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर केंद्रित है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास पर जोर देता है। श्रोताओं, इन प्रयासों का उद्देश्य अलग अलग जरूर है लेकिन लक्ष्य एक ही है, गांव में रहने वाले परिवारों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके जीवन को आसान बनाना। जब घर तक साफ पानी पहुंचे, गांव तक सड़क पहुंचे, बिजली मिले, स्वच्छता की सुविधा हो और लोगों को अपनी संपत्ति तथा सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिले तो गांव का जीवन भी तेजी से बदलता है। यही है हर घर बेहतर जीवन की भावना, जहां विकास का मतलब केवल बड़ी इमारतें या बड़े शहर नहीं बल्कि गांव के हर परिवार तक जरूरी सुविधाओं की पहुंच भी है।
0: आपको क्या लगता है कि नल का कनेक्शन देना तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ही, उसके साथ नियमितता और पर्याप्त व्यवस्था के साथ गुणवत्ता वाला पानी भी उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी सफलता रही है सरकार की। अब जल जीवन मिशन के सामने क्या कुछ बड़ी चुनौती है या अगला स्टेप क्या है?
2: देखिए, पानी पहुंचाना एक है, लेकिन पानी तो पहले भी लोग पिया करते थे, बिना पानी के तो कोई जी नहीं सकता। पानी पहले भी पहुंचता था, लेकिन शुद्ध पानी पहुंचाना और पर्याप्त पानी पहुंचाना, जितनी जरूरत है एक व्यक्ति की 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। और नल से जब पानी जाएगा टैंक में चढ़ के, वो साफ होगा और स्वच्छ पानी जब लोगों के घर तक पहुंचेगा तो उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर होगी, स्वस्थ होंगे वो। मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो जल जनित बीमारियां होती हैं, जो पानी जम जाता है उससे मच्छर पैदा होते हैं और पानी में कुछ ऐसी चीजें चली जाती हैं, ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरियल और फंगल चीजें चली जाती हैं, अगर आपके पेट में चली जाए तो डायरिया हो जाए, ढेर सारे तरह के रोग होंगे। और अगर विपत्ति आनी है और गरीबी आनी जिसको कहते हैं ना, तो वो उसके लिए अगर रोग हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए, तो वो अपने आप गरीब हो जाता है, गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा। तो

0: नल से देने लगेंगे। नल कहने में बड़ा आसान सा दिखता है, लेकिन कितना खर्च हुआ होगा, कितनी बड़ी सोच रही होगी। और इसका प्रयोग प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्रित्व काल में अपने गुजरात में इन्होंने इसको लागू करके देखा, जहां पर वाटर डिफिसिट स्टेट्स है, जहां पर पानी की कमी, पीने की पानी की कमी, सिंचाई की कमी, हर तरह के पानी की कमी थी, शुद्ध पानी जल की तो बड़ी मुश्किलें थी। उस स्टेट को नर्मदा बांध से सरोवर, इतने बड़े बड़े बांध बने और नदियों में जो बरसात का पानी हुए उसे रोक रोक करके जगह जगह चेक डैम बना के वहां से बिजली पैदा करना, पानी को साफ करना, टैंक तक पहुंचाना और साफ कर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना, लोगों के खेत तक पानी पहुंचाना, यानी कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है गांवों की। तो गांव को लेके जो कांसेप्ट हमारे प्रधानमंत्री का है वो हमें लगता है कि बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा नेता मिला है। अभी एक बात और कह रहे थे मिश्रा जी, मैं कहूं देश का नेता खुद झाड़ू लेके अगर मैदान में उतर जाए कि सफाई मैं करूंगा तो यह देश स्वच्छ ही होगा। और देखिए कितनी सफाई हो गई कि कोई व्यक्ति जरा सा भी हिचकता नहीं सफाई करने में। आप जरा गाड़ी में आप कभी चल रहे हो, बिहेवियर चेंज कैसे आता है, हमें नहीं लगता कि आप कोई चीज, एक कागज का टुकड़ा भी खिड़की से नीचे कोई फेंकता हुआ मिल जाए, अगर कोई फेंकता हुआ मिल जाए तो पीछे वाली गाड़ी जाकर के उसे रोकती है, क्यों ऐसा किया, उसे अपराध बोध होता है। इस तरह की सोच में परिवर्तन, प्रधानमंत्री या इस देश का जब नेता इस तरह का बिहेव करता है, इस तरह का लीड करता है, तो आम जनता तक बात है और लोग उस पर अमल करते हैं।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आज हम ये नजारा नहीं देखते कि गाड़ी से किसी ने केले का छिलका फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, तो ये स्वभाव में जो परिवर्तन आया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या हित में नहीं है आम जनता के, ये बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज है। और साथ में मिश्रा जी आपसे महत्वपूर्ण सवाल अब मुझे ये पूछना है कि 2047 में हम विकसित भारत का लक्ष्य देख रहे हैं, उसे प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और गांवों की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है, बिजली गांवों में पहुंचाया जाना, क्योंकि डिजिटाइजेशन हो चुका है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, अगर बिजली पहुंचाने की सोच सरकार की आज से 10 साल पहले नहीं होती तो आज शायद गांव में हर हाथ में मोबाइल नहीं होता। तो बिजली की उपलब्धता गांवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को किस तरीके से बदला है, इसे आप कैसे देखते हैं?
2: देखिए इसके लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी, दोबारा मैं फिर आपको ले जाऊंगा 15 अगस्त के स्पीच में जो उन्होंने कहा था कि देश में ऐसे तमाम सारे गांव हैं जो आज भी जो सरकारी डेफिनेशन है उसके मुताबिक वहां पे बिजली नहीं पहुंची है, तो कुछ जगह तो बिजली पहुंच भी नहीं सकती, इतनी दुरूह जगह पे पड़े हुए, तो उसके तो हमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की जरूरत है जहां पे बिजली नहीं थी, और उसको अप्रैल 2018 तक सब जगह 100% बिजली पहुंचा देगी। अब सवाल है बिजली पहुंचाना सरहद में, उससे क्या गांव में बिजली लोगों को मिलने लगती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। कुछ लोगों के पास बिजली का जब खंभा ले जाकर के उनको अपने घर में बिजली लेने के, गांव में कुछ दो चार लोग जो संभ्रांत लोग हैं उन लोगों के पास बिजली पहुंच जाती है, बाकी सब लोग इससे वंचित रहते हैं। एक पूरी मुहिम चली सौभाग्य योजना, उस सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचा, जैसे हर घर में नल और हर नल में जल है तो हर घर में बिजली और हर बिजली में से बल्ब उसको जलेगा, मैंने हर घर में जो बच्चे, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, देखे छोटे बच्चे थे हम डिबरी में पढ़ते थे
1: जी,
2: लालटेन में पढ़ते थे, अब लालटेन डिबरी से पढ़ने से पढ़ तो लेते थे लेकिन हमारी आंखों में नुकसान पड़ता था, जितना हम पढ़ सकते थे बहुत जल्दी थकान हो जाती थी, उतना नहीं पढ़ सकते थे कि उसकी उतनी पर्याप्त रोशनी नहीं है। अब लोगों को गांव-गांव में घर घर में बिजली पहुंचाना और वहां पे लाइट हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इंचित किंचित कहीं जो बचे हैं, जो लोग नहीं सामने आएंगे, उनको RDSS योजना में कहीं कहीं उनकी पूरी हो जाएगी। और ये उपलब्धि केवल पढ़ने के लिए नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम बिजली गांव में पहुंचाते हैं आप ये समझ लीजिए कि वो हमारा इंडस्ट्री 1.0 था, 2.0, 3.0, मतलब वो अगले लेवल पे जो ग्रामीण उद्योग है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे। जब घर में बिजली पहुंचेगी तो तमाम सारी और चीजें जो हमारे सुख सुविधाएं की चीजें हैं, क्यों शहरी इलाके में लोग रहे उनके लिए अगर उनको टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध हो, उनको जो है अन्य सुविधाएं जो बिजली चलती है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, गांव में क्यों नहीं उपलब्ध हो? बच्चे जो तमाम सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब बिजली पहुंच गई तो वहां के माध्यम से आज डिजिटली बहुत सारा जो कार्यक्रम होता है वो सारे के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अब गांव में जो PSC है वो गांव के PSC को सीधे कनेक्ट करके उनको सारी सुविधाएं दे रहे, तो बिजली ने पूरी जिंदगी में सुधार कर दी, ग्रामीण व्यवस्था में सुधार कर दी, और ये हमारा जो लाभ मिला, और मुझे लगता है इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है जो गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने वहां एक ज्योतिर्ग्राम योजना
1: जी जी
2: उस ज्योतिर्ग्राम योजना में क्या किया उन्होंने कि ग्रामीण का जो एग्रीकल्चर का फीडर है उसको जनरल फीडर से अलग कर दिया, और फीडर के अलग करने से क्या हो कि बिजली का सही प्रकार से आप उपयोग करने लगे, उससे आपको घर भर में बिजली जो है जो 8-9 घंटे मिलती थी वो 20-21 घंटे बिजली मिलनी चालू हो गई, तो बिजली की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। आज तो बहुत सारा जो बिजली के नाम पे आज सोलर लाइट तो इतना उपयोगी हो गई गांव-गांव में, जो है गांव में सोलर लाइट उपयोगी, पहले हम लोग जो सोलर

0: से केवल कुछ कुकिंग का काम कर लेते थे, सोलर के कुछ लैंप को लालटेन के तौर पे उसका यूज कर लेते थे। आज सोलर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। सोनभद्र जिला जो है इतना ज्यादा दूर दूर तक वहाँ पे गांव फैले हुए, बहुत सारे जगह बिजली के खंभे वहाँ नहीं पहुँच सकते, पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, काफी उसमें एक्सपेंसिव होगा, बट सोलर के पहुंच करके सोलर के माध्यम से बहुत सारी चीज कर सकते हैं। वो गोबर गैस को यूज करके इसको कर रहे हैं, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव जो हमारे लोगों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
1: जैसा अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 13 वर्षों का उनका वहां का अनुभव रहा, उससे उस अनुभव को जो उन्होंने यहां पर कई योजनाओं में लागू किया है, एक गवर्नेंस के तौर पर कहें, योजनाएं बनाकर कहें, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि स्वच्छता हो गया, पानी मिलने लगा, बिजली पहुंच गई, लेकिन गांव की एक्सेसिबिलिटी अगर सड़क ना रहे प्रॉपर तरीके से तो फिर कैसे काम चलेगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव को बाजार से जिसने जोड़ने का काम किया, इसके बारे में आपकी क्या राय?
2: देखिए, गांव की सबसे बड़ी मुश्किल, मैंने कहा ना, सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति थी कनेक्टिविटी का अभाव, चाहे सड़कों का अभाव हो चाहे संचार साधनों का अभाव रहा हो, ये दोनों अभाव से कटा हुआ जो एरिया होता था हम उसे गांव बोल दिया करते थे। तो जो कनेक्टिविटी को तैयार करने का सबसे बड़ा मुद्दा था, हमारे 2000 में ही अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ग्राम सड़क योजना करके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करके योजना चलाई थी, और उसे जो 1, 2, 3, 4 चरणों में ये पूरे देश में बनी, आज कह सकते हैं कि करीब करीब 7-8 लाख किलोमीटर से ऊपर की बन चुकी है हमारी सड़कें। तो जरा समझिए कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी सड़कों का जाल बिछ गया, उससे फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि गांव में जो खेती है, किसान छोटा किसान है, मान लीजिए थोड़ी सी सब्जी उगा लिया, थोड़ा दूध या कुछ और अपना तैयार कर लिया, और जो ऐसी चीजें जो बाजार में बिक सकती हैं, तो वो अपनी साइकिल पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, अपने संसाधनों से, अपनी गाड़ी से, रिक्शे से, जो भी उसके पास साधन है, या किराए के ट्रैक्टर से, वो बाजार को पहुंचा लेता है, तो उसको एक काम मिल गया। दूसरा सबसे बड़ी फायदा यह हुआ कि स्वास्थ्य का, मिश्रा जी ने कहा कि अभी तो डिजिटली कनेक्ट होकर के हम कहीं से भी कनेक्ट होकर के हमें सुविधाएं मिल जाती हैं। हम कहते हैं कि गांव का आदमी, मुझे वो दिन याद है कि जब लोग बीमार होते थे तो सड़क नहीं होती थी, तो अब चारपाई पर लेकर के जो भी अस्पताल या डॉक्टर आता उससे इलाज कराते थे। आज स्थिति नहीं है, आज स्थिति यह है कि आप किसी भी 100-200 किलोमीटर तो बड़ी आसानी से आप यात्रा कर ही सकते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, क्योंकि सड़कों की गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि हमें लगता है कि जो PMGSY की सड़कें हैं वो किसी भी शहर की सड़क से कमजोर नहीं है, क्योंकि जो इसका मानक है बनाने का वो बड़ा सख्त है, जो एजेंसी बनाती है उसी को 10 साल तक के लिए मेंटेनेंस का भी होता है, उसका पेमेंट रोक लिया जाता है, कुछ तभी दिया जाएगा जब वो मेंटेनेंस कंप्लीट करेगा, मेंटेनेंस का हिस्सा भी उसका जोड़ दिया जाता है। यानी इतनी वैज्ञानिक तरीके से ये सिस्टम बनाया गया है कि उसमें बेईमानी के चांसेस बहुत कम है।
1: आपने मिश्रा जी देखा होगा कि लोगों के पास अपनी संपत्ति होती है, अपना जमीन होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स उनके पास बहुत स्पष्ट नहीं थे, तो स्वामित्व, गांव में संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व योजना जो है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।
0: ठीक है, स्वामित्व योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि गांव में जो खेती वाली जमीन होती है उसका तो खतौनी है, खसरा है, उसका नक्शा बना हुआ है, अब तो आज वो सारा डिजिटाइज भी हो गया है, लेकिन जो आबादी की जमीन थी, आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड किसी के पास नहीं था, नतीजन लोगों की आपस में लड़ाई होती थी, मैं तो देखता था फौजदारी होती थी, आज उनको इंडस्ट्री लगानी है घर पे, अपने कोई नया काम करना है, तो उसके लिए उनके पास अगर रिकॉर्ड नहीं है तो फिर वो बैंक से लोन भी नहीं ले सकते हैं। आज जो देखिए जैम का जो सबसे बड़ा जो ट्रेंडी आई है, तो जनधन योजना में हर आदमी का अपना खाता हो गया है, इन खाते में बैंक वाला आपको लोन नहीं देगा आपका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जो प्रारंभ किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व की योजना, जिसको हम लोग घरौनी भी कहते हैं, खतौनी कहते हैं जो खाता से हो गया, घरौनी कहते हैं घर से हो गया, इसमें ड्रोन के द्वारा सर्वे करके पूरे गांव का सर्वे कर,
1: टेक्नोलॉजी का भरपूर
0: इस्तेमाल, बिल्कुल बिल्कुल, ड्रोन से सर्वे करते हैं, वहां पे नीचे हर एक का जो लाइनिंग खींच देते हैं उसका सर्वे करते हैं, उसकी फिर ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं, और ग्राउंड ट्रूथिंग करने के बाद गांव सभा का मीटिंग बुला करके वहां पे सबको बुला करके दिखाते हैं, और दिखा कर जब सब सर्टिफाइड हो गए तो उसके बाद उनके जो है इसके जो स्वामित्व के जो डॉक्यूमेंट है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में जब मैं मुख्य सचिव था इसको मैंने बहुत टॉप प्रायोरिटी लिया। आज अगर देखें कि पूरे देश भर में लगभग 3 करोड़ के आसपास, 2.7 करोड़ के आसपास जो आज रिकॉर्ड लोगों को बढ़ चुके हैं, जिसमें से केवल उत्तर प्रदेश में ही केवल 1 करोड़ से ऊपर रिकॉर्ड बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट मैं कह दूंगा 90% हमारे गांव में में इसका काम पूरा हो चुका है, इसके जो रिकॉर्ड लोगों को बढ़ गए हैं या बढ़ रहे हैं, तो इसका जो लाभ आने वाले समय में, क्योंकि हमारे गांव की व्यवस्था जो आपने कहा कि शहरों से लोग जाकर के गांव में रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छी जलवायु है, शुद्ध जल है, शुद्ध पानी है, शुद्ध वातावरण है, और वहां रह करके आप अपनी जिंदगी का एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। वहां पे भोजन के लिए भी आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड आज आपको मिलेगा। आज जो गांव और शहर को जो जोड़ा जा रहा है, जो कि दो शहर हमारे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, शहरों की जरूरतें बहुत बढ़ रही हैं, तो वहां पे अब गांव में ऐसे प्रोडक्शन होने लगे जो कि शहरों की आवश्यकता है। अगर होटल में कोई या वहां पे रेस्टोरेंट में अगर कोई किसी प्रकार की सब्जी का एक्सोटिक उसका यूज होता है, अब वो गांव में उसका प्रोड्यूस होने लगा। गांव में जो आबादी कम हुई उनको शहर में जाकर उनको नौकरी मिल गई, लेकिन वो गांव से गांव में प्रोडक्शन करते हैं उसको शहर में ले जाकर उसको बेच देते। तो ये इसमें जो स्वामित्व योजना जो है, जो घरौनी योजना, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे ग्रामीण भाई बहनों को मिला है,
1: और खास करके महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, उसमें पहला नाम मैंने मकान की मलकिन तो महिला ही है, उसके बाद पुरुष का नाम है, तो महिला का नाम सबसे पहले रहता है।
1: सिंह साहब, हम पीएम जनमन की बात अब आपसे करेंगे। दरअसल भारत के कुछ सबसे वंचित समुदायों तक बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाना अभी भी चुनौती रही है। पीएम जनमन ने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी पीवीटीजी के विकास के लिए किस तरीके से नीतियां बनाई, किस तरीके का अप्रोच किया?
2: प्रधानमंत्री ने देखा कि वो क्षेत्र जो दूर दराज में बसे हुए हैं, जिन दुर्गम क्षेत्रों में जिनका कोई माई बाप नहीं, जिनका कोई ध्यान नहीं रखने वाला था, सरकार तो बहुत दूर की बात, सरकारी अफसर वहां जाने को राजी नहीं, कोई भी आदमी जाने को तैयार नहीं। अब ये दिल्ली के नजदीक आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मेवात का क्षेत्र है, हरियाणा में कोई वहां टीचर जाने को तैयार नहीं होता, कोई मतलब ऐसे क्षेत्रों में जिनका खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में, ऐसे जिलों को, ऐसे ब्लॉकों को, ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री ने बाकायदा चिन्हित कराया, हर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगा कि ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव और ऐसे ब्लॉक कहां कहां हैं जहां पे सुविधाओं का, खासतौर से बुनियादी सुविधाओं का जहां अभाव हो, ऐसी जगहों को चिन्हित करने के बाद वहां पर स्पेशल मुहिम के तौर पर स्पेशल अभियान चला के उन सुविधाओं को बहाल कराने का काम कराया है प्रधानमंत्री ने। जितनी योजनाओं की हम लोगों ने चर्चा की है, चाहे वो नल से जल हो, बिजली की सप्लाई हो, ये सारी चीजों की उपलब्धता कैसे वहां तक पहुंचाई जाए, ये सुविधा उनको विशेष अनुदान के तौर पर, किसी की कटौती नहीं की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल तौर पर दिया, और वहां पर ऐसे कलेक्टर्स और ऐसे अधिकारी लगाए गए जिनको बाकायदा दिया गया टारगेट कि इन एरिया का हमको हर हाल में बेहतर स्थिति चाहिए, ये कम से कम देश के बाकी हिस्से के बराबर के लोगों तक पहुंचे। और इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है कि इससे एजेंसी आएगी, यहां पर कभी रिसर्च होगा तो लोग सोचेंगे भला बताइए पहले सुदूर गांव तक ये सुविधा पहुंच गई, ये इस देश में भी संभव है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होगा, नेता होगा, वही पहुंचा सकता, उसकी सोच पहुंचा सकती है।
1: तो मिश्रा जी से मैं यही सवाल पूछता हूं कि आप अपनी जमीनी अनुभव को बताएं।
0: बिल्कुल,
1: पीवीटीजी के लिए
0: नहीं, पीवीटीजी देखिए, इट इज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब अगर हम ट्राइबल्स की देखें तो हमारी अनुसूची जो है उसके मुताबिक 705 ट्राइबल ग्रुप्स है, इनमें से 75 ऐसे पीवीटीजी जो कि हमेशा हर चीज से वंचित रहे, चाहे उनकी शिक्षा हो, उनका स्वास्थ्य हो, किस्म की बीमारियों से जूझते रहे, स्वास्थ्य हो, उनके लिए आवास हो, उनका न्यूट्रिशन हो, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हो। उत्तर प्रदेश में, मैंने उत्तर प्रदेश बहुत कम ट्राइबल्स है, ज्यादा ट्राइबल तो हमारे उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहां पे ज्यादा ट्राइबल्स, राजस्थान में ट्राइबल्स है। उत्तर प्रदेश जैसे जगह में भी ऐसे तमाम किस्म के जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये जो 75 ग्रुप्स सेलेक्ट किए गए, इनके बारे में इनके एक फोकस अटेंशन सरकार का, ताकि इनको 100% सेचुरेट कर दे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पढ़ा लिखे ना हो, किसी को जो है स्कूल न जाता, कोई ऐसा ना हो जिसको स्वास्थ्य की वजह से एक समस्या हो, उनकी जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो, तो हर चीज को पूरा तरह से एड्रेस किया गया। इनकी कनेक्टिविटी भी नहीं थी, मैंने एक तरफ पीएम ग्राम सड़क योजना हो रही थी, तो ये तो इतने दूर थे कि इसको उनका सोचता भी कोई नहीं था। अब इन गांवों को 100% के हर टोले को कनेक्टिविटी भी दी गई, इनके हर घर में बिजली पहुंचाई गई, तो जो सरकार के हर घर में जल पहुंचाया गया, ये एक स्पेशल फोकस अटेंशन है हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से। पीएम जनमन योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, आज उसका लाभ इस स्पेशल ग्रुप को मिल रहा है।
1: बिल्कुल, तो एक तरीके से आप दोनों से बातचीत करके ये एक तस्वीर उभरी है कि भारत के गांव में बिजली से, पानी से, स्वामित्व योजना से, उनकी कनेक्टिविटी से पूरी की पूरी सोच जो है उसमें समग्रता में एक परिवर्तन आया है।
0: इसमें जोड़ूंगा
1: जी,
0: एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है
1: जी, वाइब्रेंट विलेज
0: पहले बॉर्डर डेवलपमेंट का उसको करते थे जी। जो हमारे देश के सबसे अंतिम गांव होते थे, हम उसको कहते देश के अंतिम गांव,
1: वो पहला गांव क्यों नहीं है?
0: मैंने वहां पे जो सोच में परिवर्तन है कि पहले गांव में लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी हो, वहां टूरिज्म की फैसिलिटी हो, वहां पीने का पानी हो, वहां स्वास्थ्य का हर एक सारी सारी सुविधा हो, ये कंप्लीट सोच में परिवर्तन लाना कि गृह मंत्रालय भी इस प्रकार का काम 662 गांव में कर रहा है, जो कि चाहे वो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड हो, लद्दाख का हो, या उधर हिमाचल प्रदेश का हो, अरुणाचल प्रदेश का, ये पूरे बॉर्डर के जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर है उन सारे गांव के ऊपर ये कार्यक्रम चल रहा है।

0: अपनी सोच का,
1: गांव की और बात बताऊं, ये गांव टूरिज्म के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। अब उनकी रोजी रोटी का भी एक अच्छा साधन हो गया, क्योंकि वहां कनेक्टिविटी हो गई, सारी सुविधाएं हो गई। तो गृह मंत्रालय ने जो इनिशिएटिव लिया है प्रधानमंत्री के निर्देश पर, वो बहुत ही आगे बढ़ रही है और इसका बहुत फायदा मिल रहा है। वहां के लोगों का जीवन स्तर तो सुधरा। कुछ तो गांव ऐसे हैं जहां पे सिर्फ सिंगल गांव है, उसके लिए कोई कनेक्टिविटी का वो नहीं था, वहां नाव से जाया जाता था। हिमाचल प्रदेश के एरिया में कोई गांव है जिसके लिए इतना खर्च किया गया कि एक गांव के लिए इतना करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया कि इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए और सारी सुविधाओं से किया जाए, ताकि इन गांवों को ये न लगे कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये इस देश के प्रधानमंत्री या इस सरकार की सोच देखिए कि आखिरी छोर पर बसा व्यक्ति भी भारत का अपने को मजबूती के साथ जोड़ सके, और यह देश अगर बधा रहेगा तभी सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री है, हमारी अच्छी सरकार है, हमें लगता है योजनाओं को जिस तरह लोगों तक पहुंचाने की योजना थी और पहुंच रही है, इसका लाभ आने वाले दिनों में और अच्छा से दिखेगा।
0: पिछले 10-12 वर्षों में भारत के गांवों में जिस तरीके से सकारात्मक परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, और विकसित भारत 2047 की दिशा में अब जिस तरीके से भारत के गांव भी सहयोग कर रहे हैं, उसमें गवर्नेंस मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया है वो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डीएस मिश्रा साहब और एसपी सिंह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 8वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा गांव की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार एवं कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे जनसेवा से देश सेवा।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम जिसमें चर्चा होगी बातचीत और संवाद से ही विश्व शांति संभव, साथ ही झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में भी बातचीत होगी। कंपेयरिंग करेंगी शगुफ्ता बानो और राजता हुसैन, प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की।

0: पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं।
1: तो शगुफ्ता, हर साल 21 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं, तो इस पर जरूर हम बातचीत करना चाहेंगे अपने दोस्तों से भी। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बातचीत से निकल सकता है, और इस मौके पर दुनिया को अमन, अदब, तशद्दुद और बाहमी तवाउन का पैगाम दिया जाता है। लेकिन सबसे पहला सवाल ये उठता है शगुफ्ता कि क्या आज जब दुनिया में कई तरह के इख्तलाफात और कशीदगी देखने को मिलती है, तो क्या सिर्फ बातचीत के जरिए अमन कायम किया जा सकता है?
0: बिल्कुल, क्यों नहीं बातचीत के जरिए अमन कायम किया जा सकता है। बातचीत से ही तो अच्छी चीज की भी शुरुआत होती है और बुरी चीज की भी। देखिए राजदा, बातचीत और मकालमे अमन के सिमट में सबसे अहम जराये में से, जब दो अफराद, दो बरादरियां या दो ममालिक किसी मौजू पर मुत्तफिक नहीं होते हैं, तो उनके दरमियान मकालमे का रास्ता खुला रहना चाहिए। अक्सर मसला इख्तलाफ होने से नहीं, बल्कि इख्तलाफ को समझने और सुलझाने के रास्ते बंद हो जाने से पड़ता है। जब हम दूसरे शख्स की बात सुनते हैं, उसके ख्यालात को समझने की कोशिश करते हैं, तो हल के इम्कान पैदा होते हैं।
1: तो साफ साफ कहा जा सकता है शगुफ्ता कि मुकालमे का मतलब सिर्फ अपनी बात को कहना नहीं, बल्कि दूसरों की बातों को सुनना भी होता है। और उर्दू में तो वैसे भी एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज है गुफ्तगु। गुफ्तगु का मतलब है बातचीत, लेकिन ऐसी बातचीत जिसमें एहतराम हो, तहजीब हो और एक दूसरे को समझने की कोशिश हो। अगर हम सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो मुकालमा नहीं बल्कि बहस बन जाती है। मुकालमे में दोनों फरीकों को अपनी बात रखने और दूसरों की बात सुनने का मौका मिलता है।
0: बहुत खूबसूरत बात कही राजदा आपने, लेकिन ये सवाल भी है कि आलमी अमन जैसे बड़े मकसद में आम शहरी का क्या किरदार हो सकता है? क्या एक आम शख्स भी अमन कायम करने में ताउन दे सकता है?
1: बहुत सही कहा आपने, और ये बहुत सही सवाल भी है शगुफ्ता, और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। अमन की शुरुआत हमारे घर से होती है, खानदान में, स्कूल में, काम की जगह पर और मुआशरे में। हम जिस तरह एक दूसरे से सलूक करते हैं, उसका असर हमारे आसपास के माहौल पर पड़ता है। अगर खानदान में कोई इख्तलाफ हो, तो बातचीत से उसे सुलझाने की कोशिश की जा सकती है। स्कूल में मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाले तुलबा के दरमियान एहतराम और तावुन का जज्बा पैदा किया जा सकता है। मुआशरे में अफवाहों पर यकीन करने के बजाय सही मालूमात हासिल करना और किसी की बात को बगैर समझे आगे ना फैलाना भी अमन की सिमत एक जिम्मेदाराना कदम है।
0: बिल्कुल, आज सोशल मीडिया हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन कभी कभी गलत मालूमात और गुमराह कुन पैगामात लोगों के दरमियान कशीदगी भी पैदा कर सकते हैं। ऐसे में मकालमे का किरदार और भी अहम हो जाता है।
1: बिल्कुल, और ये हमें समझना होगा शगुफ्ता कि हर पैगाम सच नहीं होता और हर इख्तलाफ दुश्मनी नहीं होती। किसी ख्याल से इख्तलाफ करना हमारा हक है, लेकिन इख्तलाफ जाहिर करते वक्त दूसरे शख्स के एहतराम का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें ऐसी जबान इस्तेमाल करनी चाहिए जो मसले को समझने में मदद करे, ना कि उसे और बढ़ाए।
0: अगर हम बैनुल अक्वामी सतह पर देखें, तो ममालिक के दरमियान में कई तरह के तनाजात होते हैं। सरहदों, वसाइल और मुख्तलिफ पॉलिसियों को लेकर इख्तलाफात हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में बातचीत कितनी मुफीद होती है, ये जरा बताएं राजदा।
1: बिल्कुल, बैनुल अक्वामी ताल्लुकात में सफारती बातचीत, मुजाकरात और मुआहिदों का अहम मकाम है। जब ममालिक एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो वो अपने खदशात को सामने रख सकते हैं।
0: हाँ, और तो और हल के मुतबादिल तलाश कर सकते हैं और कशीदगी कम करने के रास्ते ढूंढ सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सिर्फ बातचीत करना ही काफी नहीं होता है राजदा, उसके साथ ईमानदारी, इतिमाद, मुआहिदों का एहतराम और उनके नफाज के ख्वाहिश भी जरूरी होती है।
1: यानी अमन सिर्फ अल्फाज से नहीं, बल्कि उन अल्फाज को अमल में लाने से कायम होता है।
0: रास्ता, अमन का मतलब सिर्फ जंग का ना होना नहीं है, उसका ताल्लुक इंसाफ, एहतराम, मसावी मवाक़े और महफूज जिंदगी से भी है। जब लोग को अपनी बात कहने का मौका मिलता है और उनके मसाइल को संजीदगी से सुना जाता है, तो मुआशरे में इत्तेमाद मजबूत हो सकता है।
1: बहुत अच्छी बात कही शगुफ्ता। मैं अपने सामईन से यही कहना चाहूंगी कि आइए हम अपने घर, खानदान और मुआशरे में बातचीत की सकाफत को फरोग दें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बातचीत बड़ी गलतफहमी को दूर कर सकती है।
0: बिल्कुल राजदा, और सामईन, अब वक्त है आज के प्रोग्राम के एक पहले पैगाम का। हम आपसे एक

0: छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं। आपके ख्याल में अमन की शुरुआत कहाँ से होती है, घर से, स्कूल से, माशरे से या पूरी दुनिया से?
1: नौजवान मुआशरे में मुस्बत तब्दीली के अहम शरीक हो सकते हैं। वो मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान मुकालमा बढ़ाने, तालीम के जरिए बेदारी फैलाने और समाजी हम आहंगी से जुड़े प्रोग्रामों में हिस्सा लेने की कोशिश कर सकते हैं।
0: बहुत खूब, और इसी पैगाम के साथ राजदा, क्यों ना हम अपने सामेईन को सुनाते चले एक अफसाना।
1: बिल्कुल,
0: अफसाना निगार है नजमा नाहिद अंसारी। तो आइए सामेईन समाप्त फरमाते हैं ये खूबसूरत सा अफसाना सुलक्षणा।
2: दरभंगा स्टेशन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, मनोहर प्रसाद की बेचैनियां बढ़ती जा रही थी। किसी ऐसे इंसान का नंबर भी न था जिसे फोन करके एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके। बिल्कुल नई जगह थी। कल ट्रेन में बैठने से पहले सोचा था कि रास्ते में बॉस ब्रजेश सिंह का स्टेशन से घर का पता पूछ लेंगे, लेकिन हैरत की बात, बॉस का मोबाइल नंबर लगातार स्विच ऑफ बता रहा था, और वो भी ऐसे समय जबकि आज उनके घर पर बेटे का रिसेप्शन है। कितने आमंत्रित लोग आएंगे, पता पूछेंगे, हैरत। इसी उधेड़बुन में थे कि ट्रेन स्टेशन पर एंटर कर गई। उन्होंने एक हाथ से ट्रॉली खींचते हुए और दूसरे हाथ से मोबाइल निकाला जो लगातार घनघना रहा था। अरुण जी, सहकर्मी का फोन था। रास्ते भर परेशान होकर मनोहर जी ने अपने सहकर्मियों को फोन करना शुरू किया था कि शायद उनकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल सके, किंतु दुर्भाग्यवश असफल रहे। सारे सहकर्मी भी परेशान हाल कि आखिर कौन मेजबान इतनी देर तक मोबाइल स्विच ऑफ करके रखता है, और वो भी उस दिन जिस दिन उनके बेटे का रिसेप्शन हो। हेलो अरुण जी, कुछ पता चला, कोई कॉन्टैक्ट नंबर? मनोहर जी ने फोन उठाकर कहा। अरे नहीं भाई, यहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं बता पा रहा। कोई लल्लू चप्पू तो है नहीं, बॉस हैं ब्रजेश सर, कोई इतना करीब भी नहीं उनके। अरुण जी की उधर से आवाज आई। मनोहर जी ने उदास स्वर में हामी भरी। जी, अरुण जी ने फिर कहा, आपको तो कहा था दूर की जर्नी है, मत जाइए, आप न माने। आप यही सोचिए, आप पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनके, तब भी उनकी पर्सनल जानकारी न के बराबर। अब क्या कहा जाए? मेरी राय तो यही है कि किसी होटल में रिटर्न टिकट तक ठहर लें और लौट आए। अरुण जी भी फ्रस्ट्रेट होकर कह पड़े। मनोहर जी ने जवाब दिया, मैंने तो शादी का कार्ड भी नहीं लिया अपने साथ, उससे पूरा पता मिल जाता, कहाँ रहते हैं, शादी कहाँ है। आप चिंता ना करें, शादी का कार्ड मेरे डेस्क पर ही है, मैं ऑफिस पहुंचकर व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको, एक हद तक मदद मिल सकती है। अरुण जी ने जैसी हाजिर जवाबी दिखाई, उससे भी फुर्ती से ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं आज जल्दी में हूँ। और अरुण जी ने ऑफिस पहुंचकर पहला काम यही किया, डेस्क पर रखा विवाह कार्ड की फोटो खींची और जिसमें पता अंकित था, और भेज दिया मनोहर जी को, कॉल लगाकर इतला भी दे दी, देख लें। मनोहर जी ने निकट के ही एक होटल में, जिसमें ऑटो रिक्शा पहुंचा गया था, नहा धोकर फ्रेश हुए। होटल का स्टाफ रिफ्रेशमेंट ले आया था, उन्होंने रिफ्रेशमेंट लिया। सफर से के थकान से चूर जिस्म की ख्वाहिश थी कि आराम करें, उद्वेलित चिंतित मन भाग लेना चाहता था सिकंदर की खोजी मुहिम की ओर, कि देखें कि इस पते पर, संयोग देखें कि जिस पते के लिए पूरा सफर हैरान परेशान रहे, खुद भी और औरों को भी परेशान किया, वो ऑटो रिक्शा वाले अच्छी तरह उस एड्रेस से वाकिफ था। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहते थे उस हवेली में। हर मंजिल अपना वक्त लेता है, और वो भी पहुंचे उस हवेली के, जहां तोरण द्वार आमंत्रित आगंतुकों के स्वागत के लिए सजा हुआ था। बड़ा सा सेहन, कुल देवता का छोटा सा मंदिर, आंगन परिसर में जगह जगह आम्र पत्तों की लड़ियां, लेकिन वो सब आज देखने का मंजर न था। देखने का मंजर था सेहन में पसरा सन्नाटा, हवेली से औरतों की रोने पीटने की आवाजें और बाहर मर्दों की बातचीत। मनोहर जी को यकबारगी लगा, कहीं गलत एड्रेस पर तो नहीं आप गए। उन्होंने ऑटो रिक्शा को रुकने के लिए कहा, मोबाइल पर विवाह कार्ड का एड्रेस का पुनर्निरीक्षण किया, सब कुछ सही सही था। दो व्यक्ति उन तक आए और एड्रेस के सही होने की तस्दीक की और उन्हें सेहन के बीचों बीच रखे उस अर्थी की ओर ले गए जहां अब स्वर्गीय हो चुके बॉस ब्रजेश प्रसाद सिंह का शव रखा हुआ था। मनोहर जी के कानों में आवाज आई, अभी अभी हॉस्पिटल से लाए हैं शव। और मनोहर जी फफक पड़े, इतना खौफनाक दर्दनाक अंत। कोई बता रहा था दूर की जर्नी से लौटी थी बारात, थकान से चूर और उस पर आज ही के रात वर्षों से चली आ रही परंपरा के निर्वाह हेतु घर के नाते रिश्तेदारों से नई नवेली दुल्हन सुलक्षणा की मुंह दिखाई की रस्म होनी थी रात में। जो थकान मिटाना चाहते थे वो नहा धोकर दोपहर का खाना पीना खाकर सोने चले गए थे। शाम से फिर से हवेली में हलचल बढ़ गई थी। परफ्यूम की खुशबू, सरसराते कपड़ों की मीठी आवाज, साउंड बॉक्स से दिलकश गानों की मधुर धुने शादी के माहौल को अपनी चरम लज्जत पेश कर रहे थे। दुल्हन भी सेज पर ही बैठी थी जैसा कि खानदानी रस्म था। मनोरम सभी कुछ, अति मनोहारी। दुल्हा अनुपम के जीजा ने एंकरिंग की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। बारी बारी से रिश्तेदारों को उनकी खासियत, रुतबा और दुल्हे से रिश्ते के हिसाब से खूबसूरत लकब देकर इज्जत से संबोधित करते और मुंह दिखाई के लिए बुलाते। रिश्तेदारों ने भी इस जोड़ी के दामन को गिफ्ट से अपनी शुभकामनाओं से लबरेज कर दिया था। फोटो सेशन भी चल रहा था, हालांकि अभी कल के मेन रिसेप्शन की चकाचौंध बाकी ही थी, लेकिन इस पूरी तरह घरेलू मुंह दिखाई की रस्म कहीं से कमतर नजर नहीं आ रही थी। बस ये सालों साल से एक दिन पहले की रस्म अदायगी इसलिए होती रही थी कि लड़की को लड़के वाले के घर के मर्द शादी से पहले नहीं देखते थे। अलबत्ता औरतें देखती थीं। सगाई का रस्म भी इस खानदान से नदारद था। जब से छर पीढ़ी में सगाई के दिन किसी की मौत हो गई थी, कारण स्पष्ट था। तकरीबन सारे रिश्तेदार अपनी पारी खेल चुके थे। अब बारी थी घर के सबसे अव्वल महत्वपूर्ण पद पर सुशोभित माता पिता की, यानी अनुपम के पिता श्री ब्रजेश प्रसाद सिंह और माता श्री प्रज्ञा सिंह की। उनके लिए भी खूबसूरत लकब से संवरे हुए लफ्जों, इज्जत से लबालब आमंत्रण मिला डायस पर दामाद वीरभद्र सिंह से। दर्द से भरा चेहरा लिए उठ खड़े हुए अपने वंश बेल को पल्लवित पुष्पित करने वाले जोड़े की अर्धांगिनी अपनी पुत्र वधु को आशीर्वचन से लबालब कर देने को ससुर और सास प्रज्ञा सिंह। सासू माँ ने अपनी लाडली बहू सुलक्षणा का घूंघट उठाया। ससुर पिता ने बहू का चेहरा निहारा और ये क्या, धम आवाज आई। सीने पर हाथ रखकर गिर पड़े नीचे ब्रजेश सिंह। अफरा तफरी के का माहौल हो गया। ब्रजेश प्रसाद सिंह के कानों में गूंज रहा था आवाज, गाड़ी निकालो, कौन से हॉस्पिटल चलना है, जल्दी जल्दी। और उनके आंखों के सामने कुछ और मंजर हावी हो गया, मानो वो अतीत से चिपक गए हो। हाँ ब्रजेश, दिल ने कहा, हाँ हाँ ब्रजेश, ठीक से देख लो, ये वही है। वही है ब्रजेश, ये वही है सुलक्षणा। और ब्रजेश अतीत में डूबते चले गए। वो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। 2 साल पहले उन्हें कंपनी के किसी कार्य से पुणे जाना था। उनका पर्सनल सेक्रेटरी भी साथ था। होटल के कमरे की रात की 10 बजे वो कल के मीटिंग्स के लिए कुछ जरूरी कागजात देख रहे थे। इतने में दरवाजा खुला, पर्सनल सेक्रेटरी बाहर से अंदर आए और इशारों में पूछा, सर अवेलेबल है? हाँ कह दूं? ब्रजेश साहब ने नजरें उठाई और इशारों में ही कह दिया ओके। सेक्रेटरी के वहां से निकलने के तकरीबन 20 मिनट बाद कमरे की घंटी बजी और बिना हिचक दरवाजा खोलकर एक्सक्यूज मी सर बोलते हुए अंदर आ गई ये खूबसूरत बाला। ब्रजेश साहब सकपकाए, ये क्या, मैंने तो वाइन समझा और ऑर्डर करने को कहा। वो खूबसूरत 24 साल की मॉडल की मानिंद दिल चुरा लेने के अंदाज में बोली, सर इट्स मी एन स्कॉट रेडी टू एक्सटेंड माय सर्विसेज एज पर योर विशेस। आई एम हियर विद यू फॉर हाफ एन आवर प्लीज सर। बचपन की उम्र अधेड़ावस्था की थी, वो वृद्ध तो ना थे, और सामने एक रेशमी कामुक बाला शायद उनका इम्तिहान लेने आई थी। निहायत शरीफ ब्रजेश फिसल गए और ता उम्र पत्नी धर्म निभाने वाला उस दिन उस कामुक बाला के आगोश में समा गया। उस प्रोफेशनल स्कॉट ने अपनी कामुकता की धारा में आकंठ डुबो दिया था। इस ग्लानी से वो उबर नहीं पा रहे थे। घर लौटकर उन्होंने हिम्मत करके अपनी स्नेहिल पत्नी के समक्ष कन्फेस कर लिया। महात्मा गांधी की साउथ अफ्रीका की एक ऐसी ही हरकत की कस्तूरबा के समक्ष कन्फेशन को उन्होंने पढ़ा। उन्हें उम्मीद थी कि प्रज्ञा भी उन्हें माफ कर देगी, बख्श देगी, और प्रज्ञा जी ने उन्हें माफी दे दी थी इस बिना पर कि वो महज एक अपरिपक्व संयोग मात्र था। यही एक फॉरमोस्ट कारण रहा था कि वो महानगरीय संस्कृति की लड़की को बहू बनाना नहीं चाहते थे। उन्होंने सघन अध्ययन किया था इस हादसे के बाद कि बड़े बड़े शहरों के कॉलेजेस में अध्ययनरत लड़कियां किस प्रकार इस घिनौने वेश्यावृत्ति के चेन में फंस चुकी है, और खूबसूरत स्कॉट का नोमेनक्लेचर अपने से जोड़कर इतराती फिरती हैं। इसमें सिर्फ कम आमदनी वाले घरों से आने वाली लड़कियां नहीं थीं, बल्कि उच्च आमदनी वाले घरों की लड़कियां भी शामिल हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ और दीगर डिग्री देने वाले कॉलेजेस के इस तरह के जहन के स्टूडेंट्स हैं जिनके कॉन्टेक्ट्स हैं बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउसेस। उन्होंने बगल में उन्हें थाम कर बैठी पत्नी को धीरे से कहा, पुणे की काली रात की काली नागिन यही है जी, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे संस्कारवान घर में संस्कारहीन माँ, प्रायश्चित, प्रायश्चित, हे भगवान, घोर अपराध, ये मेरे अपराध की सजा भगवान, क्षमा क्षमा, सुलक्षणा कुलक्षणा। और ब्रजेश ने प्राण त्याग दिए।
1: तो सामईन, अभी अभी आप सुन रहे थे अफसाना सुलक्षणा। अफसाना निगार थी नजमा नाहिद अंसारी। और साथ ही शगुफ्ता बात करते हैं झारखंड की खूबसूरती की, झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं की।
0: झारखंड कुदरती हसीन घने जंगलों, पहाड़ियों, आबशारों, तालकी मुकामात और भरपूर कबायली सकाफत के लिए जाना जाता है। झारखंड में हुनरू, दशम, जोनहा, लोध जैसे कई आबशार हैं जो दिलकश कुदरती के मुकामात की निशानदेही करते हैं। इन मकामात पर आने वाले जितने भी पर्यटक हैं, वो कुदरती मनाजर से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। इसके अलावा बेतरहाट अपनी पहाड़ी माहौल और सूरज के निकलने और डूबने के मनाजिर के लिए भी जाना जाता है। हमारी रियासत के कबायली सकाफत भी एक अहम पहचान है राजदा।
1: और वैसे भी शगुफ्ता, हिंदुस्तान के नक्शे पर अगर नजर डाला जाए तो झारखंड एक ऐसा क्षेत्र नजर आता है जिसे कुदरत ने बेहद फयाजी के साथ हुस्न और वसाइल से नवाजा है। एक लंबे अरसे तक इस रिवायती पहचान को महज खनिजों, कोयलों के सनातों तक महदूद रखा गया, लेकिन सच तो ये है कि झारखंड का असली सरमाया इसकी हरी भरी वादियां, आबशार, कदीम तहजीब और पुरसकून फजा है।
0: राजधा, झारखंड की सरजमीन कुदरती हुस्न का एक बेमिसाल शाहकार है। इस रियासत का लगभग एक तिहाई हिस्सा घने जंगल से घिरा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ ایکو ٹوریزم کے لیے کافی امکانات موجود ہیں۔
1: رانچی اور اس کے آس پاس کے علاقے جیسے ہنرو، چونہا، دشم اور پنچگاگ، جیسا کہ آپ نے بتایا شگفتہ پہلے بھی، صرف ٹوریزم کے مقام نہیں ہے بلکہ یہ قدرت کا عطیہ ہے۔ اگر یہاں معیاری سہولیت، قیام گاہ اور حفاظتی انتظام مکمل کیا جائے تو یہ علاقہ بین الاقوامی سیاحوں کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہے۔
0: اور نیتر ہاٹ کی پہاڑیاں ہم کیسے بھول سکتے ہیں رازدا، دلکش مناظر ہیں۔ مطلب ایک بار جانے کے بعد لگتا ہے کہ کچھ پل یہاں رہا جائے، آنکھوں کو، دل کو، دماغ کو اتنے سکون دیتے ہیں، اسی لیے تو اس کو چھوٹا ناگپور کی ملکہ کہا جاتا ہے۔
1: ایک دن ایک رات آپ وہاں ضرور رکیں شگفتہ، کیونکہ نیتر ہاٹ کی جو خوبصورتی ہے، وہاں کا سن سیٹ اور وہاں کا جو سن رائز ہے وہ دیکھنے لائق ہے۔
0: تو صرف میں ہی نہیں، میں تو کہوں گی کہ ہمارے سامعین بھی وہاں جائیں،
1: بالکل،
0: اور قدرت کے اس حسین منظر کا لطف اٹھائیں۔
1: اور اسی طرح اگر بیتلا کی بات کریں تو بیتلا نیشنل پارک اور دلما وائلڈ لائف سینچری جیسے مقامات میں سفاری، ورڈ واچنگ اور نیچر ٹریل کے ذریعے جنگل کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آمدنی میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
0: اور جھارکھنڈ کی ارتھ ویوستھا کا ایک بے حد اہم اور مضبوط ستون یہاں پر ممکن ہے۔ رازدا، گریڈی کا پارس ناتھ پہاڑ ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ سماج کے لیے ایک عظیم الشان اور مقدس تیرتھ استھل ہے۔ اس کی مقامی حسین پہاڑیاں اور قدیم مندر روحانی سکون کی تلاش کرنے والوں کے لیے ایک بہترین مقام ہے۔
1: اور چترا کا اٹکھوری ایک ایسا نایاب مقام ہے جہاں ہندو، بودھ اور جین تینوں مذاہب کا حسین سنگم دکھائی دیتا ہے۔
0: اتنا ہی نہیں رازدا، جھارکھنڈ کی اصل روح اور پہچان اس کی قبائلی تہذیب میں پوشیدہ ہے۔ یہاں کی ثقافت میں جو سادگی اور قدرت سے جڑاؤ ہے وہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے تجسس کا باعث ہے۔ چھو، ناچ اور سرہل جیسے ثقافتی تہواروں کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں رازدہ؟ سیاحی کیلنڈر کا حصہ بن کر غیر ملکی سیاحوں کو متوجہ کیا جا سکتا ہے۔
1: تو سامعین، جھارکھنڈ میں ٹوریزم محض ایک تفریح کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ ریاست کی معیشت کو بدلنے، نئے روزگار پیدا کرنے اور مقامی لوگوں کی زندگی کو بہترین بنانے کا ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔
3: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کارکرم جس میں چرچا ہوئی بات چیت اور سنواد سے ہی شانتی سمبھو، ساتھ ہی جھارکھنڈ میں پریٹن کے کھیتر میں سمبھاوناؤں کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی۔ کمپیئرنگ کر رہی تھی شگفتہ بانو اور رازدا حسین، پرستوتی تھی پربھو شرر کی۔

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कुछ देर बाद यानी 4:35 पर सुनिए श्री अन्न योजना। 4:50 का समय होगा फिल्मी संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार और 5:02 पर युवाओं से संबंधित कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज कंपेयरिंग करेंगी वैभवी और प्रज्ञा, जबकि प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 5:30 पर सुनिए श्रमिक लोग, जिसमें चर्चा होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प की भूमिका, साथ ही नारी श्रम का सम्मान, समाज का उत्थान। कंपेयरिंग करेंगी सुषमा इक्का और जया श्रीवास्तव, प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 6:00 का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का।

6:02 पर सुनिए खेती बारी, जिसमें चर्चा होगी फसल चक्र अपनाए साथी, प्रश्नोत्तरी झारखंड में धान की प्रमुख बीमारियां और एकीकृत प्रबंधन के बारे में की जाएगी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सूर्यकांत माणिक और भेदकर्ता होंगे मनोज कुमार, सूत्रधार होंगे अरविंद कुमार मिश्रा और पूनम पुष्पा मिंच, प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। हमारी दुनिया, इसे आप सुनेंगे 6:32 पर, जिसमें चर्चा होगी प्रदूषण कम करें, भविष्य सुरक्षित करें। साथ ही नागपुरी वार्ता, झारखंड के प्राचीन स्मारक के बारे में। वार्ताकार होंगी अनुपमा मिश्रा, सूत्रधार होंगे अरविंद कुमार मिश्र और पूनम पुष्पा मिंज, साथ ही प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 7:00 सुनिए प्रादेशिक समाचार और 7:11 पर जिले में आजकल आदिवासी अखड़ा, जो कि आज हो भाषा में प्रसारित होगी, सुनिए 7:15 पर, जिसमें चर्चा होगी पितृपक्ष के महत्व के बारे में, प्रकृति के संरक्षण के बारे में। प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडे।

प्रायोजित कार्यक्रम सहिया सुनेंगे 7:45 पर और रजनीगंधा का समय होगा 8 बजे से। 8:45 पर क्रमशः समाचार संध्या, न्यूज एट नाइट और उर्दू में समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर करंट अफेयर्स और खेल खिलाड़ी में आज एशियन गेम्स के बारे में बताया जाएगा, जिसमें भेंट वार्ता करेंगे मधुकांत पाठक, भेंटकर्ता होंगे प्रभु शरण की। रिपोर्ट और संकलन रेखा पाठक और अमित अखौरी का होगा। ये कार्यक्रम आप 10 बजे से सुन पाएंगे। 10:20 पर फिल्मी संगीत का आनंद लीजिए और शास्त्रीय संगीत 10:30 पर। इसमें आज के कलाकार होंगे निशांत खान। 11 बजे सुनिए हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार का वक्त होगा 11:05 पे।

ये थे आज के सांध्यकालीन प्रसारण में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री अन्न योजना।

0: संविधान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त न बना दे। यह समय भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में एक मील का पत्थर है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन और निस्वार्थ जनसेवा के गौरवशाली 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुआ उनका यह जनसेवा का सफर आज देश के प्रधान सेवक के रूप में राष्ट्र सेवा और अंत्योदय का एक जीवंत प्रतीक बन चुका है। सुशासन की इसी दूरदर्शी सोच के साथ केंद्र सरकार साल 2047 तक विकसित भारत के एक विराट संकल्प पर दिन रात काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए आज देश के उन सुदूर और सबसे पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन को बदला जा रहा है, जिन्हें कभी मुख्यधारा से अलग मान लिया गया था। श्रोताओं, इसी सुशासन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी दूरदर्शी और संवेदनशील मिसाल बनकर उभरी है श्री अन्न योजना, जिसे वैश्विक मंच पर मिलेट्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार सदियों पुराने हमारे पारंपरिक मोटे अनाजों की खेती को पुनर्जीवित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए देश के किसानों को सीधे उनके खातों में आर्थिक मदद, भारी सब्सिडी और अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण मुहैया करा रही है। आज के हमारे इस विशेष पैकेज में हम आपको सीधे झारखंड राज्य के जमीनी धरातल यानी ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे राज्य के हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में इस योजना के क्रांतिकारी क्रियान्वयन के जरिए विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य की एक नई सुबह हो चुकी है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं कि इस महाअभियान के मूल विजन और इसकी दूरगामी सोच पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है।
1: भारत में मिलेट्स या मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दी गई। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है, इसमें गांव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार। श्री अन्न यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में मददगार। ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान हो, इसमें खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है, साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विराट विजन को झारखंड की पावन और पथरीली मिट्टी पर उतार रही हैं यहाँ की बेहद कर्मठ और साहसी महिला किसान। श्रोताओं, चलिए सबसे पहले रुक करते हैं हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बानादाग क्षेत्र का है। कवि पुरुषों के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में आज महिला किसान आत्मनिर्भरता की एक नई और स्वर्णिम इबारत लिख रही हैं। इन फसलों ने न सिर्फ इनकी सूनी पड़ी जमीनों को हरा भरा किया है, बल्कि इनकी किस्मत को भी चमका दिया है। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों यानी सखी मंडलों के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण केंद्र लगाए गए हैं, जहाँ इन महिलाओं को बीज बोने से लेकर फसल काटने की नई तकनीकों के प्रति लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल के दिनों में जैसे ही शहरी बाजारों और बड़े होटलों में श्री अन्न की मांग और इसकी कीमतें बढ़ी हैं, वैसे ही इन महिला किसानों की आय में एक अप्रत्याशित और ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके कारण इन ग्रामीण महिलाओं का न केवल आर्थिक स्तर सुधरा है, बल्कि परिवार की अर्थव्यवस्था में भी उनका मान सम्मान बढ़ गया है। आइए सीधे सुनते हैं बानादाग की उन्हीं स्थानीय महिला किसानों किरण कुमारी और बबीता कुमारी के संघर्ष और सफलता के सजीव जमीनी अनुभव।
3: श्री अन्न योजना के तहत से हम लोग मड़ुआ का खेती कर रहे हैं। इसमें 3,000 का हम लोग का पैसा मिलेगा और मड़ुआ का खेती करने से मोटा अनाज वाला खेती है। इसमें पानी को ज्यादा पटाव नहीं किया जाता है, कम पानी में भी अच्छा से उपजाव कर सकते हैं। और अभी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो सब ऐसे पौष्टिक आहार आना चाहता है। थैंक यू बोलेंगे कि ये तहत आप चलाए हैं और मड़ुआ का खेती उपजाने के लिए सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं।
4: हम लोग प्रधानमंत्री द्वारा श्री अन्न योजना के तहत हम लोग मड़ुआ की खेती कर रहे हैं। इसका एक फायदा है कि जो खेत तो हम लोग का उपजाऊ नहीं था उसमें हम लोग मड़ुआ की खेती करके और हम लोग लाभ उठा रहे हैं। इसमें कीटनाशक दवा भी हम लोग को देने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है और खाद भी हम लोग ज्यादा नहीं देते हैं, जिसके कारण हम लोग को बहुत लाभ होता है। जिस प्रकार से मोटे अनाज की मांग है उस अनुसार से हम लोग बहुत मतलब अच्छा इसमें फायदा उठा रहे हैं।
2: श्रोताओं, श्री अन्न योजना का प्रभाव सिर्फ किसानों की जेब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी बूढ़ी होती जा रही धरती और पर्यावरण को बचाने का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक अभियान भी है। इस योजना के तहत हजारीबाग जिले की जो ऊंची और पथरीली टाण जमीन बरसों से पड़ती यानी बंजर पड़ी रहती थी, वह आज किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। हजारीबाग जिले की ही सजग महिला किसान रेखा देवी और सिंधु देवी अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताती हैं कि श्री अन्न यानी मिलेट्स की इस खेती में सबसे बड़ी क्रांतिकारी बात यह है कि इसमें सिंचाई के लिए पानी का उपयोग नाम मात्र का होता है। इसके साथ ही इसमें किसी भी तरह के जहरीले कीटनाशकों और रसायनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे यह पूरी तरह से शून्य बजट प्राकृतिक खेती में बदल जाती है। यह फसल इतनी साहसी और कठोर होती है कि भयंकर सूखे और कम बारिश की स्थिति में भी खेतों में सीना ताने डटी रहती हैं और छोटे किसानों को फसल बर्बादी के सबसे बड़े डर से बचाती है। वहीं पसई के पंचायत समिति सदस्य मनीष कुमार और स्थानीय प्रगतिशील किसान इंदर कुशवाहा का स्पष्ट मानना है कि सरकार द्वारा केंद्रीय बजट में किए गए ऐतिहासिक प्रावधानों और सब्सिडी के सीधे ऐलानों ने आम किसानों के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया है। लोग अब रासायनिक खादों की अंधी दौड़ को छोड़कर दोबारा सावा, कोदो, जौ, ज्वार और बाजरा जैसी अपनी पारंपरिक और प्राचीन फसलों की तरफ गर्व से कदम बढ़ा रहे हैं। इस सामाजिक और कृषि स्तर के बड़े बदलाव ने झारखंड के गिरते भूजल स्तर को रोकने और मिट्टी की खोई हुई उर्वरा शक्ति को वापस लाने में एक नया जीवन दान दिया है। आइए सुनते हैं इन चारों किरदारों की जुबानी इस जमीनी बदलाव की पूरी कहानी।
5: किसान के लिए श्री योजना का मोदी जी ने आह्वान किया है, यह किसानों के हितकर है। इससे दो फायदे हैं। पहला तो ये होता है कि जो मोटे अनाज की खेती अगर लोग किसान कर रहे हैं तो उससे जो पड़ती भूमि है उसका जो है सो उपयोग हो रहा है। दूसरे रूप में इसको हम देखें कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, चूंकि आज जो है सो हर लोग मोटे अनाज का सेवन के लिए डिमांड भी करते हैं, उसका उपयोग भी कर रहे हैं, मकई है, मड़ुआ है, बाजरा है, कुर्सी है, सबका प्रयोग कर रहे हैं। और इसका दूसरा फायदा जो है वह किसान के लिए सबसे हितकर है कि किसान को प्रोत्साहन राशि भी सरकार द्वारा दी जा रही है, कृषि यंत्र दिया जा रहा है, इससे दोहरा लाभ किसान को हो रहा है।
3: हम लोग श्री अन्न योजना के तहत मड़ुआ का खेती कर रहे हैं। इसमें बहुत सारा उपजाऊ है, इसमें से डिमांड भी इसका बहुत ज्यादा भी है। मार्केट में 80% भी मड़ुआ का डिमांड है। इसमें एक एकड़ में लगाने से ज्यादा उपज होता है और मड़ुआ का खेती में ज्यादा पानी का जरूरी नहीं पड़ता है, ना ही कीटनाशक दवा का जरूरी पड़ता है। मोदी जी को बोलेंगे धन्यवाद और ऐसा योजना हमेशा चलाते रहे ताकि हम लोग भी लाभ ले सके।
5: हमारे प्रखंड में लगभग 12-13 पंचायत है जिसमें जो है सो मड़ुआ की खेती के लिए जो है सो बृहत पैमाने पर खेती किया जा रहा है। इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री प्रति एकड़ 3,000 लाभ का जो है सो घोषणा किए हैं, जिसका महत्वाकांक्षी योजना के तहत जो है सो हम लोग जो है सो किसानों के बीच में इस योजना का प्रचार प्रसार किए। जहाँ पर जो है सो पानी का किसी तरह का कोई साधन नहीं था तो वहाँ पर खेती करने का प्रयास किए हैं और अच्छा अच्छा खेती करके लहलहा रहे हैं उनका फसल। जब मौसम विभाग जो है सो इस वर्ष कम वर्षा होने का आशंका जताया गया था तो लोग जो है सो ज्यादा धान की खेती नहीं करने के और जो है सो ज्यादातर मड़ुआ पर ही जो है लोग अपना झुकाव बनाए। और
6: मोटा अनाज का खेती जैसे मड़ुआ हो गया, मकई हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और अन्य तरह के दलहन में अच्छा खेती है, कम लागत में अच्छा खेती होता है, उपज ज्यादा होता है। और दूसरी बात है कि अब जो है लोग मोटा अनाज खाने के लिए चाहता है और अधिक दाम में बिक रहा है, इसलिए हम यही कहेंगे प्रत्येक किसान मोटा अनाज का खेती करे और प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा किसान को प्रोत्साहन दे

0: हजारीबाग की लहलहाती फसलों की इस कहानी से थोड़ा आगे बढ़े तो पड़ोसी जिले रामगढ़ में भी श्री अन्न योजना का एक बहुत बड़ा प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक असर साफ दिखाई देने लगा है। यहाँ झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS की सक्रिय पहल और स्थानीय बुद्धिजीवियों के सामूहिक प्रयासों से यह योजना वैश्विक महामारी COVID-19 के बाद आम लोगों के लिए एक जीवनदायिनी। अब गाँव में मड़ुआ और बाजरे से आधुनिक बेकरी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं जो स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों को साथ लेकर आ रहे हैं। आइए इस पूरे इकोसिस्टम को समझने के लिए सुनते हैं रामगढ़ में कार्यरत JSLPS के ट्रेनर विनय कुमार, स्थानीय निवासी राकेश कुमार पांडे, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिक रंजन सिंह फौजी और रामगढ़ महिला कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह के बेहद गंभीर और विश्लेषणात्मक विचार।
1: मैं राकेश कुमार पांडे रामगढ़ जिले के तोपा कुलेरी में रहता हूँ। प्रधानमंत्री द्वारा श्री अन्न योजना जो लाया गया है स्वस्थ भारत निर्माण में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। इसको बढ़ावा देने के लिए मकई, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, रागी की खेती पैसे के दृष्टिकोण से भी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। मेरा नाम

0: अन्य योजना के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि आफ्टर पेंडेमिक पीरियड में काफी लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हुआ, जिसके वजह से बॉडी में बहुत तरह का कॉम्प्लिकेशंस हुआ, तो ऐसे समय में ये श्री अन्न योजना एक वरदान साबित हो रहा है।
1: हजारीबाग के बानादाग के लहलहाते खेतों से लेकर रामगढ़ के कुजू और शैक्षणिक संस्थानों की रसोइयों तक श्री अन्न योजना की यह सफलता साफ बयां करती है कि जब सुशासन की नीयत साफ हो तो नीतियां इतिहास बदल देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी पहल ने झारखंड के सुदूर इलाके में न केवल जल संरक्षण और पर्यावरण को एक नया जीवन दिया है, बल्कि ग्रामीण सखी मंडलों की दीदियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर सामाजिक सशक्तिकरण की एक नई रीढ़ तैयार की है। महामारी के इस दौर के बाद खेतों से लेकर स्कूली बच्चों की थालियों तक पहुंच रहा यह श्री अन्न नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सबसे मजबूत और अटूट नींव साबित हो रहा है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश और रामगढ़ से के तिवारी के साथ रांची समाचार कक्ष से मैं कुंदन कुमार वर्मा।
2: मेरे प्यारे श्रोताओं, आज आपने हमारे इस विशेष पैकेज में महसूस किया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई श्री अन्न योजना देशवासियों के जीवन के लिए एक महान वरदान साबित हो रही है। यह सुशासन का वह सफल और सस्टेनेबल मॉडल है जो भारत को साल 2047 तक एक पूर्ण विकसित भारत बनाने के हमारे राष्ट्रीय संकल्प को शत प्रतिशत सिद्ध करेगा। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम शाम 4:35 पर एक नए टॉपिक के साथ आपसे होंगे रूबरू। इस विशेष पैकेज की संपादक महविश रहमान और प्रवक्ता तथा आलेखकार कुंदन कुमार वर्मा के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त कामिनी को अब दीजिए अनुमति। आप सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, श्री अन्न अपनाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड।
3: अभी आप सुन रहे थे श्री अन्न योजना। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम सांझ सरगम।

कार्यक्रम सांझ सरगम का पहला नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से। इस गीत के गीत कलाकार है मसरूह सुल्तानपुर और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: अरमान मलिक और अमाल मलिक की आवाजों में अगला गीत फिल्म कपूर एंड संस से। इस गीत के गीतकार है अभिरुचि चांद और संगीतकार है अमाल मलिक।

इस गीत के साथ फिल्मी संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के भीतर शुरू हो रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत पाकुड़ में भाजपा महिला मोर्चा ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगन का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। आज से 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बच्चों और उनकी माताओं को आमंत्रित कर पोषण, स्वास्थ्य और महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सम्मानित किया गया और बच्चों के बीच फल व मिठाई वितरित की गई। मौर्य एक्सप्रेस आज से 2 अक्टूबर तक परिवर्तित मार्ग से दुमका होकर चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 15027 संबलपुर गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस जसीडी देवघर दुमका भागलपुर मुंगेर और बरौनी होकर गोरखपुर जाएगी। वापसी में 15028 गोरखपुर संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस भी इसी परिवर्तित मार्ग से दुमका होकर चलेगी। दुमका के सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ने पीजी सेमेस्टर 1 सत्र 2025-27 का परीक्षा फल जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल 3652 विद्यार्थियों में 90.74% परीक्षार्थी सफल रहे। विश्वविद्यालय के निदेशक जनसंपर्क डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा ने परीक्षा फल जारी होने की जानकारी दी। बोकारो जिले में स्टील सिटी के सेक्टर 12 स्थित क्वार्टर नंबर 2050 की तीसरी मंजिल का छज्जा बारिश के दौरान अचानक गिर गया। घटना के समय मकान मालिक आउटहाउस में सो रहे थे और तेज आवाज से उनकी नींद खुल गई। वे बाल बाल बच गए। हालांकि उन्हें मामले चोट लगी है। स्थानीय लोगों ने बीएसएल प्रबंधन से जर्जर क्वार्टरों का निरीक्षण कर मरम्मत कराने की मांग की। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं, आज के सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, आज के शाम के कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज

एक ही गीतकार के गीत सुनवाए जाएंगे। 5:30 पर होगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी, और जिसमें चर्चा होगी सब्जी बीजों से नर्सरी पौधे कैसे तैयार करें। उड़िया लोकगीत आप सुनेंगे सुरभि पान और उनके साथियों से। पत्ता गोभी और फूल की खेती से क्या लाभ होगा, इस पर भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। भेंटवार्ताकार होंगे भूपति सिंह मुंडा। लोकगीत आप सुनेंगे जादू मुंडरी और उनके साथियों से। 6:00 समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। छह बजकर 2 मिनट पर होगा कार्यक्रम हुआकड़ा, जिसमें चर्चा होगी वृक्षारोपण पर पर्यावरण संतुलन। हेरो दुरंग आप सुनेंगे बेलमती माई हंसदा और उनके साथियों से। जानकारी की बातें आपको बताई जाएगी और भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। स्वरोजगार के रूप में पोल्ट्री फार्मिंग, भेंटवार्ताकार होंगे नानू सिरका। और अहादी लोकगीत आप सुनेंगे पहाड़पुर गांव के कलाकारों द्वारा। 6:30 पर कार्यक्रम होगा नन्ही दुनिया, जिसमें आप मिशन वात्सल्य योजना पर जानकारी के अलावा और भी का जानकारी लेंगे। आपके साथ होंगी अंजुरानी देवगम। और 6:55 पर प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 7:15 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपकी पसंद।

रात्रि 8 बजे सुनेंगे आप श्रोताओं के फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। रात्रि 10 बजे आपको डेली कैप्सूल हाइलाइट्स के लिए लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जो कि एशियन गेम्स 2026 पर आधारित होगा, जिसका 20वां एडिशन प्रस्तुत किया जाएगा। 10:20 पर गजनों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा और 10:30 पर सुरों के रंग में आप सुनेंगे कुछ सदाबहार गीत। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर सभा समाप्ति की घोषणा की जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप जानकारी ले रहे थे आज के सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है और सुनते हैं आज एक ही गीतकार सैयद कादरी के रचना सोनू निगम के स्वर में।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य करने वाली तथा पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी के साथ बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं राकेश पंत।
1: नमस्कार, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान है बसंती देवी, जो महान पर्यावरणविद है और प्रकृति की संरक्षण के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। बसंती देवी उत्तराखंड की धरती पर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। उन्होंने स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को एकजुट कर कोसी नदी को बचाने के साथ ही जंगलों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर 5 के जंगलों को बचाने और जल संरक्षण की मुहिम चलाई। उनके इसी काम को देखते हुए सन 2016 में उन्हें नारी शक्ति सम्मान और 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया। तो बसंती देवी जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बसंती जी। तो आपसे जानना चाहूंगा, कोसी नदी और उसके जलागम क्षेत्र को बचाने की आपकी मुहिम की शुरुआत कैसे हुई, तब क्या परिस्थितियां थी, आपने किस तरह इस मुहिम को आगे बढ़ाया?
2: पहले तो उस नदी में बहुत पानी था, खेतों में भी इतना अच्छा जमीन में पानी और सब खेती पाती होती थी। धीरे धीरे जब जंगल पूरा काट दिया महिलाओं ने, जंगल काट के तो पानी खत्म हो गया, जंगल खत्म हो गए और इसलिए बहुत परेशानी होगी। सब लोग कहने लग गए अब हम पानी भी कहाँ से पिए, और खेती में भी हमारे खेतों में भी पानी नहीं आ रहा है। तब मैं गांव-गांव में जाकर मैंने महिला संगठन बनाया। मैंने कहा जब पानी नहीं आएगा तो तुम्हारे यहाँ तो इतनी अच्छी खेती होती थी और इतना ज्यादा पानी आता था और नदी में और सब कुछ था, जब पानी नहीं आएगा तो कहाँ से पियोगे पानी, कहाँ से खेती होगी और कैसे हम जिंदा रहेंगे, तो इसके लिए तो तुम सब सोचो। मैंने कहा जंगल जब पूरे पेड़ काट दे रहे हो और फिर वो सड़ जाते हैं तो उनको फिर तुम जला देते हो, तो तुमको ये सोचना चाहिए कि जब जंगल बचेगा, पानी आएगा, तब खेती भी अच्छी होगी, अपने लिए भी, हमारे पानी पीने के लिए और रुपाई करने के लिए, खेती पाती सब ठीक करने के लिए भी तब अच्छा होगा, तब हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम जिंदा ही कैसे रह सकते हैं। मैं फिर 6-7 दिन के बाद जंगल के रास्ते गई तो महिलाओं से कहा बैठो आप,

0: तुमको सब बात सुनाती हूँ। जब जब पानी नहीं रहेगा तो मनुष्य जिंदा कैसे रहेंगे, खेती कैसे होगी? और ये तो तुमको सोचना ही चाहिए। मैं आज तुम्हारा संगठन बना भी, जंगल से अब घर को चलोगे, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, चौथे गांव में, सब जगह जाकर मैं सबका संगठन बना के सबको एक करूंगी। मान गए वो, फिर आ गए, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाकर पूरे कोसी नदी के वहां सोमेश्वर घाटी में उधर उधर सब जगह वो काम किया तो सब मान गए। जंगल नहीं काटा तो जंगल बच गया, फिर पानी आने लग गया धीरे धीरे।
1: जैसे आपने जो काम किया वो खासकर कोसी नदी बागेश्वर के आसपास, आप आश्रम में बहुत समय तक रहे, आपके मन में कैसे आया कि प्रकृति से जुड़े हैं, नदी को बचाएं, कैसे आपने सोचा ये सारी चीज?
0: क्यों, मैं तो जब इलाके में रहती थी, जब वहाँ प्रकृति ऐसी होगी, जब पानी खत्म हो गया, खेती नहीं होने वाली हुई, सब इस प्रकार का हो गया और लड़ाई मार झगड़ा और होने लग गया, तब मुझे बहुत दुख हो गया। मैंने कहा जब सब घर घर में ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो हमारा उत्तराखंड की देव भूमि महान कैसे बनेगी? तो यही, इसी को लेकर मैंने गांव गांव में उनसे कहा कि हमको अपना जीवन, अपना देश, अपना गांव, अपना परिवार को महान बनाना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी देव भूमि महान बनेगी। अभी भी मैं कहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के देव भूमि को हमको महान बनाना है। हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छा वो होगा तो आगे की पीढ़ी भी अच्छी होगी, तो यही मेरा काम होता है।
1: बसंती दी, जब आप अभियान शुरू कर रही थी, लोगों को जोड़ रही थी अपने साथ, इसके लिए कितनी चुनौतियां आई लोगों को जोड़ने में, महिलाओं को जोड़ने में, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं थी, आपने उनको संगठित किया, कितनी परेशानियां चुनौतियां आपके सामने आई?
0: चुनौतियां तो बहुत आई, सब लोग कहने लगे बड़ी आ गई है, ये तो आश्रम में रहती है और हमारी महिलाओं को इतना भड़का रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है करके। कहीं वो महिलाओं का महिला मंगल दल बनाया और उनको मैंने कहा चलो अब आ तुम, तुम्हारे पास लकड़ियां हैं, अब तुम यहाँ से अब लकड़ी नहीं ले जाओगे, जंगल बचाना है, ऐसे करके वो फिर आ गए मेरे साथ गांव में, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाते जाते मैंने 200 गांव में महिला संगठन बनाया, तो सब उनको बताया, सब मान गए बहुत अच्छी तरह। तो ऐसे करके गांव गांव में जाकर वातावरण अच्छा बना दिया, तो जंगल बचाने का, पानी बचाने का, महिला सशक्तिकरण, भाई लोगों को नशा मुक्त करना, तो ऐसे ऐसे करके सब वातावरण अच्छा बना दिया। मैंने कहा तुम भी थोड़ा सीखो महिलाओं से, मैंने कहा संगठन बन गया है, जंगल बचाना है, पानी बचाना है, खेती अच्छी बनानी है, बच्चों को पालना पोसना है, आगे पढ़ाना है, जैसे लड़कों को तो स्कूल भेजने वाले हुए, लड़कियों को नहीं, लड़के लड़कियों को पढ़ाने का नहीं हुआ। जब मैंने कहा लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो क्या होगा, लड़कियों को भी पढ़ाना है, तो बालवाड़ी खोली हमने भी आश्रम के द्वारा, एक बालवाड़ी से 200 गांव में बालवाड़ियां खोली लड़कियों को पढ़ाने का, और भाई लोगों को नशा मुक्त किया मैंने। जब परिवार तुमसे क्या सीखेगा और बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा वातावरण कैसे अच्छा होगा, तुमको तो ये सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल, हाँ। पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ ही नशा उन्मूलन के क्षेत्र में आपके जो प्रयास है वो सराहनीय है। आज जब आप अपने कार्य को देखते हैं बसंती जी, हाँ। आपने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति को लेकर जो कार्य किए, कैसा महसूस होता है कि आपने हमारी पीढ़ियों को इतना कुछ आपने दिया है, कैसा लगता है?
0: अच्छा लगता है, क्योंकि लोग तभी तो सब जगह किताबों में भी लिखते हैं, ऐसे वो भी देते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया, तभी तो पद्मश्री अवार्ड भी मिला। तो ऐसे करके धीरे धीरे वातावरण बहुत अच्छा हो गया गांव गांव में सब जगह, और बच्चे भी अच्छे हो गए, उनको भी अच्छी तरह पालना पोसना और ऐसा कर दिया, और लड़कियों को भी, जब हमने और बालवाड़ी में, एक बालवाड़ी से लेकर 200 गांव में बालवाड़ी खोली लड़कियों के लिए, तो वो भी पढ़ने लग गए, लिखने लग गए, तो ऐसा वातावरण बन गया तो सब गांव गांव में बहुत खुश हो गए। तो और फिर और सरकार के द्वारा फिर लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए सरकार ने स्कूलों में उनको भी भर्ती कर दिया, बालवाड़ी से लेकर फिर वो और स्कूलों में भी ऐसे पढ़ने लगी।
1: अच्छा, जो कोसी नदी का आपका अभियान था वो बहुत ही सराहनीय अभियान रहा है, और कई आज के जो जनरेशन है वो भी उससे प्रेरणा लेती है। आपको लगता है किस तरीके से आपने कोसी नदी, क्योंकि उस टाइम कोसी नदी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, आपने कैसे, आपके मन में आया कि इसको बचाया जाए?
0: पहले तो कोसी नदी में बहुत पानी आता था, जब जंगल कट गया तो पानी नहीं आने वाला हुआ, तब मैंने कहा, तभी तो मैं 7 दिन गांव में गई, कोई महिलाएं नहीं मिली, और वो गांव के रास्ते ही जंगल में गई, वहां मुझे वो महिलाएं मिल गई। मैंने उनसे कहा कि तुमने इतना जब जंगल काट के खत्म कर दिया, पानी और जंगल पेड़ काट के, और ऐसे इतने तुमने कनखले बना दिए, वो कर दिया, वो सड़ गए हैं और वो बेकार हो गए हैं, जब पानी नहीं आएगा तो क्या पियोगे, कैसे जिंदा रहोगे, कैसे खेती पाती होगी, ये तो तुम सोचो, तुम नहीं सोचते हो तो फिर और क्या होगा, ऐसे ऐसे करके तो वातावरण फिर बहुत अच्छा हो गया।
1: संदीप जी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकें? क्या उनसे कहना चाहेंगी आप?
0: तो उनसे भी तो वही कहना है, नशा मत करो, वातावरण अच्छा बनाओ, परिवार अच्छा बनाओ, आगे की पीढ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हमारा देश भारत वर्ष अच्छा होगा। उत्तराखंड देव भूमि को मैं यही कहती हूँ कि महान बनाना है, जब सब लोग परिवार परिवार में, गांव में, इलाके में सब अच्छे होंगे, अच्छे व्यवहार वाले होंगे और अच्छा वातावरण होगा तो सब खुश रहेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।
0: आपको भी धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य करने वाली तथा पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी के साथ बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे राकेश पंत। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और हम आपको सुनवा रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, और आप सुन रहे थे आज गीतकार सैयद कादरी के लिखे कुछ गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म बागी 2 का ये गीत जुबिन नौटियाल की आवाज में, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
4: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444-99 या 1800-345-4060 पर।
3: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

उदित नारायण के आवाज में गाए फिल्म साया के इस गीत के साथ ही सुनाओ हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी, और खेती गृहस्थी में आज आपके साथ होंगे कमलेंदु महतो।

सभी कृषक भाई बहनों को कमलेंदु का सप्रेम जोहार एवं आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे और कुशल मंगल होंगे। पर्व त्योहारों का सिलसिला लगा हुआ है और किसान भाई बहने हर्षोल्लास के साथ मना भी रहे हैं, खुशी के साथ मनोरंजन भी हो जाता है, साथ ही विभिन्न प्रकार के सब्जियों की बागवानी तथा इसके लिए पौधों का नर्सरी भी तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि खाली पड़े खेतों में या फिर धान कटाई के पश्चात तुरंत मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी आदि की खेती तुरंत आरंभ करने वाले हैं। इसके लिए किसान भाई बहनों अच्छे किस्मों के हाइब्रिड बीजों को ला करके बेड बनाकर या फिर क्यारी बनाकर नर्सरी या ट्रे में अच्छी तरह से बीजों को डालकर बनाए जाते हैं, जो कि लगभग 20 से 25 दिनों में खेतों में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पौधे लगभग 3-4 इंच लंबाई के हो जाएं, तभी लगाने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। बीजों को ज़्यादा घना ना गिराएं, ऐसे में पौधे बहुत पतले हो जाते हैं और बढ़ते नहीं हैं। नर्सरी में पौध निर्माण के समय बेड यानी क्यारी में चींटी से बचाने वाले पाउडर गैमेक्सिन, बेविस्टिन आदि का छिड़काव जरूर करें, जिससे चींटी मर जाएंगे या फिर वहाँ रहेंगे नहीं, चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। कभी कभी देखा जाता है कि बीज गिराने के पश्चात कुछ समय पश्चात ही या फिर कुछ दिनों के बाद चींटी आ जाते हैं और सभी बीजों को लेकर भाग जाते हैं या फिर कुतर कर खराब कर देते हैं। इसलिए इनसे बचाने के लिए और सही जर्मिनेशन के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसे पाउडर या फिर राख आदि का व्यवहार करें और इसके पश्चात नमी रहते हुए ही बीजों को गिराएं ताकि अच्छी तरह से अंकुरित हो। समय के अनुसार ज़्यादा बारिश हो तो फिर आप ऊपर से पुआल ढक सकते हैं या फिर प्लास्टिक कुछ देर के लिए ढक दें, ताकि तेज पानी के बौछार से बीज कहीं बह ना जाए। इसके बाद आप देखते हैं जो भी पौधे निकल रहे हों तो आप पुआल को उससे थोड़ा बहुत हटा सकते हैं या फिर रहने देने से भी कोई खराब नहीं हो। तो किसान भाई बहनों, इस तरह से आप कोई भी सब्जी हो, बैंगन, मिर्च, टमाटर, गोभी या और भी जो भी लगाने वाली पौधे हैं, इससे आप अपने क्यारियों में, ट्रे में, गमलों में तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक के कुछ ट्रे बने हुए हैं जो कप जैसे छोटे छोटे आकार के होते हैं, उसमें महीन कोकोपीट या फिर अन्य जैविक खाद, गोबर खाद महीन रूप से आप इसमें डाल करके इसमें उगा सकते हैं, जो कि अपने घर आंगन में अच्छी तरह से उग सकते हैं और इसमें आप सही तापमान दे पाएंगे, कभी अंदर बाहर करने में भी सुविधा होता है। इसीलिए पौधों की तैयारी के लिए आप कुछ खास बातों को ध्यान दें, तभी आपका बीज भी और आपका जो मेहनत या पैसा बेकार नहीं जाएगा। तो इस तरह से किसान भाई बहनों, हम अपने सब्जी बीजों की नर्सरी के लिए हम तैयार कर सकते हैं। और किसान भाई बहनों, हर बार की तरह आज भी हमारे बीच में हैं उड़िया लोकगीत के साथ सुरभि पान एवं साथियों के स्वर में हम सुनते हैं ये उड़िया लोकगीत।

0: अभी हम उड़िया लोकगीत का आनंद ले रहे थे। अब आइए, हमारे बीच में हैं एक युवा कृषक जो कि 12 महीने कुछ ना कुछ खेतीबाड़ी करते रहते हैं, सब्जी और अन्य फसलों की। पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती कैसे करें, इस विषय को लेकर के हमारे बीच में हैं भूपति सिंह मुंडा जी। तो आइए मिलते हैं और विस्तृत जानकारी लेते हैं। किसान भाई बहनों, आज हमारे बीच में है एक प्रबुद्ध कृषक और इन्होंने फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देते हैं, क्योंकि कई वर्षों से करते आ रहे हैं। आज हमारे बीच में है भूपति सिंह मुंडा जी, तो हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप जो फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती हर साल करते हैं, तो फिर इनके बीजों को क्यारी में किस तरह से छिड़कते हैं और कैसे तैयारी करते हैं, मैंने क्यारी सब?
1: पहले तो पौधा उगाना पड़ता है,
0: हाँ
1: 10-15 दिन के बाद उगता है, उसके बाद क्यारी में लगाते हैं।
0: अच्छा,
1: पूरा मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं और लगाते हैं दो फीट जैसे
0: बीच बीच में, मैंने दूरी रखते हैं
1: जी, ताकि कोई सुविधा ना हो।
0: हाँ, मैंने पौधों को बढ़ने के लिए थोड़ा सा दूरी बना के लगाना पड़ता है ना
1: जी।
0: अच्छा, तो फिर इसमें शुरुआत में जो लगाते हैं तो खेत का जुताई तो कर लेते होंगे, क्या चीज़ से करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह ना, हल से?
1: पहले ट्रैक्टर से करते हैं।
0: अच्छा,
1: रोटावेटर से?
0: ओ, पूरा महीन कर देते हैं ना
1: जी,
0: और उसमें समतल कर देते हैं बढ़िया से
1: जी, उसके बाद पौधा लगाते हैं, पानी पटाते हैं।
0: हाँ, तो ऐसे नाली वगैरह भी शुरू में ही बना देते हैं कि बाद में बनता है?
1: पहले
0: से ही बना देते हैं तो सुविधा होता है पानी पटाने में ना
1: जी।
0: अच्छा, तो लगाते समय क्या कोई खाद वगैरह भी देते हैं कि ऐसे ही गोबर खाद या फिर रासायनिक खाद, क्या देते हैं?
1: पहले तो गोबर खाद देना पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: बाद में जैविक खाद।
0: हाँ, जैविक खाद भी बहुत अच्छा चीज़ है,
1: ताकि मिट्टी को ज़्यादा दिन तक
0: हाँ उपजाऊ बनाए रखे
1: जी।
0: अच्छा, ये फूल गोभी और बंधा गोभी में कैसे पहचान होता है कि ये बंधा गोभी है कि, मैंने पत्ता थोड़ा सा अलग अलग दिखता है क्या
1: जी? फूल गोभी फूल होता है और पत्ता गोभी तो पूरा पत्ता।
0: हाँ हाँ, उसका मैंने पत्ता गोल दिखता है ना
1: जी।
0: छोटा समय में जब लगाते होंगे तो थोड़ा पहचान में आता है कि ये फूल गोभी है कि पत्ता गोभी है?
1: आता है, दोनों का पत्ता थोड़ा अलग रहता है।
0: अच्छा अच्छा, हाँ, और अलग अलग क्यारी में मैंने जब इसका नर्सरी भी तैयार करते हैं ना
1: जी।
0: अच्छा, तो ये सब अच्छी तरह से मोटा होने के लिए, पौधा मजबूत करने के लिए क्या कोड़ाई के समय फिर से एक बार खाद देते हैं?
1: देते हैं जल्दी बड़े बोल के, कभी कभी यूरिया DAP देते हैं, लेकिन उतना यूज नहीं करते हैं।
0: हाँ,
1: अभी तो गोबर खाद ज़्यादा देते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब लगाने के बाद कम से कम कितना, 2.5 महीना 3 महीना तो लग जाता होगा क्या
1: जी?
0: अच्छा, तो फूलगोभी में आप लोग कैसे, मैंने पूरा नीचे से ही काट के बेचते हैं कि उसका कुछ पत्ता भी अलग से मैंने बेचना होता है?
1: फूल गोभी का तो पत्ता भी अलग करना पड़ता है,
0: फूल गोभी अलग से बेचते हैं ना
1: जी।
0: और ये सब क्या पूरा बड़ा बड़ा साइज होने के बाद ही काटते हैं कि ऐसे मीडियम साइज का ही समय में काट देते हैं?
1: मीडियम साइज में, ताकि सब अच्छा दिखे।
0: अच्छा, मैंने हरा भरा दिखना चाहिए ज़्यादा, मैंने फटना भी नहीं चाहिए नहीं
1: जी।
0: जो आसपास में कैसे आप लोग ऐसे साइज के अनुसार बेचते हैं कि वजन से बेचते हैं?
1: साइज के अनुसार।
0: अच्छा, मैंने ज़्यादा बाजार में निकलता होगा तो दाम तो घट जाता है क्या
1: जी?
0: तो समय पर निकलने से अच्छा मिलता है इसका रेट बाजार में?
1: मिलता है, दूसरों किसानों से पहले लगाते हैं।
0: हाँ, उन लोग से पहले लगाना होगा। अच्छा अच्छा, तो आपके बाजार में क्या आसपास में कोई बाजार ही है कि और भी गुदड़ी बाजार सब में चाहे कोई व्यापारी वगैरह आते हैं लेने के लिए?
1: हाँ, बाजार तो संडे को लगता है, लेकिन चौक रोज लगता है।
0: हाँ, मैंने गाँव देहात में लगता ही
1: जी,
0: उस समय भी थोड़ा बहुत बिक्री हो जाता है
1: जी।
0: अच्छा, खेत में और कुछ जगह खाली भी है, क्यारी बना रहे हैं, तो उस समय क्या कोई साग सब्जी या फिर क्या चीज़ लगाने का तैयारी कर रहे हैं?
1: हाँ, पालक साग सब।
0: अच्छा, ये सब। हाँ, ये तो ठंडा समय में बहुत अच्छा होता भी है, तो उसके अलावा फिर वही भाजी साग सब्जी तो लाल वाला हरा वाला ये सब रहता है ना
1: जी,
0: तो ये सब भी बाजार में अच्छी तरह से बिक्री हो जाता है?
1: होता है।
0: हाँ, साग वगैरह तो प्राय सभी को ही पसंद करते हैं और लेते भी हैं नहीं
1: जी।
0: तो ये सब क्या मुठ्ठी वगैरह बांध करके ऐसे बेचते होंगे अंदाज से क्या
1: जी? सभी को बांध के।
0: हाँ हाँ। अच्छा, ये बीज सब कहाँ से लाते होंगे, मैंने ऐसे आसपास का बाजार में मिल जाता है कि कहीं दूर से लाना पड़ता है?
1: दूर से लाना पड़ता है, ताकि कोई परेशानी ना
0: हो, अच्छा बीज हो ना।
1: हाँ।
0: तो उन्नत किस्म का जो हाइब्रिड वाला है कि ऐसे देसी वाला, किस तरह का ये बीज है?
1: हाइब्रिड लाना पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: अच्छा क्वालिटी का रहता है।
0: हाँ हाँ, मैंने पौधा भी अच्छा होता है और मैंने मरता भी नहीं है, सब पौधा निकलता भी है ना
1: जी। एक पौधा में बहुत ज्यादा फल देता है।
0: अच्छा अच्छा, हाँ मैंने सही साइज का भी होता है क्या
1: जी?
0: तो इसमें तो ज्यादा दाम लगता होगा ना हाइब्रिड
1: लगता है, क्वालिटी का लाना पड़ता है ना।
0: हाँ हाँ, मैंने कम क्षेत्र में लगाते हैं लेकिन ज्यादा मात्रा में ये निकलता भी है क्या
1: जी?
0: तो फिर जैसे आसपास में जो और किसान लोग लगाते हैं, सभी कोई गोभी लगाएंगे या फिर एक ही जैसा लगाएंगे तो बाजार में तो दर घटता है, तो क्या आप थोड़ा सा पहले लगाते हैं कि उसके बाद लगाते हैं मौका देख के?
1: मौका देख के लगाना पड़ता है उन लोग से आगे।
0: अच्छा अच्छा,
1: ताकि रेट थोड़ा ज़्यादा रहे।
0: हाँ, अगर सभी कोई एक जैसा लगाते हैं तो फिर आप थोड़ा दूसरा किस्म का सब्जी भी लगाते होंगे ना?
1: लगाते हैं।
0: अच्छा, फिर आगे बताइए, जैसे कि आप पूरे खेत में लगा रहे हैं तो पूरे खेत में लगाते लगाते एक अंदाज तो होता होगा इसमें कितना हजार तक लगा चुके हैं अभी तक में गोभी का?
1: गोभी 3 से 4 हजार तक का होगा।
0: अच्छा, अभी और भी लगाने का बाकी है ना
1: जी, बचा हुआ है।
0: अच्छा अच्छा, मैंने अभी उतना जल्दी तो एक ही दिन में लगाना मुश्किल है, तो इस सब में क्या और कुछ लेबर वगैरह लगाते हैं मैंने काम करने के लिए कि परिवार वाले साथ देते हैं?
1: परिवार वाले साथ देते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: मिल के करते हैं।
0: हाँ, शुरुआती दौर में क्या पानी डालना पड़ता है कि नमी रहने से तो नहीं डालते होंगे
1: जी?
0: अच्छा, तो पहले ही पटा देते हैं कि उन्हें लगाने के बाद सब थोड़ा सा पानी देते हैं?
1: पहले थोड़ा पटाते हैं।
0: अच्छा, थोड़ा नमी रहना चाहिए ना
1: जी,
0: ताकि जल्दी हाँ पौधा नहीं मरेगा
1: जी।
0: अच्छा अच्छा, हाँ तो ये ज़्यादा धूप में क्या मैंने मुरझा जाता है कि कुछ ढकना पड़ता है कि ऐसे ही मैंने थोड़ा सा सिंचाई करने से काम हो जाता है?
1: थोड़ा सा तो ढकना पड़ता है, नहीं तो धूप
0: छोटा पौधा में ना
1: जी।
0: अच्छा अच्छा, अच्छा तो किस तरह का मिट्टी चाहिए इसमें? बलुआही मिट्टी में हो जाता है कि कोई भी मिट्टी में हो जाता है लगभग?
1: बलुआही मिट्टी में

0: सुविधा, पानी तो बचाना ही चाहिए। अच्छा, सिंचाई के लिए और घर में क्या सुविधा है, मैंने टुलू पंप है कि पेट्रोल पंप है कि क्या चीज सब है?
1: हाँ, टुलू एक है।
0: अच्छा अच्छा, उसी से मैंने बिजली रहने से पटाते हैं ना
1: जी।
0: और आसपास में और सिंचाई के लिए कोई पेट्रोल से चलने वाला सब नहीं है क्या?
1: होगा दूसरों किसानों के पास।
0: अच्छा हाँ, लाइन नहीं रहने से उसको भी लाते हैं,
1: सुविधा होता है।
0: तो आपके अलावा जैसे और भी जो जैसे बेकार सब बहुत कोई ऐसे खाली पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, तो उस सब भी कुछ खेती बारी में ध्यान देते हैं कि उतना ध्यान नहीं दे रहा आजकल?
1: कुछ लोग ध्यान देते, कुछ लोग तो नहीं।
0: अच्छा अच्छा, आलसी हो जाते हैं ना
1: जी।
0: अच्छा, तो मतलब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तभी ना कुछ अपना परिवार के लिए चाहे अपने लिए भी थोड़ा सा सुविधा होगा क्या?
1: हाँ, बिना काम किए तो कैसे परिवार चलेगा।
0: हाँ,
1: काम करना पड़ता है।
0: अच्छा, आपके यहाँ जैसे फूल गोभी और बंधा गोभी जो लगाते हैं, तो इसके अलावा ब्रोंकली जो होता है हरा रंग का या फिर कभी कभी गुलाबी रंग का भी होता है, बहुत पौष्टिक होता है, वो सब ऐसे नए बीजों को शुरुआत नहीं किए हैं कि लगाने का कुछ सोचते हैं? उस सब
1: सोचते हैं।
0: तो सब बीज सब मिलता है कि नहीं आसपास में?
1: दूर जाना पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा, मैंने हर कोई नहीं रखते होंगे
1: जी, क्वालिटी का रहता है ना।
0: हाँ हाँ, अगर ला करके बीज अगर नहीं रख बिक्री हुआ तो फिर उसका भी घाटा हो जाता होगा ना
1: जी, इसीलिए इतना नहीं लाते हैं।
0: अच्छा, तो फिर आसपास में देखते हैं कि बहुत लोग गाय बकरी और पशुपालन करते हैं, तो सबका झुंड आ जाने से तो आपको बर्बाद कर देगा, तो घेरान उरान सबका कैसे करते हैं?
1: घेरान उरान तो पहले में सुविधा किए रहते हैं, बांस काट के पूरा लगा देते हैं।
0: अच्छा,
1: चारों कोना।
0: अच्छा, लगाने के पहले ही बांस सही साइज में आप कांटी से टोक के पूरा एकदम बंद कर देते हैं ना
1: जी, ताकि बैल वैल बकरी
0: नहीं घुस सके,
1: नहीं तो फसल बर्बाद कर देगा।
0: हाँ, सही बात है। तो क्या देखभाल के लिए भी दिन भर रहना पड़ता है ना, कोई ना कोई रहते हैं?
1: कोई ना कोई रहते हैं।
0: अच्छा, मैंने गेट बना दिए हैं, दरवाजा बंद रहता है तो सुरक्षित रहता है ना
1: जी।
0: अच्छा अच्छा, हाँ, मैंने कभी बाजार गए या फिर कहीं दुकान गए तो परिवार वाले साथ देते हैं ना
1: जी।
0: अच्छा अच्छा, तो आगे जैसे कि बहुत के किसान लोग अपना खेती बाड़ी को बढ़ाने के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो ऐसा भी खेती बाड़ी के लिए आप कुछ लिए हैं क्या बैंक तरफ से?
1: हाँ, लोन लिए थे।
0: अच्छा अच्छा, मैंने इसी से थोड़ा सा सुविधा भी हुआ और कुछ लाने के लिए खर्च भी मिल गया ना
1: जी।
0: तो इस सब का बैंक लोन से मैंने आपको कैसा लगता है, मैंने बीच बीच में उसको पैसा चुकाते रहते हैं कि सब खा पी के ख़त्म हो रहा है?
1: नहीं, जमा करके रखते हैं और एक साथ दे देते हैं।
0: अच्छा अच्छा, हाँ, अगर फसल अच्छी हुई और अच्छा पैसा मिला तो समय समय पर बैंकों को लौटाना भी जरूरी है ना
1: जी, नहीं तो वो लोन तो अगले बार से नहीं देगा।
0: हाँ, बात तो सही है। तो बैंकों के जो भी ऋण लेते हैं उसका सही यूज होना चाहिए, सही उपयोग होने से बैंक भी मैंने आपको आने वाले दिन में देने के लिए तैयार रहता है ना
1: जी।
0: तो और आपके जो क्षेत्र में सिंचाई के लिए कोई नदी तालाब या कोई मशीन वगैरह का सुविधा है क्या? और सब
1: होगा, एक तालाब होगा।
0: अच्छा सामने। तो वहाँ से तो आपका तो खेत तो दूर है, तो फिर लंबा पाइप लगाना पड़ता है नहीं
1: जी?
0: अच्छा,
1: लेकिन ज़्यादातर नदी से पटाते हैं पानी।
0: अच्छा, नदी किनारे है इसलिए नदी से सुविधा होता है
1: जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: खेतों को धान नहीं रोपते हैं, ज़्यादातर खेती करते हैं उसमें।
0: अच्छा हाँ, धान में तो उतना ज़्यादा तो फायदा नहीं है शायद
1: जी,
0: सब्जी खेती में ज़्यादा होता होगा।
1: सब्जी खेती तो साल भर कुछ ना कुछ लगाते हैं।
0: हाँ हाँ, एक के बाद एक मैंने कुछ ना कुछ होते रहता है
1: जी।
0: अच्छा, तो ये सब्जी खेती में मैंने धान के अपेक्षा ज़्यादा लाभ है ना
1: जी, दोनों तरफ से फायदा।
0: अच्छा अच्छा, तो आपने हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जवाहर
1: जवाहर।
2: इस मुलाकात के पश्चात आपके लिए एक जरूरी संदेश।
3: क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले

0: से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुन्दर का जल स्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई।
1: इस संदेश के पश्चात किसान भाई बहनों, आइए हम मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक मुंडारी लोकगीत दुराय मुंडा एवं साथियों के स्वर में।

0: और इसी लोकगीत के साथ ही आज का खेती गृहस्थी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब कमलेंदु को विदा दें, सभी को पुनः एक बार जोहार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। मुख्य समाचार के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर सियासी बयानबाजी के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यह प्रक्रिया किसी राजनीतिक दल के हित या नुकसान के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि मृत, स्थानांतरित और एक से अधिक जगह दर्ज मतदाताओं के नाम की पहचान कर मतदाता सूची को दुरुस्त करना जरूरी है। साहिबगंज जिले में मेरा युवा भारत की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि और युवा का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवाओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। सहायक चंदन कुमार ने युवाओं को एकात्म मानववाद, अंत्योदय, सेवा और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के उनके विचारों की जानकारी दी। मौर्य एक्सप्रेस आज से 2 अक्टूबर तक परिवर्तित मार्ग से दुमका होकर चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 15027 संबलपुर गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस जयसिडी, देवघर, दुमका, भागलपुर, मुंगेर और बरौनी होकर गोरखपुर जाएगी। वापसी में 15028 गोरखपुर संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस भी इसी परिवर्तित मार्ग से दुमका होकर चलेगी। दुमका के सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ने PG सेमेस्टर 1 सत्र 2025-27 का परीक्षा फल जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल 3652 विद्यार्थियों में 90.74% परीक्षार्थी सफल रहे। विश्वविद्यालय के निदेशक जनसंपर्क डॉ. राजीव रंजन सिन्हा ने परीक्षा फल जारी होने की जानकारी दी। राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद कर उनके वास्तविक धारकों को लौटाए हैं। लोहरदगा में ऑपरेशन भरोसा के तहत 12, पलामू में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 97 और हजारीबाग में 39 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस ने लोगों से मोबाइल गुम या चोरी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:00 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम हो आंकड़ा।

0: ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱠᱚ ᱧᱩ ᱛᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ, ᱮᱥᱚ ᱨᱟᱥᱟᱱ ᱜᱮᱠᱚ ᱞᱚᱞᱚ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱤᱱᱟᱹᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱮᱥᱯᱨᱮ ᱛᱩᱨᱟᱹᱝ ᱵᱮᱱ ᱮᱢᱟ ᱞᱤᱧᱟ ᱥᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱮᱱ ᱮᱢᱟ ᱞᱤᱧᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱮ
1: ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱧ ᱫᱟᱭ ᱟᱡᱟᱜ ᱫᱩᱠᱷᱩ ᱥᱩᱠᱷᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱞᱟᱱᱰᱤ ᱯᱟᱹᱱᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱧ ᱫᱟᱭ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱩᱲᱤᱧᱮ ᱛᱤᱧ ᱪᱷᱟᱵᱮ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱹᱧ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱹᱧ ᱫᱟᱭ ᱱᱮᱸᱰᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱞᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱱ ᱪᱮᱨ ᱜᱮᱞᱮᱭᱟ
0: ᱟᱭᱟ
1: ᱱᱮᱸᱰᱮ ᱡᱟᱸᱡᱟᱴ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱫᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱠᱚᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱹᱵᱤᱱᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱥᱵᱟᱹᱱᱤ ᱠᱚ ᱱᱩ ᱡᱚᱢᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱨᱟᱱ ᱥᱟᱛᱮᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱨᱟᱱ ᱥᱟᱛᱮ ᱟᱠᱚᱞᱚᱧ ᱵᱚᱞᱚ ᱮᱱᱟ ᱛᱤᱧ ᱠᱟᱹᱧ ᱩᱱᱩᱢᱟᱹᱧ ᱩᱱᱩᱢ ᱵᱟᱹᱭ
0: ᱟᱭᱟ ᱮᱱᱰᱨᱮᱥᱮᱱ ᱵᱟᱦᱟ ᱨᱮᱫᱚ
1: ᱥᱮᱱ ᱵᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱮᱥᱤᱱ ᱨᱟᱥᱟᱣᱟ
0: ᱟᱭᱟ
1: ᱥᱟᱵᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚᱧ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱤᱧ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱮᱱ ᱛᱟᱹᱧ ᱮᱥᱤᱱ ᱨᱟᱥᱛᱮ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱨᱟᱥᱛᱮ ᱜᱮᱧ ᱯᱳᱞᱴᱨᱤ ᱯᱷᱟᱨᱢ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱫᱤᱧ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱫᱟ
0: ᱟᱭᱟ ᱟᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱟᱜᱟᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱠᱚᱱᱟ ᱱᱟᱜ ᱭᱩᱵᱟ ᱵᱟᱨᱜᱮ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱯᱳᱞᱴᱨᱤ ᱯᱷᱟᱨᱢ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱠᱮᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱟᱵᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱜᱮᱵᱚ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱟᱣ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱚ ᱨᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱥᱩᱢᱮᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱱᱟ ᱢᱟᱥᱩᱨᱤ ᱵᱚ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱟᱵᱚ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱮᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱮᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱛᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨ ᱫᱚᱵᱮᱱ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱭᱟ
1: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱠᱟᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱥᱟ ᱟᱨ ᱫᱚᱞᱤᱧ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱞᱤᱧ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱚ ᱡᱚ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱞᱤᱧ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱫᱟᱵᱟᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱛᱟᱹᱜ ᱥᱟᱵᱤᱱᱮ ᱤᱱᱴᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱱ ᱞᱳᱠᱟᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱟᱢᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱫᱟᱵᱟᱭ ᱠᱚ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱛᱚ ᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱥᱩᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱡᱮᱜᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱜᱟᱹᱜᱨᱤ ᱵᱟᱞᱟ ᱢᱩᱰᱟᱹᱧ ᱡᱮᱜᱟ ᱠᱟᱹᱭᱱᱟ ᱱᱤᱢᱤᱱᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱭᱟᱹ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱜᱟᱹᱜᱨᱤ ᱨᱮ
1: ᱜᱟᱹᱜᱨᱤ ᱨᱮ
0: ᱴᱚᱱᱴᱚ ᱜᱟᱹᱜᱨᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ
1: ᱴᱚᱱᱴᱚ ᱜᱟᱹᱜᱨᱤ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱤᱱᱤ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱱᱤᱛᱟᱹᱜ ᱯᱩᱞᱮ ᱵᱟᱭᱛᱮᱱ ᱛᱮ ᱨᱤᱧ ᱞᱮᱯᱮᱞ ᱮᱱᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱧ ᱥᱟᱵᱤᱧ ᱫᱟᱵᱟᱣ ᱠᱚᱫᱚᱧ ᱡᱟᱜᱟᱨᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱱᱤᱢᱤᱞᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱠᱚ ᱟᱭᱳ ᱱᱤᱢᱤᱱᱮ ᱟᱱᱛᱨᱟᱝ ᱫᱮᱜᱮᱧ ᱜᱮᱢ ᱡᱚᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱮᱞ ᱫᱮᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱪᱤᱞᱠᱩ ᱪᱷᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱤᱧ ᱮᱛᱚ ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱥᱮᱜᱮᱧ ᱫᱮᱜᱟ ᱠᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱚ ᱨᱮᱴ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱤ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱳᱱ ᱛᱮ ᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱟᱪᱷᱟ
0: ᱟᱭᱟ ᱟᱭᱟ
1: ᱛᱚ ᱯᱷᱳᱱ ᱠᱚᱛᱮ ᱜᱮ ᱠᱩᱞᱤᱧᱟ ᱱᱮᱞᱠᱟ ᱤᱱᱠᱟ ᱢᱟᱠᱢᱟᱧ ᱛᱮᱭᱟ ᱟᱭᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱮᱢᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱮᱱᱟ ᱟᱭᱳ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱧᱮ ᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱟᱭᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱭᱟ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱩᱫᱩᱵᱟᱹᱭ ᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚ
1: ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ
0: ᱱᱟ ᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱟᱹᱥᱩᱞ
1: ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ
0: ᱟᱭᱟ ᱮᱱᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱯᱚᱛᱚ ᱛᱮᱭᱟ ᱮᱥᱩ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱭᱟ
1: ᱛᱮᱱᱤ ᱟᱹᱧ ᱛᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱟᱹᱧ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱟᱭᱮ ᱱᱮᱞᱠᱟ ᱤᱱᱠᱟ ᱱᱟ ᱵᱩᱥᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱜᱤᱞᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱤᱝᱠᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱜᱤᱞᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱭᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱᱤᱧ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱤᱧ ᱫᱚᱧ ᱮᱛᱚ ᱠᱤᱭᱟᱹ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱛᱚ ᱠᱮᱫ ᱵᱟᱫ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱩᱡᱩ ᱜᱮᱭᱟ ᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱟᱠᱷᱤᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱱᱚᱜ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱪᱷᱤ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱟᱜ ᱱᱮᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱟᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱮ ᱠᱚᱛᱮ ᱯᱷᱤᱨ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱤᱥᱮ ᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱮᱱ ᱥᱟᱯᱟᱭ ᱞᱮᱭᱟ ᱥᱟᱯᱟ ᱥᱩᱛᱨᱟᱹ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ
1: ᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱯᱟ ᱨᱮᱸᱜᱟᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱮᱱᱯᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱟᱹᱜᱩ ᱵᱤᱛᱟᱹ ᱵᱟ ᱪᱟᱯᱤ ᱨᱮᱸᱜᱟᱭᱟ ᱞᱤᱧ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱱᱮᱱ ᱵᱩᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱟᱛᱚᱢ ᱞᱮᱭᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱ
1: ᱤᱭᱟᱹ ᱱᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤ ᱮᱠ ᱯᱞᱚᱴ ᱪᱟᱵᱮᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱥᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱥᱟᱯᱟ ᱨᱮᱸᱜᱟ ᱞᱮᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱠᱚ ᱞᱤᱧ ᱰᱟᱞᱟᱣᱟ ᱪᱟᱯᱤᱭ ᱛᱮᱱ ᱢᱩᱥᱤᱧ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱢᱮᱱ ᱪᱟᱨᱟᱢ ᱦᱟᱭᱰᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱮᱱᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱞᱤᱧ ᱮᱥᱯᱨᱮᱭᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱟᱭᱰᱮᱱ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱮᱥᱯᱨᱮᱭᱟ
1: ᱡᱟᱭᱞᱚ ᱡᱟᱭᱞᱚ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱮᱥᱯᱨᱮᱭᱟ
0: ᱡᱟᱭᱞᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱨᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ
1: ᱨᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱛᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱢᱮᱰᱤᱥᱤᱱ ᱠᱚ ᱠᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
0: ᱟᱭᱟ ᱟᱭᱟ
1: ᱠᱚ ᱠᱤᱲᱮ ᱠᱚ
0: ᱠᱤᱲᱮ ᱠᱚ ᱡᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ
1: ᱜᱚᱭ ᱨᱟᱸᱜᱟ ᱠᱚ
0: ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱮᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱤᱭᱟ ᱮᱱᱟ ᱛᱮᱞᱚ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱵᱟᱫ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱵᱮᱱ ᱟᱜᱩᱨ ᱠᱚ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱮᱱ ᱥᱤᱢᱚᱱ ᱠᱚ ᱫᱚ
1: ᱭᱟ ᱥᱯᱨᱮ ᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱛ ᱵᱟᱨ ᱞᱤᱧ ᱞᱤᱠᱮ ᱭᱟ ᱥᱮᱴ ᱞᱤᱠ ᱜᱟᱞᱤᱧ ᱥᱟᱯᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱨᱮᱥᱴ ᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱚᱭᱟ
0: ᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱞᱮᱱᱚ ᱠᱟᱭᱟ
1: ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟᱣ ᱠᱟᱱ
0: ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱧ ᱛᱮ
1: ᱨᱚᱞᱮᱱᱚ ᱠᱟ
0: ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱛᱚ ᱵᱚ
1: ᱭᱟ ᱮᱱᱟ
0: ᱟᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱥ ᱵᱟᱹᱲᱤᱧ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱵᱮᱱ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱮᱱᱫᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱢᱤᱱ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱵᱮᱱ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱹᱱᱤ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱯᱟᱭᱛᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱠᱮ ᱮᱥ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱷᱚᱱᱱᱚᱵᱟᱫ ᱚᱸᱰᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱤᱧ ᱯᱮ ᱛᱮᱭᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
2: क्या आप तनाव चिंता उदासी मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं याद रखिए आप अकेले नहीं हैं मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697 टोल फ्री नंबर 1-44-99 या 1-800-345-4060 पर
3: समय पर मदद लें स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
0: निन बेप्टा जगर चनम कार्यक्रम रे तुम्बुपेरे मियन आंधी दुरेंग आयु मिचे बिना

जय हिंद बच्चों। आज की नन्ही दुनिया सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को अंजु दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, तो आप बिना वजह बारिश में आपको नहीं भींगना है, स्कूल तो जाना ही है, पढ़ना है, तो क्या करना है, स्कूल जाते समय छाता लगा के जाना या फिर बरसाती पहन के जाना है ताकि आप ना भींगो, स्वस्थ रहो, है ना। तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज भी हम लोग कुछ नया सीखते हैं। आज बहुत ही खास दिन है बच्चों, चलिए हम लोग जानकारी लेते हैं। हाँ, भारत में बच्चों ऐसे कई दिवस हैं जिनके पीछे किसी विचार, व्यक्तित्व या फिर हमारे समाज को जोड़ने का या फिर आगे बढ़ाने का उद्देश्य से कोई दिवस मनाया जाता है। तो आज भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, आज भी अंत्योदय दिवस है। अंत्योदय दिवस भी ऐसा ही एक दिवस है जो समाज, जो हम सब जो रहते हैं समाज के उस व्यक्ति तक विकास या कल्याण का लाभ पहुँचाने के लिए है ये दिवस, जो सबसे पीछे यानी कि सबसे ज़्यादा उनको हमारी ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, बहुत ज़्यादा गरीब है ना, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों तक सारी व्यवस्थाएं पहुंचाने का आज का इस उद्देश्य से आज के दिवस को मनाया जाता है। हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। जानते हैं बच्चों क्यों? यह दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को उनकी 98वीं जयंती के अवसर पर इस दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया है। जैसा अभी मैंने बताया कि अंत्योदय शब्द का अगर हम जाने उसका अर्थ, तो अंतिम व्यक्ति का उदय यानी कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास और अवसरों का लाभ पहुंचाना। यह विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सामाजिक और आर्थिक चिंतन से जुड़ा है। सरकारी दस्तावेजों में उनके अंत्योदय दर्शन को अंतिम व्यक्ति के उत्थान और समाज के व्यापक कल्याण से जोड़ा गया है। अंत्योदय दिवस केवल किसी व्यक्ति की जयंती को याद करने का अवसर नहीं है बच्चों, बल्कि समान अवसर सबको, सबके लिए, सबको समान अवसर, सामाजिक कल्याण और ज़रूरतमंद लोगों को विकास के लाभ पहुंचाने जैसे विषयों पर चर्चा का भी अवसर देता है। इसीलिए सबको अवसर देना है, सबको लाभ पहुंचाना है, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था बच्चों। भारत सरकार के प्रकाशनों में उन्हें अर्थशास्त्री, शिक्षा, वेद, लेखा, हमको उनके लिखे हुए हम बहुत सारे पढ़ते हैं ना, लेखक और पत्रकार के रूप में भी जाना जाता है। 2014 में उनकी 98वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस घोषित किया गया। इसी दिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने कौशल विकास कार्यक्रम आजीविका स्किल्स को पुनर्गठित कर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के रूप में शुरू किया। तो हमने क्या जाना बच्चों? हमने जाना अंत्योदय दिवस के बारे में, ठीक है। हम कुछ कुछ इस तरह की बातें जानेंगे, उससे क्या होगा कि आप सीखिएगा। और हमने आज क्या सीखा कि दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर
16 को, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और जानेंगे बहुत सारी बातें। और उसके पहले क्या करेंगे, हम एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए।

0: ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं, याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, मदद के लिए संपर्क करें रिमपास कांके रांची।
4: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
3: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिमपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं, याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, मदद के लिए संपर्क करें रिमपास कांके रांची।
4: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1499 या 1800-345-4060 पर।
3: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिमपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: चलिए बच्चों, हम जानकारी लेते हैं मिशन वात्सल्य के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, या प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं, पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है, जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं,

0: आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ पढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी है तो जिला बाल संरक्षण निकाय 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण निकाय जिला उपायुक्त का कार्यालय 3रा तल्ला चैवासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण निकाय पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जन सूचना जारी। तो हमने क्या जाना बच्चों, मिशन वात्सल्य योजना के बारे में। चलिए आपके दोस्तों से कविता सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
1: तत्पति आप सभी के समक्ष कवि हृदय श्री अटल बिहारी वाजपेयी रचित प्रसिद्ध कविता दुनिया का इतिहास पूछता का सस्वर पाठ करने जा रहा हूँ। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वक्त उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा, शश्वत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, शश्वत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जबके मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, जबके मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद।
0: आपने सुना वेदांश दलपति से कविता। चलिए बच्चों, आप खेलते हैं, खेल में रुचि लेते हैं, तो क्या आपको पता है कि कौन सा खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, जिमनास्टिक में 8 खिलाड़ी, बास्केटबॉल 5 खिलाड़ी, नेटबॉल 7 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल 15 खिलाड़ी, टेनिस में 2 खिलाड़ी और बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको कौन सा खेल पसंद है? और जब आप खेलते हो बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि खेलना चाहिए। आप अभी बच्चे हो, आपका शरीर बढ़ रहा है और आपके स्वास्थ्य के लिए आपको खेल में जरूर रुचि लेनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी चाहिए, शरीर स्वस्थ रहता है, मन चुस्त दुरुस्त रहता है। आपको जो भी खेल अच्छा लगता है उसको जरूर खेलिए, है ना? तो चले एक बार और आपके दोस्त से कविता सुनते हैं। चलिए
2: नमस्ते, मेरा नाम अनन्या कुमारी है, मैं कक्षा 7वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को मैथिली शरण गुप्त जी की एक प्यारी सी कविता सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है, जल थल में

चलिए, आपने सुना बच्चों एक प्यारा सा कविता। चलिए, जैसे मैंने तभी कहा था ना, बारिश हो रही है तो आपको अपना ध्यान रखना है। तो जैसे बच्चों अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आपको बिजली के खंभों से दूर रहना है, हमेशा उबला हुआ पानी पीना है ना, और खुले वाला जैसे स्ट्रीट फूड आप लोग बहुत पसंद करते हैं अभी बिल्कुल भी नहीं खाना है ना। तो घर के आसपास जब पानी जमा हो जाता है तो उस सब को आपको ध्यान देना है, क्योंकि मच्छर पनपते हैं। आप जब भी सोते हो तो आपको मच्छरदानी लगा करके सोना है ना, और आपके गीले हाथों से कभी भी बिजली के सामानों को यानी कि स्विच बोर्ड को सबको नहीं छूना है, ठीक है। आप जब भी बाहर जाइए, जाने से पहले छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते पहने, हाँ, और पानी से भरे रास्तों या खुले जो मैन होल से बचे रहे हमेशा। आंधी तूफान या बिजली भारी जब भारी बारिश होती है उस दौरान बिजली माफ कीजिए पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे नहीं खड़ा होना है, ठीक है। और अभी जो मानसून में होने वाली बीमारियां हैं उनसे आपको बचना है, बाहर के खानों से। उससे क्या होता है कि आप बाहर का खाना खाते हैं तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, उल्टी हो जाता है, इन सब से आपको बचना है, ठीक है। चलिए, हमने बहुत सारी बातें सीखी और कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। चलिए।

बाप जी बच्चों, ये गीत आप पूरा नहीं सुन पा रहे हैं समय के अभाव के कारण, इसके लिए हमें खेद है। चलिए इसी के साथ आज का हमारा नन्ही दुनिया का ये

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नन्ही दुनिया। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय शाम के 6:55 होने वाले हैं। समाचारों के लिए और जिले में आजकल क्रिया आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं?
2: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
1: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
2: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
5: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
6: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
7: कंडो,
6: गर्भ निरोधक गोलियाँ,
8: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
9: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 100 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने की तैयारी। 600 चिकित्सकों की होगी जरूरत। स्वास्थ्य विभाग ने 10 दिनों में मांगा प्रस्ताव। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में हुई पेशी। 20 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 अक्टूबर को आरोप होंगे तय। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण मौर्य एक्सप्रेस के मार्ग में बदलाव। 2 अक्टूबर तक दुमका, देवघर और भागलपुर होकर चलेगी ट्रेन। राज्य में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। कई डैम के फाटक खोले गए। रांची में कई उड़ानें रद्द। केजी से 12वीं तक के स्कूल कल रहेंगे बंद। और एशियाई खेलों में भारत की पुरुष और महिला कबड्डी टीम फाइनल में पहुंची। दोनों स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगी मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विधानसभावार करीब 100 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में जिला अस्पताल से सीएचसी स्तर तक पदों के पुनर्गठन पर चर्चा हुई। सभी सिविल सर्जनों को उपलब्ध और आवश्यक पदों का आकलन कर 10 दिनों के भीतर प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया है। बैठक में बताया गया कि 100 सीएचसी को अपग्रेड करने के लिए करीब 600 चिकित्सकों की आवश्यकता होगी। साथ ही 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मियों के पदों का पुनर्गठन किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को पलामू जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। ईडी के 20 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के दौरान दिनेश गोप को मामले से संबंधित पुलिस दस्तावेज पेनड्राइव के जरिए उपलब्ध कराए गए। अदालत ने मामले में आरोप तय करने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। इस दिन दिनेश गोप, उनकी दोनों पत्नियों सहित 1.5 दर्जन से अधिक आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए यह प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। इसी कड़ी में हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।
1: पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं।
0: झारखंड के किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। गोड्डा जिले में किसानों ने बताया कि उनके बैंक खातों में समय पर राशि पहुंच रही है। इस राशि का उपयोग वे खेतीबाड़ी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में कर रहे हैं।
2: मैं बिहारी प्रसाद शाह, ग्राम बड़ासिंदरी। मैं पीएम किसान योजना का हमें बहुत सहयोग मिला। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, कारण कि फसल योजना में हमें लाभ मिला और मिलते रहेगा आने वाला समय में भी।
3: नाम यवा जयराम माथो। हम लोग किसान क्रेडिट पैसा मिलता है समय पे, खाद बीज का टोटल चीज हमको मिल जाता है। सब चीज सारी व्यवस्था हम लोग को मतलब दिक्कत नहीं होती है।
0: नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रांची के प्रोजेक्ट भवन में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और रूल्स 2025 पर विभागीय कार्यशाला आयोजित की गई। आईटी निदेशक माधवी मिश्रा ने कहा कि नागरिक भरोसे के साथ सरकार को अपना डेटा देते हैं, इसलिए डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। कार्यशाला में डेटा सुरक्षा, सहमति प्रबंधन और डेटा उल्लंघन से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मौर्य एक्सप्रेस आज से 2 अक्टूबर तक परिवर्तित मार्ग से दुमका होकर चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 15027 संबलपुर गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस जसीडीह देवघर दुमका भागलपुर मुंगेर और बरौनी होकर गोरखपुर जाएगी। वापसी में 15028 गोरखपुर संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस भी इसी परिवर्तित मार्ग से दुमका होकर चलेगी। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत रामगढ़ जिले के स्कूलों में सामूहिक गायन का आयोजन किया गया। सरस्वती विद्या मंदिर रामगढ़ के प्राचार्य प्रवीण ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और आज भी यह लोगों में राष्ट्र प्रेम श्रद्धा और समर्पण की भावना जागृत करता है।
4: हमारे स्वतंत्रता सेनानी उस वक्त जो अन्याय हो रहा था उस अन्याय के खिलाफ खड़े होना और हर एक के बातों में हर एक के मन में वंदे मातरम का घोष होना राष्ट्र प्रेम उसे अभी पुनः एक बार जागृत करने के लिए ये विद्या भारती के द्वारा वंदे मातरम का जय घोष हो रहा है। सभी ने 11 बजे सुबह में वंदे मातरम का जय घोष किया।
0: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर सियासी बयानबाजी के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यह प्रक्रिया किसी राजनीतिक दल के हित या नुकसान के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि मृत स्थानांतरित और एक से अधिक जगह दर्ज मतदाताओं के नाम की पहचान कर मतदाता सूची को दुरुस्त करना जरूरी है।
5: तो जब से राहुल गांधी चुनाव हारते जा रहे हैं तब से वो पहले कह रहे थे कि EVM में गड़बड़ हो रहा है, अब कह रहे हैं कि नहीं गणेश कुमार ही गड़बड़ कर रहे हैं।
6: क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी प्रत्येक बूथ में BLA2 नियुक्त करने का उन्होंने अधिकार दे रखा और BLO के साथ मिल करके वोटर लिस्ट का जो शुद्धिकरण करना है उसको करे। और BLA2 कहाँ के होते हैं? गाँव के ही होते हैं, उसी बूथ क्षेत्र के होते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो जानते हैं कि भाई कौन सही है कौन नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इसमें से कोई गड़बड़ी है।
0: हजारीबाग जिले में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिले में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। उपायुक्त हेमंत सत्ती ने समाहरणालय परिसर में 2 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और जनजीवन प्रभावित हुआ है। हजारीबाग में धुरधुरवा और बोकारो नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खूंटी में तजना कांची और कारो नदियां भी उफान पर हैं। बोकारो में गरगा डैम का 1 और तेनुघाट डैम के 6 फाटक खोले गए हैं। खराब मौसम के कारण आज रांची से कई उड़ान भरने वाली कई विमान सेवाएं रद्द की गई हैं। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए उपायुक्त ने रांची में KG से 12वीं तक के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया है। झारखंड की सब जूनियर और जूनियर बालक बालिका मलखंब टीम अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झांसी के लिए रवाना हो गई है। प्रतियोगिता झांसी में 27 से 29 सितंबर तक आयोजित होगी। एशियाई खेलों में भारत की पुरुष और महिला कबड्डी टीम फाइनल में पहुंच गई है। महिला टीम ने सेमीफाइनल में नेपाल को 48-24 से जबकि पुरुष टीम ने थाईलैंड को 66-28 से हराया। दोनों टीमें अब स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 100 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने की तैयारी, 600 चिकित्सकों की होगी जरूरत। स्वास्थ्य विभाग ने 10 दिनों में मांगा प्रस्ताव। PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में हुई पेशी। 20 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 अक्टूबर को आरोप होंगे तय। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण मौर्य एक्सप्रेस के मार्ग में बदलाव। 2 अक्टूबर तक दुमका देवघर और भागलपुर होकर चलेगी ट्रेन। राज्य में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। कई डैम के फाटक खोले गए। रांची में कई उड़ानें रद्द। KG से 12वीं तक के स्कूल कल रहेंगे बंद। और एशियाई खेलों में भारत की पुरुष और महिला कबड्डी टीम फाइनल में पहुंची। दोनों स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगी मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
8: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
7: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
8: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
7: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
9: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
10: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड जनहित में जारी।
11: माँ मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
12: नहीं तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
13: अरे अरे आप ये क्या कर रही हैं?
14: बढ़ती बच्ची किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
13: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
14: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
13: माहवारी प्रारंभ होती है,
14: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
13: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
10: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
15: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है जिले में आजकल।
16: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता।
1: देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्षों की सेवा, समर्पण एवं राष्ट्र निर्माण की यात्रा के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ जिला द्वारा पिछले दिनों सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि विश्व के रचयिता भगवान विश्वकर्मा एवं आधुनिक भारत के निर्माता नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिवस है। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है।
2: विश्व के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और नवीन भारत के रचयिता प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। उस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। एक महीने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चला रही है आज से लेकर के अक्टूबर तक में।
1: रक्तदान शिविर में 40वीं बार रक्तदान करने वाले संजीव कुमार ने बताया कि रक्तदान का नाम ही है रक्तदान महादान। यह दान करके हृदय में एक तसल्ली और सुकून मिलता है कि हमने समाज के लिए कुछ किया।
3: कहीं ना कहीं रक्तदान महादान करके हृदय में एक तसल्ली मिलता है कि हम आज कुछ समाज के लिए, हर वो व्यक्ति के लिए करने का एक प्रयास किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों में पहले गुजरात और फिर पूरे देश में सुशासन, विकास एवं जन कल्याण के क्षेत्र में व्यापक और गुणात्मक बदलाव से प्रेरणा लेकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के संयोजक के रूप में कार्यरत पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के रंजन सिंह फौजी ने पिछले दिनों प्रदेश के सभी जिलों में लोगों से आशीर्वाद का एक दिया जलाने के लिए प्रेरित किया।
4: हम लोग पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ झारखंड प्रदेश के सभी पूर्व सैनिक साथीगण, संपूर्ण झारखंड प्रदेश के सभी जिलों में हम लोगों ने सभी से आह्वान किया कि आज मोदी जी का जन्म खुशियों का है। उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में वन रैंक वन पेंशन को उन्होंने जो दिया, उससे हम लोग पूर्व सैनिकों जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। इसी खुशी हर्षोल्लास के साथ हम लोग सभी अपने अपने घरों में दीप जला के उनकी खुशी मना रहे हैं।
1: रामगढ़ के भुरकुंडा में पिछले दिनों सीसीएल द्वारा 40वीं जोनल माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता 2026 का आयोजन हुआ। भुरकुंडा कोलेरी के बांसगढ़ा भूमिगत खदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के साथ बाहरी कंपनी के टीमों समेत कुल 13 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले टीमों में सीसीएल की बड़का सयाल, अड़गड्डा, पिपरवार, हजारीबाग, रजरप्पा, कुजू, ढोरी, कथारा, बोकारो करगली, एनके, आम्रपाली, मगध और राजहरा के अलावा निजी क्षेत्र की दो टीमों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सीसीएल के इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख विकास कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य खदानों में दुर्घटना होने पर उससे अच्छे तरीके से निपट सके।
5: इस बार हमारा जो अंतर क्षेत्रीय खान बचाव प्रतियोगिता 2026 का 40वां आयोजन है, जिसे सीसीएल के द्वारा आयोजित किया गया है और उसमें कुल हमारे विभिन्न क्षेत्रों की 13 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से कि एक टीम हमारी एनसीएल है, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की टीम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और एक जेएमएस जॉय माइनिंग सर्विसेज सूर्य अंडरग्राउंड माइन एनके एरिया की उसकी भी एक टीम है। और इस कॉम्पिटिशन का उद्देश्य हमारा मुख्य रूप से होता है कि हम अपनी जानकारी को एक दूसरे को शेयर करें, प्लस अपने इमरजेंसी प्रिपेयरनेस को हम डेवलप करें, जिससे कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जब खदानों में कभी दुर्घटना हो जाए भूमिगत खदानों में, तो उससे हम बहुत ही अच्छी तरह से उससे निपट सकें।
1: कोयला खदानों में हादसे के दौरान त्वरित बचाव के मद्देनजर सीसीएल द्वारा आयोजित खान बचाव प्रतियोगिता देश के विकास में सहायक साबित हो रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
0: अभी आप सुन रहे थे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं हम लेकर हाजिर हैं आप सबों के फरमाइश पर आधारित यह कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं इस समय शाम के 7:16 हो चुके हैं। दिन भर की भागदौड़, कामकाज और जिम्मेदारियों के बाद अब समय है कुछ पल सुकून से रहने का, कुछ मीठी यादों और कुछ सदाबहार फिल्मी गीतों को सुनने का। इस समय मौसम अपने मिजाज पर है, कभी बादलों की आवाजाही, कभी हल्की बारिश और कभी ठंडी हवा। ऐसे मौसम में अगर साथ हो रेडियो और पुराने फिल्मी गीत तो शाम अपने आप श्रोताओं खास हो जाती है। और ऐसे ही गाने की फरमाइश की है ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, रमेश, अनु, बनमाली, सीत कुमारी और पूजा, बड़ा बाम्बो सुपाईसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, श्याम देव नायक, ग्राम कुड़ा से पोंडे बोईपाय, रेशनल बोईपाय, यशमति बोईपाय, कश्मीरा बोईपाय, मोनिका बोईपाय, सुनीता, मीनाक्षी बोईपाय और तारकेश्वर बहादा। इन सबों के फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

राजा मेहंदी अली खां का लिखा ये गीत आपने सुना मदन मोहन के धुन पर लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म मेरा साया से। श्रोताओं, बादल जब आसमान में छाते हैं तो हमारा मन भी जाने कितनी पुराने बातों पर उतर जाता है। इसलिए बरसात और पुराने गीतों का रिश्ता इतना गहरा है कि इसलिए आज की शाम आपके पास भी मैं कितनी पुरानी यादों को लेकर आई हूँ। और अच्छी यादें जिंदगी की वह पूंजी है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता दोस्तों। और इसी प्यार और अपनापन को लिए एक और खूबसूरत गीत सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहा है न्यू कॉलोनी निमडी चायबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना देवी, खुशबू खुशी, अभिषेक, अंशी, अंशु और अनीस, पुणे से पंकज बड़ोदे, आर्या आदि, बीटी बड़ोदे, चंद्र प्रभा बड़ोदे।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर फिल्म आप आए बहार आई इस गीत से। दोस्तों, संगीत की दुनिया भी कितनी अनोखी होती है। एक गीत हमें हंसाता है, दूसरा भावुक कर देता है और तीसरा जिंदगी को नए नज़रिए से देखने की प्रेरणा देता है। और हाँ श्रोताओं, शाम के इस समय संगीत सुनते हुए एक छोटी सी बात जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप घर से बाहर हैं और बारिश शुरू हो जाए तो सुरक्षित स्थान पर रुकना आपके लिए बेहतर होगा। जल्दबाजी में वाहन चलाना कभी भी सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए अपना ध्यान रखते हुए। और अब सुनिए हमारा कार्यक्रम का अगला गीत। और इस गीत की फरमाइश की है हमें माहौल डिहा सोनुआ से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रवि बारी बंदनी, दीपक संतोष, राहुल बिट्टू, आयुष गीतेश, अनु तनु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो, बड़ा बाम्बो जोडीहा गांव से मोइना महतो, डिम्पी महतो और राहुल महतो ने।

फिल्म का नाम था यादों की बारात और इस गीत को गाया था आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। और अब श्रोताओं, बारिश की फुहारों के साथ प्रेम की खुशबू से भरे और एक खूबसूरत गीत पेश है, जिसे सुनना चाहा है पीपरपारा पालचुआ छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन, वंशिका दिवाकर, और गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल राठौड़।

0: किशोर कुमार के स्वर में गाए फिल्म मंजिल के इस खूबसूरत गीत को श्रोताओं अभी आपने सुना।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: நாடு பாரதிய சேனா.
1: और इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में हम फिर से हाजिर हैं और आपको सुनवा रहे हैं आप सबों के पसंद पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, शाम का समय है परिवार के साथ बैठने और दिन भर की थकान को दूर करने का। अगर बारिश हो रही है तो कोशिश करें कि घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। ठहरे हुए पानी में मच्छर पनप सकते हैं, साथ ही पीने के पानी का भी स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें। और मौसम की इसी नमी में सुनते हैं और एक बेहद खूबसूरत गीत। फिल्म का नाम है मोहरा, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। जिसे सुनना चाहा है चांडिल हारूडी से तुलसी महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमोहिनी महतो, संगीता संतोषी और दीनबंधु महतो। चितलबाड़ी महाराष्ट्र से अमोल इंगले, सर्वेश अधीरा, आरव सारांश और समस्त राजवी परिवार।

इस खूबसूरत गीत के बाद श्रोताओं, हम ले चलते हैं आपको अपने कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। दोस्तों, कुछ गीतों में प्यार की ऐसी मासूमियत होती है जो आज भी उतनी ही ताज़ा महसूस होती है। रिश्तों की खूबसूरती केवल प्रेम में नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान में भी होती है। अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालना हमारे जीवन को खुशहाल बनाता है। और अब बारी है एक ऐसे गीत की जो आज भी सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। तो सुनिए किशोर कुमार का गाया फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गीत। और इस गीत को सुनना पसंद किया है खरसवां गांव दलाई किला से लक्ष्मण सोय, आयुष सोय, गीता सोय, सरिता सोय, सिनेमाई सोय, तनुजा सोय, बीमी सोय और मणि सोय। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश।

0: पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसी के साथ श्रोताओं, आप सबों के पसंद पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं संपन्न होता है। कुछ ही पलों में फिर हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम रजनीगंधा को लेकर।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और आप श्रोताओं हम लेकर हाजिर हैं आप सबों के फरमाइशी पर ये कार्यक्रम रजनीगंधा को लेकर। कार्यक्रम रजनीगंधा का पहला खत हमें मिला है सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर बेबी देवी नताशा विनोद कुमार पवन और मीना पवन का। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्ला फकीर डब्लू उल्ला फकीर परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से बदरू अली अंसारी फर्जू अली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। इन सबों के फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म जान की कसम का ये गीत। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में गीत लिखा था समीर ने, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और अब हमारे अगले गीत के फरमाइश करता हैं बड़ी बाजार चायबासा से मौजम बिहारी, समीमा खानम, जिम्मी बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी और नबीहा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक, इन सबों के फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म आंधी का ये गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में गुलजार का लिखा ये गीत, धुन है आर डी बर्मन का।
1: ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

श्रोताओं, गुलजार का लिखा ये गीत अभी आपने सुना फिल्म आंधी से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। दोस्तों, बारिश की बूंदों के साथ संगीत सुनने का एक अपना ही आनंद है। कभी बारिश हमें बचपन की याद दिलाती है तो कभी गांव की गलियों की याद दिलाती है और कभी किसी पुराने सफ़र की तस्वीर हमारे आंखों के सामने आ जाती है। और अब सुनवा रहे हैं आपको एक ऐसा गीत जो दोस्ती और अपनापन दोनों लिए हुए है। तो सुनते हैं फिल्म शोले का ये गीत। मनाडे और किशोर कुमार की आवाज़ों में इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। और सुनना चाहते हैं कीता गांव से सरायकेला राधा कृष्ण गोप, सुनीता देवी, उमा कुमारी, गीता देवी, रीता देवी, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक, आशीष गोप, शुभम, सुमित, विक्की, सरस्वती देवी, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप और आराध्या कुमारी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म शोले का ये गीत, और अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसकी धुन सुनते ही मन में एक अलग ही खुशी पैदा होती है। दोस्तों, तो सुनवा रहे हैं आपको किशोर कुमार और साथियों का गाया फिल्म तीन देवियों का ये गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है एसडी बर्मन ने, और इसे इस गाने की फरमाइश की है खेड़िया घर मझारी से बसंत बेंकुरा, सुलोचना बेंकुरा, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झिम्पी कुमारी और जयमनी जयंती।

और अब श्रोताओं, इस खूबसूरत गीत के बाद बारी है अगले गीत की। अगला गीत है फिल्म अप्रैल फूल का, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर का गाया, जिसे सुनना चाहा है छोटा निमडी चायबसा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन, कोमल और ऋतिक। भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी। तो सुनते हैं इन सबों के फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस अंतराल के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं फरमाइशी कार्यक्रम रजनीगंधा, और रजनीगंधा का अगला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म कुदरत से।

श्रोताओं, इस गाने को सुनना चाहा था पोंडाकाटा से सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती सुहानी देवी, संजय महली, नरसी महली, रघुनाथ चरहट, शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव, अमरपुरा पेंड्रा छत्तीसगढ़ से ही दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। और अब चलते चलते श्रोताओं, सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें प्यार की कोमलता और शाम की नज़ाकत दोनों ही महसूस होती है। तो सुनवा रहे हैं ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार का गाया, जिसे सुनना चाहा है कुचाई इचाहतु से गोलाराम लोवादा, लुद्री लोवादा, सुरती लोवादा, सोमनाथ, पूर्णिमा, लालमणि, बिंजना लोवादा और उनके परिवार के सदस्य।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फरमाइशी कार्यक्रम रजनीगंधा का समय यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चायबसा केंद्र है और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
2: पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना, अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
1: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
2: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय

0: करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्सपा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफ्सपा को बढ़ाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 एसोल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
3: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
1: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पिम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अम्बेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉ. जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के

0: में सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषण को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
1: 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के तमगों की मजमूई तादाद 23 हो गई है। इसमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड 10 मीटर के एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। तवील फास्ते तक दौड़ने वाले खिलाड़ी गुलवीर सिंह ने मर्दों की 10,000 मीटर की दौड़ में चांदी का तमगा हासिल किया है। वहीं बरानी का एलन गोवन ने खवातीन के पोल वॉल्ट में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत के शहरों और गांवों के दरमियान की दूरी में खातिर-ख़ाह कमी आई है। उन्होंने देही बुनियादी ढांचे में नुमाया बेहतरी का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क भर में खवातीन बड़े पैमाने पर खुद कफील और माशी तौर पर बाइख्तियार बन रही हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वड़नगर की यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए आज वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात कही। जनाब मोदी ने सामाजिक खिदमत, सामाजिक इस्लाह और मुस्बत तब्दीली की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी की शमूलियत और ताउन से ही विकसित भारत का ख्वाब पूरा हो सकता है। जनाब मोदी ने वाजे किया कि वड़नगर से उन्हें वो इकदार मिली हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को शक्ल दी है, जबकि काशी ने उन इकदार में अपना रंग भरा है। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि नौजवान अफराद भी खिदमत के इस सफर पर निकले हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: बातचीत के दौरान यात्रियों ने वज़ीर-ए-आज़म से अपने तजुर्बात बयान किए। इस दौरान जनाब मोदी ने यात्रियों को अपने तजुर्बात डायरी में दर्ज करने का मशवरा दिया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि अक्वामे मुत्तहदा में बामानी इस्लाहात के लिए मतन पर मबनी मुजाकिरात जरूरी हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसी तहरीरी मतन के बगैर मुजाकिरात जारी रहते हैं तो इसका मकसद सिर्फ वक्त हासिल करना और इस्लाहात के अमल को मजीद मौकर करना रह जाएगा। उन्होंने कहा कि अक्वामे मुत्तहदा में ढांचा जाती इस्लाहात में ताखीर पर दुनिया भर में बढ़ती हुई बेचैनी इस बात की निशानदेही करती है कि इस्लाहात की मुखालफत करने वाले अनासिर अक्वामे मुत्तहदा को मजबूत बनाने की बजाय महज अपने मफादात के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की 81वीं जनरल असेंबली के मौके पर इख्तलाफात और रुकावटें, बदलती हुई दुनिया के लिए फासले मिटाना और पुल की तामीर के उनवान से मुनक़िदा वजारती मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इदारे की पेशरफ्त में रुकावट बनने वाले तरीक़ेकार की मुश्किलात का जिक्र करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक्वामे मुत्तहदा के इदारा जाती ढांचे में तब्दीली की इज्तिमाई ख्वाहिश मजीद मजबूत हुई है। डॉक्टर जयशंकर ने अक्वामे मुत्तहदा में ढांचा जाती इस्लाहात के मुतालबे का दिफा करते हुए कहा कि यह मुतालबा अक्वामे मुत्तहदा के खिलाफ किसी अदावत की वजह से नहीं बल्कि इस इदारे को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश से पैदा हुआ है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की 81वीं जनरल असेंबली के मौके पर अपनी भरपूर सिफारती सरगर्मियां जारी रखी। डॉक्टर जयशंकर ने आर्मेनिया, बारबाडोस और इराक के अपने हममनसबों के साथ अलग अलग मीटिंगें की। इसके अलावा पनामा के सदर से भी उन्होंने मुलाकात की। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने अपनी मीटिंगों की तफसीलात शेयर करते हुए बताया कि बातचीत में दोतरफा ताउन, इलाकाई हालात व वाकयात और वसी तर बैनुल अक्वामी उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। ये हालिया मीटिंगें अक्वामे मुत्तहदा के जनरल असेंबली के दौरान डॉक्टर जयशंकर की वसी तर सिफारती सरगर्मियों का हिस्सा हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ खितों के रहनुमाओं और वज़राए खारजा के साथ दोतरफा ताल्लुकात, इलाकाई हालात और कसीर फरीकी ताउन समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजारत खारजा में इकतसादी ताल्लुकात के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने अक्वामे मुत्तहदा की 81वीं जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर कम तरक्की याफ्ता मुल्कों LDCs की सालाना वजारती मीटिंग में शिरकत की। सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत खारजा ने कहा कि मीटिंग के दौरान भारत ने कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ अपनी मुस्तहकम और पायदार शराकतदारी के अज़्म का इआदा किया है। सुधाकर दलेला ने कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की पायदार तरक्की के लिए आसान और काबिल रसाई माली वसाइल, रोजगार के मौके पैदा करने के अलावा घरेलू पैदावार में सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर जोर दिया। सेक्रेटरी मौसूफ ने सेंडाई फ्रेमवर्क पर अमल दरामद, कुदरती आफात और आबोहवा की तब्दीली के असरात से निमटने के लिए आसियान का जामे तरीक़ेकार के उनवान से मुनक़िदा खसूसी प्रोग्राम से भी खिताब किया।

0: Pistol Mixed Team event, where Indian shooters Kamaljeet and Suruchi Singh put up a brilliant show. In the final of the 10-meter Air Pistol Mixed Teams event, they finished with the gold medal, thus clinching India's second gold of the Asian Games 2026. Another good news in the world of shooting was from the men's 50-meter rifle three positions. Indian shooters delivered a strong performance in the men's 50-meter rifle three positions, securing the team's silver. Aishwarya Pratap Singh Tomar finished third with 589, while Neeraj Kumar stood fourth with 588. Rudraksh Balasaheb Patil finished ninth with 585. India's combined score of 1,762 earned them the silver medal. China took gold with 1,766. In the 50-meter rifle three positions individual event, Aishwarya Pratap Singh Tomar had been eliminated from the men's 50-meter rifle three positions individual final, finishing fifth. Neeraj Kumar had earlier been eliminated in the eighth place, bringing India's campaign in the event to a sad end. With this, shooting remains the highest contributor in the total number of medals contributed by a specific event in the ongoing Asian Games 2026 so far, with a total of 10 medals coming from the world of shooting. This includes 1 gold, 5 silvers and 5 bronze.
1: It was another great day for India in athletics. Shabab Anwar has more.
2: एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन आज संतोषजनक ही रहा और सबसे खास बात ये रही कि भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार पोल वॉल्ट का मेडल जीता है। ब्रानिका एलांगोवन ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर की ऊंचाई पार कर कांस्य पदक जीता। उधर एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता। 2023 में इसी स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। महिलाओं के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने 17.7 मीटर का थ्रो फेंक कर कांस्य पदक जीता। कृष्ण जयशंकर मेनन 16.7 मीटर के प्रदर्शन के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। महिलाओं के 400 मीटर में किरण पहल और प्राची चौधरी ने फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के 400 मीटर में विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हिट जीती और फाइनल में पहुंचे। पुरुषों के 100 मीटर में गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हैमर थ्रो में अमनीत सिंह ने 9वें और परवीन कुमार 11वें स्थान पर रहे। महिलाओं के हेप्टाथलोन में पूजा छठे और अनामिका अनीश 8वें स्थान पर रहीं। विशाल टेके ने 400 मीटर की हिट 2 में 45.27 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और सीधे 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 400 मीटर रेस में किरण पहल और प्राची ने फाइनल में जगह बना ली है।
1: India had a good day in table tennis as well. Shahid Azmi has a report.
3: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का किया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती चीन की मजबूत जोड़ी वांग चुकिन और सुन इंगशा के सामने थी। चीनी जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे 4 गेम में 4-0 से हराया। इसके साथ ही दिया चितले और मानुष शाह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब मानुष शाह और यशस्विनी घोरपड़े सिंगल्स में भारत की चुनौती आगे बढ़ा रहे हैं। मानुष ने ईरान के बेंजामिन फराजी को 4-0 से जबकि यशस्विनी ने सीरिया के हेंज जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। उधर हरमीत देसाई और साथियान गणशेखरन की पुरुष डबल्स जोड़ी को जापान के खिलाफ 0-3 से हार मिली। वहीं मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी भी जापान के तोमोकाजू हरिमोटो और हितो शिनोजुका से 3-1 से हार कर बाहर हो गई। महिला डबल्स में भी भारतीय जोड़ियों का अभियान आगे नहीं बढ़ सका।
1: द इंडियन टीम इज गोइंग स्ट्रॉन्ग इन स्क्वॉश। शबाब अनवर हैज मोर।
2: योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की स्क्वाश मिश्र जोड़ी ने एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक पक्का किया। अनुभवी योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पोलिनो और जेमिका अरिबांडो को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का पदक पक्का किया। वहीं अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धाओं के अंतिम चार में प्रवेश किया। रिकॉर्ड 7वें एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही 40 वर्षीय योशना और अपने पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे कुमार ने फिलीपींस की जोड़ी को 30 मिनट से भी कम समय में 11-3 11-5 से हराया। भारतीय जोड़ी के सामने अब शनिवार को सेमीफाइनल में हांगकांग की यू काली और मिंग होंग टैंग की चुनौती होगी। ये योशना का एशियाई खेलों में छठा पदक होगा। उन्होंने 2018 में एकल में कांस्य, 2014 और 2018 में टीम स्पर्धा में रजत तथा 2010 और 2022 में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम महज 9 मिनट में 11-3 से जीत लिया। दूसरे गेम में फिलीपींस की जोड़ी ने वापसी की कोशिश की लेकिन जोशना और सेंथिल कुमार ने अपना स्तर बढ़ाते हुए दूसरा गेम 11-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर महिला एकल में विश्व

0: जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन तन्वी खन्ना को 11-2, 11-5, 11-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अनाहत की नजर अब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह बनाने पर भी है। पुरुष एकल में अभय सिंह ने स्थानीय खिलाड़ी रोयोनोसुके तोसुकुए को 11-4, 11-3, 11-6 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। इरफान ने भारतीय वीर चोटरानी को 41 मिनट में 6-11, 11-8, 11-3, 11-3 से हराया। एशियाई खेलों में पुरुष महिला एकल के स्वर्ण पदक विजेता 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे, जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा।
1: Was another great day for India in Kabaddi. Here's more from Shabab Anwar.
0: कबड्डी के कोर्ट पर भारत का जलवा बरकरार है। भारतीय टीम दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंच गई है और दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक का बचाव करती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को खेले गए महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को आसानी से 48 के मुकाबले 24 अंकों से पराजित किया। गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का मुकाबला कल मजबूत प्रतिद्वंदी ईरान के साथ होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चीनी ताइपेई को 23-19 से शिकस्त दे दी। आज के सेमीफाइनल में भारत ने 3 ऑल आउट प्राप्त किए और इसमें पूजा, संजू देवी और सोनाली सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उधर पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को 28 के मुकाबले 66 अंकों से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए भी भारत की टक्कर ईरान से ही होगी। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चाइनीज ताइपे को एक तरफा मुकाबले में 59-21 से हरा दिया।
1: There was good news and bad news from the badminton courts. Shabab Anwar gives you all the details.
0: बैडमिंटन ने आज भारत को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब गत विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारतीय जोड़ी को थाईलैंड के पक्कापोन तिरेश साकुल और ट्विशाई सुफुन की जोड़ी ने 21-12, 19-21, 21-14 से हराया। सात्विक चिराग ने पिछली बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इस बार पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारत की तनिषा क्रॉस्टो और ध्रुव कपिला ने मिक्स डबल्स में शानदार दिग्गज की। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 जोड़ी को 22-20, 24-22 से हराया। उधर महिला एकल मुकाबलों में उन्नति हुड्डा ने अच्छी शुरुआत की और अपनी प्रतिद्वंदी को 21-7, 21-10 से पराजित किया। उधर महिला डबल्स के पहले दौर में भारत की त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने पसांग ह्यू और थाइनलू की जोड़ी को 21-16, 16-21, 21-16 से हराया। दिन के अंतिम मुकाबले में पुरुष वर्ग के तहत पहले राउंड में भारत के हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी इंडोनेशियाई जोड़ी से अपना मुकाबला 14-21, 11-21 से हार गई।
1: It was a tough test for India versus Japan in women's hockey today. Let's find out what happened. The Indian women's hockey team secured its berth in the Asian Games 2026 semi-finals after beating host Japan 3-1. Elham Rasood, Ishika Chaudhary and Navneet Kaur scored the goals for India, while S. Kobayakawa hit the board for the hosts. Having won all four group matches till now, India, who beat Japan to win the bronze medal at Hangzhou 2023, currently top Pool B with 12 points and are assured a top 2 finish and by extension a place in the semis. The Indian women's hockey team will face Singapore in its final Asian Games Pool B match on Sunday. The Indians have been striving hard in the swimming arena. Let's hear what Sakshi Manwal had to say.
2: In the men's 200-meter backstroke heats, Rishabh Das clocked 2 minutes 00.53 seconds to finish 4th overall, while Utkarsh Patil finished 8th in 2 minutes 02.13 seconds. Once the finals of the men's 200-meter backstroke event started, both Indians were in this final, but neither finished amongst the top three. The 21-year-old Rishabh clocked 1 minute 58.77 seconds in the 200-meter backstroke finals to finish 6th, but with a new national record to his name by taking more than a second off his previous mark. Utkarsh Patil was 7th in 2 minutes 00.94 seconds. Sajan Prakash also progressed after finishing 6th overall in the men's 200-meter butterfly heats with a timing of 2 minutes 00.94 seconds. In the finals, the veteran swimmer, however, finished 7th in men's 200-meter butterfly. He did not start in the 100-meter butterfly but came up with a valiant effort today. There was disappointment in the men's 50-meter breaststroke and 400-meter freestyle. Dhanush Suresh finished 21st in the 50-meter breaststroke event in 28.40 seconds, while Anish Kaura and Dakshan Shashikumar finished 17th and 18th, respectively, in the 400-meter freestyle event. None of the three swimmers could advance to the finals.
1: It was a mixed day for the Indians in the boxing arena. Shahid Azmi has more.
3: बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए मिलीजुली खबर सामने आई है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में

0: जगह बनाई, जबकि महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार का सफर राउंड ऑफ 16 में ही खत्म हो गया। पहले बात सचिन की, उन्होंने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी। सचिन ने शुरुआत से ही तेज रफ्तार और सटीक पंचों के साथ मुकाबले पर दबाव बनाए रखा। अबू जाजे ने आखिरी दौर में वापसी की कोशिश की, लेकिन सचिन की चुस्ती के आगे उनकी चुनौती कमजोर पड़ गई। भारतीय मुक्केबाज ने लगातार सटीक पंच लगाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सचिन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। अब उनके सामने जापान के शुनसुके किटामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। वहीं महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा। प्रीति को उत्तर कोरिया की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पैंग चोल मी ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से मात दी। प्रीति ने मुकाबले में चुनौती पेश की, लेकिन पैंग चोल मी ने सभी जजों का फैसला अपने पक्ष में करते हुए अगले दौर में जगह बना ली। यानी बॉक्सिंग में सचिन ने भारत की उम्मीद कायम रखी, जबकि प्रीति पवार का अभियान यहीं समाप्त हो गया।
1: So how did the weightlifting contingent do for India today? Shabab Anwar tells us the report.
2: भारोत्तोलन में आज सबकी निगाहें 26 वर्षीय एथलीट और पिछली राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली और इस वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली निरुपमा देवी पर थी, लेकिन उन्होंने दोनों भार वर्ग में निराश किया और पहले ही राउंड में बाहर हो गयी। निरुपमा देवी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया स्नैच में, जबकि 63 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 217 किलोग्राम वजन के साथ 7वें स्थान पर रही।
1: Indians were in action in Canoe. Sakshi Manwal has all the details.
3: It was a disappointing day for India in canoe sprint. India's Prohit Baroy and Prasanna Kumar Chempadil Satyaprakash finished 5th in the men's kayak double 500-meter semi-final, clocking 1 minute 40.308 seconds. Then they competed in the final B, where they finished 3rd among 4 pairs in 1 minute 40.411 seconds. In the women's canoe double 500-meter semi-final, Megha Pradeep and Neha Devi finished 4th among 5 pairs with a timing of 2 minutes 8.306 seconds and did not qualify for the final. The Indian women's kayak 4-500 meter quartet of Dhana Manjuri Devi, Pooja, Sonia Devi and Parvati Geeta finished 8th in the final 8 with a timing of 1 minute 45.670 seconds. Overall, a disappointing day in canoe sprint for India.
1: There was lots of fencing action today for the Indian contingent. Shabab Anwar has more.
2: भारत को आज तलवारबाजी की टीम स्पर्धा के दोनों वर्गों में महिला और पुरुष दोनों जगह पराजय का सामना करना पड़ा और पहले ही मुकाबले को हार कर भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गए। सबसे पहले पुरुष टीम का फाइनल राउंड 16 मुकाबला हुआ, जिसमें हांगकांग चीन के हाथों भारत को 45-27 से पराजय का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व आदित्य, हिमांश सिंह, तेजस पाटिल और कर रहे थे। इसी स्पर्धा के महिला वर्ग में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने भारत को 45 के मुकाबले 29 अंकों से पराजित किया। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी अनुप्रिया चौधरी, तनिष्का खत्री, यश वीरत कौर।
1: इंडिया इज मेकिंग इट्स डेब्यू इन सर्फिंग, लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। SS Gayan, Kamli Prakash, Kishore Amrasu and Shivraj Babu progressed to the women's and men's shortboard in surfing. India is making a historic debut in surfing at the 2026 Asian Games. The surfing events are taking place from September 25th to 28th at the Pacific Long Beach in Tahara City. Coached by Frenchman Samay Rabu, the team views this exposure as a crucial stepping stone towards qualification for the LA Olympics in 2028. India was striving for a medal in equestrian. Let's hear what Shahid Azmi had to say.
0: Asian Games 2026 में घुड़सवारी टीम रेसेस इवेंट में भारत पदक से चूक गया। भारतीय टीम 201.971 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल कर सका। चीन ने स्वर्ण जबकि जापान ने रजत और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की ओर से श्रुति वोरा ने 68.059 अंक जबकि हृदय विपुल छेदा ने 67.353 और जय सूद ने 66.559 अंक हासिल किए। हांगझाऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय टीम इस बार पोडियम पर जगह नहीं बना सकी।
1: E-sports is grabbing the nation's attention. Sakshi Manwal has the latest from Aichi Nagoya.
3: India went down 0-2 to South Korea in Pokemon Unite. Both the games were won by South Korea in a very commanding and dominating manner, and they ultimately went on to win the series 2-0.
1: So after another action-packed day, where is India in the medals tally? Let's find out.
3: भारत

श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे डेली कैप्सूल हाइलाइट्स एशियन गेम्स 2026 के बारे में। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल। तो श्रोताओं, सुनते हैं अबिदा परवीन की आवाज़ में ये गजलें।

0: पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसी के साथ श्रोताओं, गजलों का कार्यक्रम समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है श्रोताओं सुरों के रंग कार्यक्रम। सुरों के रंग में श्रोताओं आइए सुनते हैं सबसे पहला सुर मोहम्मद रफी का, शैलेंद्र का लिखा ये गीत, शंकर जयकिशन के धुन पर, फिल्म मधुमती से।

और अब श्रोताओं, कार्यक्रम सुरों के रंग का अगला गीत हमने लिया है फिल्म काला बाजार से। शैलेंद्र के बोल हैं और एसटी बर्मन के धुन। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना मुकेश और साथियों का गाया शंकर जयकिशन के धुन पर फिल्म दीवाना का ये गीत। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग का अगला देख गीत सुनने के पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओं, अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर के युगल स्वर में मदन मोहन के धुन पर फिल्म जब याद किसी की आती है का ये गीत। आप सुन रहे हैं हमारे आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से कार्यक्रम सुरों के रंग, और अगला सुर है फिल्म CID से। सुनते हैं मोहम्मद रफी का गाया और गीता दत्त का गाया, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ओपी नैयर के धुन पर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म दुलारी का ये गीत। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत नौशाद का। और अब चलते चलते सुनवा रहे हैं आपको फिल्म बसंत बहार का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी का गाया, शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन के धुन पर।

0: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का सुरों के रंग का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये चाईबसा केंद्र है और इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8

प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर को अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में आयोजित 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य के सिविल सचिवालय से सोमनाथ यात्रा 2026 को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिभागी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्ड स्किल्स शंघाई में टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से अधिक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।